नमस्कार, FM 102.5 MHz पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 सितंबर सन 2026 सुबह के 5:55 और ठीक 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अठारहवां ब्रिक्स सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश शामिल होंगे। इसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इनमें वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आपदा से निपटने की क्षमता और जरूरी आपूर्ति श्रृंखला शामिल हैं। ब्रिक्स सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में हो रहा है। इसका विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में दुनिया के कई बड़े नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन शामिल होंगे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री आपी अहमद और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ब्राजील का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री माउरो वियेरा करेंगे, जबकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद भी इसमें शामिल होंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता भारत मंडपम में भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी दौरा करेंगे। इसके बाद सभी सदस्य देश सामूहिक रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में रात्रि भोज में वे शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, अबुधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुब्यांतो कल रात राजधानी पहुंचे। हवाई अड्डे पर कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने उनका स्वागत किया। वहीं बुरंडी के राष्ट्रपति एविरेस्ते नादियने शिमिए अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कल शाम नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कौशल सहित कई क्षेत्रों में सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में जारी संघर्ष सहित आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स देश वैश्विक नवाचार और समाधान के लिए महत्वपूर्ण केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स व्यापार मंच के नेताओं के सत्र में उन्होंने ये बात कही।
1: आज ब्रिक्स के देश विश्व की 50% पॉपुलेशन, 40% जीडीपी और 25% से अधिक ट्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ही नहीं, इन वर्षों में जहां ग्लोबल जीडीपी करीब 2.5 गुना हुई है, वहीं ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी करीब 4.5 गुना हुई है। यानी ब्रिक्स की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दुनिया की तुलना में करीब 2 गुनी रफ्तार से बढ़ी है। ब्रिक्स देश ग्लोबल इनोवेशन और सॉल्यूशंस के लिए महत्वपूर्ण सेंटर्स भी बन रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत आवाजाही की स्वतंत्रता और नाविकों की सुरक्षा का समर्थक है।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेंथ सिक्योर हो, सप्लाई रूट्स ओपन हो और सी फेरर्स सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। यह निर्णय बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

चिंतन। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। ये कथन स्वामी विवेकानंद का है। ये था आज का चिंतन, और अब भक्ति संगीत।

आज आप सुनेंगे श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना का भाग 12। कलाकार गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इस कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। सुबह 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के, ये होगा युगल गीतों का कार्यक्रम। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8 बजे। 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी कार्यक्रम, आलेख और स्वर मंदाकिनी जोशी का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस कार्यक्रम को दिन में 2 बजे पुनः सुना जा सकता है। चित्रलोक कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:30 और सुबह 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित होगा संगीतकार जय किशन पर, आलेख और स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पुनः प्रसारण रात्रि 9:30। आज दिन में 11 बजे सुनिए चित्रपट संगीत, 11:30 पर मैटिनी शो, पत्रकार लेखक राजेश विक्रांत से यूनुस खान की बातचीत, संपादन सहायक प्रस्तुति जुबैर खान की। दिन में 12 बजे सुनिए हिंदी में समाचार, 12:05 पर कार्यक्रम यादों की महफिल। सुरीला सफर तय कीजिए विविध भारती के साथ दिन में 1 बजे, जिसमें श्रोता हमसे फेसबुक कमेंट्स द्वारा जुड़ सकते हैं। दोपहर समाचार दिन में 2:15 पर और सदाबहार नगमे 2:30 पर। मनचाहे गीतों को लेकर आज हमारे साथ आप सुनिए कार्यक्रम दिन में 3 बजे और इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले। नाट्य तरंग कार्यक्रम का समय होगा दिन में 3:30 पर, आज आप सुनेंगे नाटक कल आना कल, एच तुंडीराज के कन्नड़ नाटक का ये हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवादक HV रामचंद्र राव, निर्देशन निर्मला अग्रवाल, गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3 आज आप सुनेंगे, प्रस्तुति तेजश्री कामले। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे शाम 5:30 से लेकर 6:30 तक। इसी बीच 6 बजे सुनिए हिंदी में समाचार। शाम 6:30 पर झरोखा के अंतर्गत दी जाएगी जानकारी आज के शेष और कल दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। 6:35 पर संध्या रंजन, 6:45 पर सुनिए संगीत सरिता, शाम 7 बजे विशेष जयमाला, गीतकार हसरत जयपुरी, 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए जिज्ञासा, हवा महल में सुनो कहानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी, कहानी का नाम पिंजर का भाग 2, वाचन ममता सिंह, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। कार्यक्रम का समय रात्रि 8 बजे। चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 पर और समाचार संध्या 8:45 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम होगा रात्रि 9 बजे और 10 बजे होगा छाया गीत, आलेख और स्वर मंजरी वर्मा का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। रात 10:30 पर सुनिए ढलती जाए रात और रात 11 बजे मैटिनी शो। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की और अब ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज सुनिए रामचरित मानस का भाग 309, लंका कांड।

अंगद की बात सुन रावण को क्रोध हो आता है। सामने खड़ा बंदर बाली पुत्र है ये जानकर रावण सकुचाया, किंतु उसे कुलनाशक कहकर उसकी भर्त्सना करते हुए बोला, तू तो अपने कुलरूपी बांस के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ है, अपने को एक तपस्वी का दूत बताते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तेरा पिता कहाँ है और कैसा है वो? अंगद उत्तर देते हैं, कुछ दिनों बाद तुम स्वयं उनके पास जाकर उनका कुशलक्षेम पूछ लेना। सच है मैं कुल नाशक हूं और तुम कुल रक्षक हो, ऐसी बात तो अंधे और बधिर भी नहीं करते। तुम तो 10 शीश और 20 आंखों वाले हो। अंगद के वचन सुनकर रावण का क्रोध उबल पड़ता है, किंतु उसे अपने नीतिवान और धर्म पालक होने का भ्रम भी है, अतः अपने क्रोध पर काबू पाने का बड़प्पन दिखाता है। अंगद व्यंग्य करते हैं, तुम्हारी धर्मशीलता के बारे में मैंने भी सुना है। तुम्हारी धर्मशीलता का उदाहरण है कि तुमने पराई स्त्री का हरण कर लिया है। अपनी बहन के नाक कान कटे देख धर्म का विचार करके ही तो तुमने क्षमा कर दिया था। बड़े भाग हैं मेरे जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया।

0: श्रोताओं नमस्कार। इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे। इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की आज 12वीं कड़ी।
1: संगीत सरिता के सुधी श्रोताओं का स्वागत है। मित्रों, इन दिनों जारी है श्रृंखला स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना, और किराना घराने की गायकी पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शकुंतला भरणे जी। शकुंतला जी, पिछली कड़ी में हम विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर जी की जो आवाज में मिठास है और जो कोमलता है उनके स्वरों में, उसकी बात हो रही थी। उसी चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं।
2: आज मुझे लगता है किराना घराने की आवाज की जो मिठास रहती है, सुरों की कोमलता, ये दोनों चीजें हमारे घराने की एक पहचान है। किराना घराने में लय से अधिक,
1: जी
2: शुरू में मैंने बोला है, लय से अधिक स्वर की शुद्धता और सौंदर्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
1: जी जी।
2: मधुर और कोमल स्वर का लगाव जो है हमारा, प्रत्येक स्वर को अत्यंत कोमल, मधुर और भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया जाता है,
1: जी,
2: जिससे गायन अत्यंत श्रवणीय बनता है। स्वर्ग का दीर्घ विस्तार, एक एक स्वर पर हम ऐसा ठहराव है, एक एक स्वर को हम ठहराव के साथ गाकर उसकी पूरी अनुगुंज और गहराई को उभारते रहते हैं। सूक्ष्म स्वरों का प्रयोग, स्वरों के बीच की सूक्ष्म श्रुतियां अत्यंत बारीकी से उपयोग किया जाता है।
1: अच्छा।
2: और जिससे गायकी में हमारे निखार आता है, हमारे यानी किराना घराने के गायकी को क्रेडिट मैं मेरे लिए नहीं लेती, घराना के लिए। मींड और आंदोलन का जो सुंदर प्रयोग हम करते हैं, स्वरों के एक दूसरे से सहजता और निरंतरता के साथ जोड़ने के लिए मींड और आंदोलन का प्रभावी उपयोग किया जाता है। भावपूर्ण अभिव्यक्ति केवल स्वर की शुद्धता ही नहीं, बल्कि उसके माध्यम से राग का भाव भी अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है।
1: अच्छा।
2: अन्य घरानों से भिन्न क्या है, ऐसा अगर आप पूछे, अन्य घरानों की तुलना में किराना घराने की विशिष्टता उसकी आवाज की स्वाभाविक मिठास, सुरों की कोमलता तथा प्रत्येक स्वर को अत्यंत भावपूर्ण, धैर्यपूर्ण और मधुर ढंग से प्रस्तुत करने की शैली में निहित है। यही स्वर माधुर्य इस घराने को अन्य घरानों से अलग पहचान प्रदान करता है।
1: जी।
2: मिठास जो आती है वो गा के स्वर को हम जैसा बनाते हैं, तालीम लेते हैं, वहां शुरू होता है। अगर आपकी आवाज ओरिजिनल गिफ्टेड मिठास है उनकी आवाज में, तो और भी हीराबाई जैसा आवाज और मिठास और माधुर्य बन जाता है। आज अगर आपकी इजाजत हो तो किराना घराने के गायकों ने कुछ नाट्य गीत भी गाए हैं।
1: मैं वही कहने वाला था कि बहुत से किराना घराने के मूर्धन्य गायक कलाकार महाराष्ट्र में और कर्नाटक में हुए हैं। और महाराष्ट्र में जो एक संगीत नाटक की परंपरा रही है, तो वो जो स्वर्णिम युग था संगीत नाटकों का,
2: ब्यूटीफुल,
1: उन दिनों में बहुत से किराना घराना के गायकों ने संगीत नाटकों में,
2: हीराबाई बड़ोदेकर, सवाई गंधर्व, माणिक वर्मा,
1: इन सब के ये स्वरों में जो है नाट्य गीत हम सुनते हैं।
2: बहुत ही अच्छा
1: तो
2: नाट्य गीत।
1: कुछ नाट्य गीतों के हम झलक सुने, ऐसा मैं चाह रहा था।
2: हीराबाई बड़ोदेकर प्रत्यक्ष स्टेज पर बहुत ही अच्छा नाट्य संगीत गाती थी, लेकिन बहुत सारे नाट्य गीत उनके रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन हमारी गुरुजी बोलती थी बहुत मीठा गाती थी वो।
1: जी जी।
2: उनका एक नाट्य गीत हम सुनेंगे।

0: विदुषी हीराबाई बड़ोदेकर जी की आवाज में नाट्यगीत की झलक हम सुन रहे थे। इसके साथ साथ शकुंतला जी, क्यों ना माणिक वर्मा की गायन में बहुत से नाट्यगीत है,
1: मेरी मन
0: उसमें से किसी एक नाट्यगीत को एक उदाहरण स्वरूप हम यहाँ अगर सुनवाए अपने श्रोताओं को।
1: मन अपमान नाटक
0: जी
1: का जो खरा तो प्रेमा
0: जी जी,
1: थोड़ा सा मिश्रमांड वगैरह है उसमें,
0: हाँ।
1: वो बहुत ही अच्छा गाई है वो,
0: तो सुनते हैं इस नाट्य गीत की एक झलक।
1: हाँ।

0: मानापमान नाटक के इस नाट्य गीत की झलक अपने श्रोताओं को हमने सुनवाई, और इसे सुनते हुए जो गीत के सुर जो है मन में वो हृदयनाथ मंगेशकर जी का कंपोजिशन है, लेकिन फिल्म से
1: कौन सा भी गीत होने दो उसको एक उसकी लोक संगीत की बैठक होती है। वैसा नाट्य गीत भी हम वे अलग अलग शास्त्रीय संगीत से लोक संगीत से लिया है। ये भी जो केसरिया बालम ये जो गाना है वो राजस्थानी लोकगीत है ओरिजिनली।
0: जी बिल्कुल।
1: और उसको लेकिन
0: और ये मांड भी जो है वहाँ राजस्थानी लोक संगीत से
1: आया है,
0: आया हुआ है। तो चलिए सुनते हैं लेकिन फिल्म से ये रचना।

स्वर साधना की अनुपम परंपरा किराना घराना। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 12वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध गायिका डॉक्टर शकुंतला भरणे, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने, तबला संगत रोहिदास परब, हारमोनियम पर संगत दी ऋषित होनावरकर ने। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी भावना सिंदल, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना, बोलो, बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल।
3: नमस्कार, यह है आकाशवाणी उज्जैन। समय हुआ है सुबह 7 बजे का और हम आपके लिए लेकर आए हैं राजाधिराज बाबा महाकाल के चरणों में समर्पित हमारी विशेष प्रस्तुति महाकाल वंदन।

जय श्री महाकाल। अवंतिका की इस पावन धरा पर आज की सुबह बहुत ही मंगलकारी है। आइए अपने दिन की शुरुआत उस परमपिता के चरणों में ध्यान लगाकर करें जो कालों के काल हैं और समस्त जगत के आधार हैं।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी उज्जैन केंद्र से प्रसारित हमारा विशेष कार्यक्रम महाकाल वंदन। बाबा आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री महाकाल।

FM 102.5 MHz पर ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए हम आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। सुबह 7:20 पर होगा प्रातःकालीन सूचना परक कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का विशेष प्रोग्राम उज्जैनी आरजे। नए फिल्मी संगीत का विशेष प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:30 पर। 10 बजे सुनिए आपकी फरमाइश। 11 बजे आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम, मुंबई से रंग तरंग कार्यक्रम होता है सुबह 11 बजे। दिन में 12:05 पर सुनिए यादों की महफिल। 1 का समय होता है दोपहर 1 बजे। दो बजे सुनिए फिल्म संगीत। सदाबहार ढंग में पेश किए जाते हैं दोपहर 2:30 पर। पर सुनिए नाट्य तरंग। चार बजे आप सुनेंगे बॉम्बे टॉकीज। आकाशवाणी उज्जैन से संध्याकालीन सभा में शाम 5 बजे सुनिए युवा श्रोताओं की अपनी पसंद का कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 बजे भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। छह बजकर 30 मिनट पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी, आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति। 7 बजे भोपाल से 7:10 पर सुनिए प्रादेशिक समाचार। सात बजकर 21 मिनट पर अपने उज्जैन केंद्र से लेकर आएंगे आपके लिए मालवी की तारी गूंज। रात 8 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत। 9:15 पर।

रात को 9:30 पर प्रोग्राम होगा संस्कृत भारती, जबकि रात के 10 बजे सुनिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले विशेष कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के 7:10 होने को हैं। अब प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण हम भोपाल केंद्र से करेंगे।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का शुभारंभ किया। महिला एशिया कप के फाइनल में कल भारत का श्रीलंका से होगा सामना। और प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, आपसी सहमति से होगा मामलों का निराकरण। अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिवसीय सम्मेलन में सदस्य देशों के नेता वैश्विक शासन व्यवस्था, बहुपक्षवाद, व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सहित कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण थीम पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इंडोनेशिया और ईरान के राष्ट्रपति सहित कई देशों के नेता इसमें भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन से इतर विभिन्न देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण है। कल नई दिल्ली में ब्रिक्स बिजनेस फोरम के लीडर्स सेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ने इस मंत्र को अपनी आर्थिक और व्यापारिक नीतियों का आधार बनाया है। इस साल ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2006 में 4 देशों से शुरू हुआ यह समूह अब सदस्य और साझेदार देशों को मिलाकर 21 देशों का परिवार बन चुका है, जो दुनिया की 50% आबादी, 40% जीडीपी और 25% से अधिक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है।
1: ब्रिक्स बिजनेस कम्युनिटी के लीडर्स, इनोवेटर्स और फ्रेंड्स, नमस्कार। ब्रिक्स बिजनेस फोरम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष हम ब्रिक्स के 20 ईयर्स मना रहे हैं। 2006 में जब इस समूह की शुरुआत हुई थी तो इसमें केवल 4 देश थे। आज ब्रिक्स और ब्रिक्स पार्टनर्स मिलाकर 21 कंट्रीज का हमारा परिवार है।
0: इस अवसर पर सजे ब्रिक्स बाजार में धार जिले की विश्व प्रसिद्ध बाघ प्रिंट विदेशी प्रतिनिधियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्राकृतिक रंगों और लकड़ी के नक्काशीदार ब्लॉक से तैयार इस पारंपरिक कला का यहां जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने बाघ प्रिंट की प्रक्रिया को करीब से देखा और स्वयं लकड़ी के ठप्पों से कपड़े पर प्रिंट लगाकर इसकी बारीकियां जानी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सुगम, सुरक्षित और आधुनिक यात्री परिवहन व्यवस्था विकसित की जा रही है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा 25 सितम्बर से शुरू होगी। इसे देश की बेहतरीन सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का मॉडल बनाने का लक्ष्य है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 25 सितंबर को मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मंगल आरंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इंदौर में 2 दिवसीय यात्री परिवहन विजन समिट 2026 का शुभारंभ करते हुए ये घोषणा की। उन्होंने बताया कि सेवा के जरिए प्रदेश में सुरक्षित, सुलभ, किफायती और तकनीक सक्षम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को नई रफ्तार मिलेगी।
3: हर एक वर्ग के कल्याण के लिए, ऑपरेटर के लिए भी, सरकार के लिए भी, यात्रियों के लिए भी और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने वालों के लिए भी। 20 साल में ये जो 360 से बदलने का समय आया, सरकार पूरी ताकत के साथ आप सबके साथ खड़ी है।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव का फोकस है ग्रीन मोबिलिटी के साथ प्रदेशवासियों की यात्रा आसान, सुरक्षित और स्मार्ट बने, साथ ही रोजगार और व्यापार को भी बल मिले। आखिर यही तो है आगे बढ़ते नए मध्य प्रदेश की सशक्त पहचान।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 साल पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। इस पेंशन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में आर्थिक स्थिरता और सम्मान के साथ जीवन जीने में सहायता देना है, ताकि उनका जीवन अधिक सुरक्षित और शांतिपूर्ण हो। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
4: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में काले हिरण और चिंकारा के अवैध शिकार के मुख्य आरोपी संबाह अतुल्य की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। एसटीएसएफ इंदौर, स्थानीय पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने किशनगंज में कार्रवाई कर करीब 65 किलोग्राम वन्यजीव मांस, एक देशी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, तस्करी में इस्तेमाल टोयोटा इनोवा क्रिस्टा वाहन जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मामले में अब तक संगठित अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इसमें लंबित और राजीनामा योग्य मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा। दतिया में जिला न्यायालय परिसर से प्रचार प्रसार वाहन रवाना किया गया, जो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को लोक अदालत की प्रक्रिया और लाभों की जानकारी देगा। विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों में बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं से जुड़े लंबित प्रकरणों का भी समझौते के माध्यम से निराकरण होगा। पांडुना जिले में कल शुक्रवार को करीब 300 वर्ष पुरानी परंपरा के तहत गोटमार मेले का आयोजन किया गया। जाम नदी के दोनों किनारों पर बसे पांडुरना और सांवर गांव के लोगों के बीच पलाश के झंडे पर कब्जे को लेकर जमकर पथराव हुआ, जिसमें 1326 लोग घायल हुए हैं। 8 गंभीर घायलों को नागपुर रेफर किया गया है। घायलों के उपचार के लिए 7 अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र, 44 डॉक्टर और 22 एम्बुलेंस तैनात की गई थी। महिला एशिया कप क्रिकेट में दुबई में कल भारतीय टीम फाइनल में पिछले चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका की टीम आज पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई। 131 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने 4 विकेट खोकर 8 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रीलंका ने 2024 के फाइनल में भारत को हराकर अपना पहला एशिया कप खिताब जीता था। प्रदेश में मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। कल शुक्रवार को भोपाल, दमोह, टीकमगढ़, विदिशा समेत कई जिलों में बारिश हुई। भोपाल में तेज आंधी के साथ हुई बारिश से दृश्यता 100 मीटर से भी कम हो गई, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। वहीं दमोह के निचले इलाकों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश के 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में संचालित स्कूल बसों व अन्य वाहनों की सघन जांच में 8 की फिटनेस निरस्त कर 11 वाहन थाना बरही में खड़े कराए गए। मंडला जिले में न्यायालयों में लंबित तो प्री लिटिगेशन प्रकरणों के आपसी सुलह समझौतों के माध्यम से त्वरित निराकरण के लिए आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले के हरसू क्षेत्र के ग्राम चारखेड़ा स्थित इतली पार्क में आज रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। अशोकनगर के व्रत मुंगावली की टीम द्वारा निरंतर गश्त और दबिश दी गई। सोरान ग्राम सागरचक, ग्राम नई बसात, ग्राम मेरकाबाद में अवैध मदिरा की शिकायत पर चेकिंग की गई। मध्यप्रदेश शासन के मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने कल जिला पंचायत धार के सभाकक्ष में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान 2026 के तहत संवाद किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 13 सितंबर को आगरमालवा में लाडली बहना योजना के हितग्राही बहनों को माह सितंबर की राशि का वितरण और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। जबलपुर में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत संभागायुक्त धनंजय सिंह ने कल पाटन विकासखंड के कटंगी में विभिन्न शासकीय संस्थाओं का निरीक्षण किया। वहीं झाबुआ में कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने कल मेघनगर विकासखंड के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर आंगनबाड़ी स्कूल और ग्राम पंचायत फतेहपुरा और आमली पठार का निरीक्षण किया। इंदौर में आज होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 81 खंडपीठों का गठन किया गया है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

नमस्कार उज्जैन FM 102.5 MHz पर मैं हूं आपकी उद्घोषिका हिमानी और आप सुन रहे हैं आपका प्रिय कार्यक्रम सुप्रभात उज्जैन।

बाबा महाकाल की पावन अलौकिक और अवंतिका नगरी से आप सभी प्रिय श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शनिवार की ये खूबसूरत और ऊर्जावान सुबह आपके जीवन में नया स्वास्थ्य, सजगता और अपार प्रसन्नता लेकर आए। श्रोताओं, आज सितंबर महीने का दूसरा शनिवार है और आज का दिन पूरे विश्व में विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस यानी वर्ल्ड फर्स्ट एड डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 2026 में इस दिन का विशेष विषय है फर्स्ट एड इन माइग्रेशन कॉन्टेक्स्ट यानी विस्थापन, प्रवास और यात्रा के दौरान प्राथमिक चिकित्सा का महत्व। जब भी किसी अनजान राह पर किसी प्रवासी यात्री या जरूरतमंद को चिकित्सा सहायता की आवश्यकता होती है तो हमारी अवंतिका नगरी का अतिथि देवो भव और सेवा भाव हमेशा आगे आता है। तो आइए बाबा महाकाल के चरणों में वंदन करते हुए आज के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं इस मधुर शिव भक्ति गीत के साथ।

श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे विशेष सेगमेंट समाचार पत्रों से का। आइए उज्जैन और आसपास की महत्वपूर्ण खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर गणेश उत्सव से जुड़ी हुई। उज्जैन में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में भगवान गणेश की स्थापना के साथ ही भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। घरों से लेकर विभिन्न सार्वजनिक स्थानों तक गणपति बप्पा की आराधना की जा रही है। गणेश उत्सव केवल धार्मिक आस्था का पर्व ही नहीं बल्कि लोगों को एक साथ जोड़ने वाला उत्सव भी बन गया है। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर पूजा अर्चना, धार्मिक गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। बच्चे हों या बड़े, सभी गणेश उत्सव को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। उज्जैन में गणेश जी की प्रतिमाओं के साथ सजे पांडाल और घरों में की जा रही विशेष पूजा इस पर्व की रौनक को और बढ़ा रही है। श्रद्धालु भगवान

विद्यार्थियों ने विशेष रूप से शिक्षा और करियर से जुड़े सवाल पूछे। बच्चों ने कलेक्टर से जानना चाहा कि आईएएस अधिकारी बनने के लिए किस तरह की तैयारी करनी चाहिए और पढ़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। आज के समय में तकनीक तेजी से शिक्षा का हिस्सा बन रही है, ऐसे में विद्यार्थियों की ओर से एआई को लेकर सवाल किया जाना ये भी दर्शाता है कि नई पीढ़ी बदलती तकनीक और उसके उपयोग को लेकर काफी जागरूक है। विद्यार्थियों ने अपने भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जुड़े विषयों पर भी संवाद किया। इस तरह मुख्यमंत्री अभियान के तहत आयोजन ये संवाद विद्यार्थियों के लिए मार्गदर्शन और अपनी जिज्ञासाएं सामने रखने का अवसर बना। अब बात गणेश उत्सव के दौरान पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने वाली पहल की। उज्जैन में गणेश उत्सव के अवसर पर बच्चों से लेकर बड़ों तक मिट्टी से गणेश भगवान की प्रतिमा बनाना सीख रहे हैं। शहर की विभिन्न संस्थाओं की ओर से इसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यशालाओं में लोगों को मिट्टी से गणेश प्रतिमा तैयार करने की प्रक्रिया सिखाई जा रही है। खास बात यह है कि इन गतिविधियों के माध्यम से धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बच्चों में इन कार्यशालाओं को लेकर विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। अपने हाथों से मिट्टी को आकार देकर गणेश प्रतिमा तैयार करना उनके लिए सीखने के साथ साथ रचनात्मक अनुभव भी बन रहा है। वहीं बड़े लोग भी इस पहल में भाग लेकर पर्यावरण के अनुकूल गणेश उत्सव मनाने का संदेश दे रहे हैं। विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजित की जा रही इन कार्यशालाओं के जरिए लोगों को ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि त्योहार की खुशियों और धार्मिक परंपराओं के साथ प्रकृति और पर्यावरण का ध्यान रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। मिट्टी से गणेश प्रतिमा बनाने जैसी पहल लोगों को अपनी कला और रचनात्मकता से जोड़ने के साथ ही पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने का संदेश भी दे रही है। और अब बात उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर की। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार तड़के भस्मारती के दौरान भगवान महाकाल के कपाट खोले गए। भस्मारती से पहले मंदिर की परंपरागत पूजन प्रक्रिया संपन्न की गई। सबसे पहले सभा मंडप में वीरभद्र जी के कान में स्वस्ति वाचन किया गया। इसके बाद घंटी बजाकर भगवान महाकाल से आज्ञा ली गई और सभा मंडप के चांदी के पट खोले गए। सभा मंडप के पट खोलने के बाद गर्भगृह के कपाट खोले गए। मंदिर के पुजारियों ने भगवान महाकाल का श्रृंगार उतारा। इसके बाद पंचामृत पूजन संपन्न किया। पंचामृत पूजन के बाद भगवान महाकाल की कपूर आरती की गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती अपनी विशेष धार्मिक परंपराओं और विधि विधान के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह रहता है। शनिवार तड़के भी मंदिर में परंपरागत रूप से पूजन अर्चन की प्रक्रिया पूरी की गई। भगवान महाकाल के दर्शन और आरती के साथ मंदिर परिसर में आध्यात्मिक और भक्तिमय वातावरण बना रहा। उज्जैन की पहचान बाबा महाकाल की नगरी के रूप में है और यहां होने वाली प्रत्येक धार्मिक गतिविधि श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखती है। भस्म आरती भी इस आस्था और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो श्रोताओं, ये थी आज के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित उज्जैन की महत्वपूर्ण खबरें। इन्हीं खबरों के साथ समाचार पत्रों से मैं फिलहाल इतना ही। श्रोताओं, जब कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर काम, शिक्षा या किसी मजबूरी में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करता है तो यात्रा के दौरान कई तरह की स्वास्थ्य चुनौतियां और दुर्घटनाएं हो सकती है। ऐसे में फर्स्ट एड इन माइग्रेशन कॉन्टेक्स्ट की थीम हमें सिखाती है कि बिना किसी भेदभाव के रास्ते में किसी भी प्रवासी या यात्री को आपातकालीन स्थिति में तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देना कितना महत्वपूर्ण है। किसी अनजान शहर में किसी की जान बचाना ही सच्ची मानवता है। आइए इसी मानवीय संदेश को सलाम करते हुए सुनते हैं ये प्रेरणादायक गीत।

श्रोताओं, हमारी उज्जैनी का इतिहास हमेशा से सर्वसमावेशी रहा है। अवंतिका नगरी में प्राचीन काल से ही देश विदेश से श्रद्धालु, विद्यार्थी और व्यापारी आते रहे हैं और उज्जैन ने हमेशा सभी को अपने दिल से लगाया है। तीर्थ नगरी होने के नाते यहाँ रोज हजारों यात्री आते हैं। ऐसे में स्टेशन, बस स्टैंड या सार्वजनिक मार्गों पर अगर हम प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी रखें तो हम किसी भी दूर दराज से आए यात्री के लिए जीवन रक्षक बन सकते हैं। आइए इसी सेवा और समर्पण भाव को समर्पित सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

साथियों, आपदाओं या कठिन परिस्थितियों में जब लोग विस्थापित होते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट एड ही उनकी ढाल बनता है। पट्टियां बांधना, चोटों को साफ करना या CPR देना, ये छोटी छोटी बातें किसी का जीवन बचा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस संस्था भी यही संदेश देती है कि प्रवासियों और शरणार्थियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा की उपलब्धता मानवाधिकार की तरह है। आइए समाज में इस जागरूकता का संकल्प लेते हुए सुनते हैं ये पॉजिटिव गीत।

दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम अपने शहर में आने वाले हर यात्री और प्रवासी के प्रति सहानुभूति रखें। मार्ग में किसी को प्राथमिक उपचार की आवश्यकता हो तो तुरंत आगे बढ़ें और 108 एम्बुलेंस या रेड क्रॉस सहायता केंद्र से संपर्क करें। जब हमारा उज्जैन इतना जागरूक, सुरक्षित और संवेदनशील बनेगा तो यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अवंतिका के सेवा भाव को जीवन भर याद रखेगा। साथियों, समय का चक्र लगातार आगे बढ़ रहा है और बातों ही बातों में आज का सुप्रभात उज्जैन अब अपने समापन की ओर पहुँच गया है। आज हमने विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस पर माइग्रेशन कॉन्टेक्स्ट में प्राथमिक उपचार और अवंतिका की अतिथि सेवा परंपरा पर चर्चा की। उम्मीद है आज का ये अंक आपके दिन की शुरुआत को संवेदनशीलता, सतर्कता और नई ऊर्जा से भर गया होगा। अब इस कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं।

साथियों, बातों बातों में अब हमारे आज के कार्यक्रम सुप्रभात जैन का ये खूबसूरत सफर अपने समापन की ओर आ पहुंचा है। आज हमने विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर फर्स्ट एड इन माइग्रेशन कॉन्टेक्ट्स यानी प्रवास, विस्थापन और यात्रा के दौरान प्राथमिक चिकित्सा के महत्व पर बात की। हमने जाना कि आपात स्थिति में हमारी थोड़ी सी जागरूकता और समय पर की गई मदद किसी के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हमारी अपनी अवंतिका नगरी में जहां देश विदेश से प्रतिदिन अनेक श्रद्धालु और यात्री आते हैं, वहां सेवा, सहयोग और संवेदनशीलता की भावना और भी मायने रखती है। किसी ज़रूरतमंद यात्री की मदद के लिए आगे बढ़ना ही सच्चे अर्थों में मानवता और अतिथि सेवा है। तो आइए आज हम यही संकल्प लें कि हम प्राथमिक चिकित्सा के प्रति जागरूक रहेंगे और ज़रूरत के समय बिना किसी भेदभाव के मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है आज की ये सुबह आपके लिए नई ऊर्जा, सकारात्मकता और एक सुंदर मानवीय संदेश लेकर आई होगी। साथियों, इसी के साथ सुप्रभात उज्जैन का आज का ये विशेष अंक यहीं संपन्न होता है। अब मुझे दीजिए अनुमति, मैं आपकी उद्घोषिका हिमानी आपसे लेती हूँ विदा। कल सुबह फिर एक नई सुबह, नई ऊर्जा और नई बातों और मधुर गीतों के साथ मुलाकात होगी 7:20 पर सिर्फ आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। आप हमें न्यूज़ ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी अवंतिका नगरी को स्वच्छ, सुंदर और गौरवशाली बनाइए। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। अठारवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। दो दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो रहा है। दो दिन तक चलने वाले इस वैश्विक सम्मेलन में विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 11 देश भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के

0: नेता कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत ब्रिक्स सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन व्यवस्था और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इनमें चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक भी शामिल है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है। साथ ही विभिन्न देशों के शीर्ष नेता पश्चिम एशिया और काला सागर क्षेत्र में चल रहे संघर्ष, ऊर्जा संकट और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। ब्रिक्स प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच आर्थिक नीतियों के समन्वय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह वह मंच है जहां ये देश ग्लोबल गवर्नेंस से जुड़े मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण तैयार करते हैं। वहीं निरंतर संवाद के माध्यम से ब्रिक्स बहुपक्षीय संस्थाओं के भीतर ग्लोबल साउथ के हितों को आगे बढ़ाने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। ब्रिक्स का एजेंडा विकास, वित्त, प्रौद्योगिकी, व्यापार तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। यह समूह विश्व स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बढ़ते आर्थिक प्रभाव और उनकी आकांक्षाओं को दर्शाता है। भारत की अध्यक्षता सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर आधारित है। इसमें विकास, स्थिरता और नवाचार को एजेंडे के केंद्र में रखा गया है। साथ ही यह ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को भी प्रमुखता देता है। भारत का उद्देश्य ब्रिक्स को एक रचनात्मक, समाधान केंद्रित और परिणाम वाले मंच के रूप में और अधिक सशक्त बनाना है। सुपर्णा सेकिया और अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की।
2: रूस के राष्ट्रपति के साथ बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कौशल या हुनर वाले पेशेवरों को एक दूसरे के यहाँ काम करने का अवसर देना और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित कई क्षेत्रों में भारत रूस के बीच सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि बातचीत और कूटनीति ही संघर्षों को सुलझाने का सही तरीका है और भारत शांति के प्रयासों में सहायता के लिए तैयार है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री को 24वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए रूस आने का निमंत्रण दिया। प्रधानमंत्री ने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय संबंधों और पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर चर्चा की। श्री मोदी ने भारत के इस रुख को लगातार दोहराया कि सभी मुद्दों को बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दुनिया भर में चल रहे टकरावों, आवागमन की आजादी, सतत विकास, अक्षय ऊर्जा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर चर्चा की। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई देशों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आसियान के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो कल रात राजधानी पहुंचे। बुरुंडी के राष्ट्रपति एवरिस्ते निराइशिमे अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भी भारत पहुंच चुके हैं। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह असीसी, इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली, फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी ओवरचुक और थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री सिहासिक फुआंग केटकेओ भी कल शाम नई दिल्ली पहुंच गए। नाइजीरिया के उपराष्ट्रपति काशिम शेटिमा नई दिल्ली पहुंच गए हैं। सुपर्णा और अनुपम की रिपोर्ट के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
4: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
4: आज जब दुनिया में

0: ट्रेड बैरियर्स बढ़ रहे हैं, भारत इकोनॉमिक ब्रिजेज बना रहा है। 2014 के बाद से हमने दुनिया के करीब 40 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं। इसमें भी हमारी अप्रोच यही है कि बैरियर्स को कम करना और बिजनेसेस के लिए अवसर बढ़ाना।
1: भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने कहा है कि ब्रिक्स सहयोग को ठोस व्यावसायिक परिणामों में बदलने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2: ब्रिक्स का गठन व्यापार के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा कई क्षेत्रों तक बढ़ गया है, जैसे वैश्विक राजनीति, आतंकवाद, कृषि और आवागमन से जुड़ी चुनौतियां। इसलिए 11 देशों का इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। मेरा मानना है कि इन देशों के बीच न सिर्फ व्यापार और सहयोग बढ़ना चाहिए, बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, यह दुनिया के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना को साकार करने वाला मंच बन सकता है।
3: वसुदेव कुटुंबकम
1: सम्मेलन को देखते हुए आज सवेरे 9:30 बजे से रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। वहीं दिल्ली मेट्रो कल सवेरे 6 बजे से सभी लाइनों पर अपनी सेवाएं शुरू करेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
6: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी।
7: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। वर्ष 2019 में शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत फरवरी 2026 तक देश भर में 24,96,000 से अधिक किसान पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें हरियाणा राज्य करीब 5,75,000 पंजीकरण के साथ पहले स्थान पर है, जबकि बिहार में 3,46,000 से अधिक किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। फरवरी 2026 तक इस योजना के कार्यान्वयन और इसकी पहुँच आने पर 540 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का उद्देश्य किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित कराना है, जो देश की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शिवांग की रिपोर्ट के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश में बाढ़ की बिगड़ती स्थिति के बीच राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक अकेले गुरुवार को लगभग 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, जबकि अब तक लगभग 21,000 लोगों को सुरक्षित बचाया जा चुका है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित आश्रय भी मुहैया कराया जा रहा है। बाढ़ के दौरान बीमारियों के फैलने के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय है। प्रभावित इलाकों में लगभग 1100 डॉक्टरों की टीमें तैनात की गई हैं। उधर राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद किया गया है। यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरेम द्वीप पर कब्जा कर लिया है। इससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में एक है। एशिया कप जूनियर महिला हॉकी के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से होगा। चीन की मोकी में ये मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 9:45 पर खेला जाएगा। इससे पहले कल भारतीय पुरुष टीम ने मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। एशिया कप महिला क्रिकेट के फाइनल में कल भारत का मुकाबला श्रीलंका से होगा। श्रीलंका ने कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। प्रतियोगिता में 7 बार की विजेता भारत ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया था। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुकेश। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले बिजनेस फोरम की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने सम्मेलन शीर्षक से लिखा है ब्रिक्स व्यापारिक बाधाएं हटाएं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है ब्रिक्स से बना ब्रिज, पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा शांति के प्रयासों में मदद के लिए तैयार। जनसत्ता के अनुसार समुद्र में नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। दैनिक जागरण लिखता है ब्रिक्स मंच पर साथ आए मोदी पुतिन फिजिशकियन। अमर उजाला की सुर्खी है जीडीपी आंकड़ों पर आईएमएफ की मोहर, भारत को दुनिया का ग्रोथ इंजन बताया, कहा आईआईपी और पीपीआई की नई श्रृंखला से बेहतर होगी आंकड़ों की गुणवत्ता। पत्र के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में $45 अरब की रिकॉर्ड बढ़त। ई कॉमर्स शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने लिखा है ऑनलाइन खरीदारी में फर्जी डिस्काउंट पर लगा, एमआरपी बढ़ाकर बड़ा डिस्काउंट का खेल नहीं चलेगा, पिछले 30 दिन की सबसे कम कीमत बतानी होगी। पंजाब केसरी की सुर्खी है मलेशिया को हरा भारतीय हॉकी टीम फाइनल में, जूनियर एशिया कप में लगातार 4थे और कुल 6ठे खिताब पर नजरे। लोकसत्ते के अनुसार महिला एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत, पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराया। दैनिक भास्कर ने खास खबर में दिया है भारतवंशी वसुधा ने अमरीकी गणितज्ञ जोआन को 92 वर्ष की उम्र में दोबारा गणित से जोड़ा। मैथ से दूरी बना चुकी थी जोआन, लेकिन छात्रा वसुधा की जिद ने भर दी ऊर्जा। गुरु शिष्या के जुगलबंदी ने सुलझाई 100 साल पुरानी गणित की थ्योरी। जनसत्ता ने दिया है भारत नवोन्मेष प्रदर्शनी में 37 अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी नवाचार प्रदर्शित। शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के समन्वय से किया आयोजन, नवाचारों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाना है उद्देश्य। हिंदुस्तान ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है पश्चिमी विक्षोभ तय करेगा सर्दियों में प्रदूषण। पत्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का सीधा संबंध शरद ऋतु के दौरान समुद्र के तापमान से होता है। इसके आधार पर प्रदूषण की गंभीरता का अनुमान एक मौसम पहले ही लगाया जा सकता है।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू। 2 दिन के सम्मेलन में वैश्विक सुशासन, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग सहित ब्रिक्स नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ब्रिक्स व्यापार मंच में प्रधानमंत्री मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री और आपूर्ति मार्ग तथा व्यापारिक बाधाएं हटाने पर बल दिया। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। यमन में हौसी विद्रोहियों की महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत हुई। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में बाढ़ का प्रकोप, राहत और बचाव कार्य तेज। और जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना दक्षिण कोरिया से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. 18th BRICS Summit to begin in New Delhi today. Discussions to focus on global governance, trade, security and supply chains as world leaders assemble for two-day summit. Prime Minister Narendra Modi to hold bilateral talks with Chinese President Xi Jinping and other BRICS leaders today on the sidelines of summit. Prime Minister Modi pushes for secure sea lanes, open supply routes and removal of trade barriers at BRICS Business Forum to sustain global trade. Saudi Arabia shuts vital pipeline after attack. Houthi rebels in Yemen seize strategic islands, tightening grip on key Red Sea shipping route. Uttar Pradesh government steps up relief and rescue operations as flood affect 25 districts. And in hockey, Indian women's team to clash with South Korea in semi-final of Junior Asia Cup in China this morning. And now the news in detail. The 18th BRICS Summit is set to begin at Bharat Mandapam in New Delhi today. The two-day grand event will bring together

0: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वेलकम बैक दोस्तों, FM 102.5 MHz पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जनियारजे हिमानी के साथ। सच बताइएगा दोस्तों, सिंह गर्जेगा सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए ना। फिल्म केसरी में हवलदार ईश्वर सिंह और उनके 20 साथियों ने साबित किया था कि जब बात अपने फर्ज और मातृभूमि की मर्यादा की हो तो संख्या मायने नहीं रखती, सिर्फ अदम्य हौसले मायने रखते हैं। जिस माटी ने हमें पहचान दी उस मिट्टी के प्रति समर्पण ही इंसान को अमर बनाता है। आइए इसी राष्ट्रभक्ति और समर्पण के साथ सुनते हैं ये कालजयी और भावुक नगमा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज। दोस्तों, हमारे देश की जांबाज जवानों की सबसे खास बात यह होती है कि वे जितने अनुशासन प्रिय और वीर होते हैं, उनका दिल उतना ही साफ और चुलबुला और जिंदा दिल होता है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराना और अपनी मस्ती में रहना सिख रेजिमेंट की पहचान है। तो चलिए, शौर्य के इस नमन के साथ आगे बढ़ते हैं जवानों के इसी बेफिक्र और ऊर्जावान अंदाज की ओर। आइए

0: सुनते हैं ये धमाकेदार और चुलबुला गाना।
1: लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट परे थम, जवान पीछे से गाना गाएगा।

FM 102.5 MHz पर हिमानी आपके साथ है। सानू कैंडी क्या बात है, इस गाने की बीट्स तो चेहरे पर अपने आप मुस्कान ले आती है। दोस्तों, जिंदगी के सफर में जब ऐसा ही कोई बेफिक्र और सच्चा साथी मिल जाए तो जो कहे कि चार कदम चल दो ना साथ मेरे, तो जिंदगी की कठिन से कठिन राह भी आसान लगने लगती है। प्यार में एक दूसरे का हाथ थाम कर साथ चलना ही तो जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। आइए इसी मिठास को हवाओं में घोलते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: पांच महीने हो गए ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए, नए स्किल सीखने हैं पर पैसे भी कमाने हैं, समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं।
1: तो फिर सोच कि तेरी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई।
0: क्या, कैसे?
1: अरे मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, 12th ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जहां तुम स्किल्स भी सीख सकते हो और 10,000 तक का स्टाइपेंड भी कमा सकते हो।
0: वाह, अच्छा रजिस्टर कैसे करें?
1: mmsky.mp.gov.in पर। MMSky, सीखो भी कमाओ भी।
2: FM 102.5 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से प्रोग्राम जानी आरजे में। दोस्तों, शनिवार की सुबह सुबह जान की गलियों में घूमते हुए जब रेडियो पर ऐसे नगमे बजते हैं तो मन अपने आप ही थोड़ा चुलबुला हो जाता है, और जब दिल किसी पर आ जाए तो फिर दिल बड़ा नटखट हो जाता है और सीधी सी बात कहता है। आइए सुनते हैं ये एनर्जेटिक और पैपी ट्रैक।

FM 102.5 MHz पर सुरों का कारवां जारी है। दोस्तों, जब दिल में किसी के लिए प्यार की नई नई शुरुआत होती है तो दिल बिना वजह ही धड़कने लगता है। समझ ही नहीं आता दिल ये बेकरार क्यों है। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? चलिए इसी मीठी बेकरारी का मजा लेते हैं इस खूबसूरत रोमांटिक गाने के साथ।

आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम उज्जैनी आरजे 102.5 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, जब इस बेकरार दिल को अपनी मोहब्बत का मीठा जवाब मिल जाता है तो मानो दिल के आंगन में बहार आ जाती है। जैसे हमारी अवंतिका में जब सुहाना मौसम होता है तो हर तरफ खुशियां खिल उठती है, वैसा ही कुछ दिल का हाल भी होता है। आइए सुनते हैं ये सदाबहार गाना।

FM 102.5 MHz पर RJ हिमानी आपके साथ है। दोस्तों, मोहब्बत की हर कहानी में सबसे जादुई पल वो होता है जब किसी से पहली बार नजरें मिलती हैं। वो पहली नज़र का जादू ऐसा होता है कि इंसान बस देखता ही रह जाता है। आप में से कितनों को अपनी पहली नज़र का वो पल आज भी याद है, हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल सुनते हैं ये सुपर हिट रोमांटिक नंबर।

आरजे हिमानी के साथ आप जुड़े हुए हैं प्रोग्राम उज्जैनी आरजे में। दोस्तों, अगला गाना सुनते ही दिल बस यही कहता है सुभान अल्लाह। जब जिंदगी में सच्चा प्यार और सच्चा साथी हो तो हर पल एक उत्सव जैसा लगता है। आइए इसी खूबसूरत एहसास में डूबते हैं और सुनते हैं ये दिलकश गाना।

FM 102.5 MHz पर गपशप और नगमों का ये संगीतमय सफर जारी है। दोस्तों, जब प्यार गहरा होता है तो इंसान अपनों के चेहरे पर एक मुस्कान लाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता है, फिर चाहे फलक से चांद तारे तोड़कर लाने का वादा ही क्यों ना हो। चलिए सुनते हैं कि ताज़ा तरीन और जबरदस्त सुपरहिट गाना।

FM 102.5 MHz पर आप साथ हैं आरजे हिमानी के प्रोग्राम उज्जैनी आरजे में। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा। वैसे चांद तो दूर की बात है दोस्तों, पर अपनों के लिए सच्चा साथ और वक्त देना ही सबसे बड़ा तोहफा है। जब जिंदगी में कोई ऐसा मिल जाए जो आपकी रूह को छू ले, तो लगता है जैसे पूरी दुनिया की खुशियां मिल गई हो। आइए सुनते हैं ये खास मेलोडी।

श्रोताओं, वक्त का पहिया लगातार घूम रहा है और बातों ही बातों में हमारा आज का ये सुहाना सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आज हमने सारागढ़ी के 21 जाबाजों के अदम्य साहस को नमन किया और साथ ही जाना कि देश रक्षा के साथ साथ अपनों से उनका रिश्ता कितना रूहानी और अटूट होता है। एक सैनिक जब सरहद पर होता है तो उसका अपनी मिट्टी और अपनों से वही गहरा नाता होता है जिसे वे माही गाना बयां करता है। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत और रूहानी गाना।

तो दोस्तों, इसी के साथ आज के उज्जैनी आरजे के सफ़र का ये खूबसूरत पड़ाव यहीं समाप्त होता है। आज हमने सारागढ़ी के वीरों की अदम्य वीरता और हवलदार ईश्वर सिंह की साहस को याद किया और उसके बाद सदाबहार नगमों के साथ प्यार, एहसास और खूबसूरत यादों का सफ़र भी तय किया। उम्मीद है आज की हमारी बातें और ये संगीत भरा सफ़र आपके दिन में कुछ अच्छे एहसास ज़रूर छोड़ गया होगा। अब आपकी आरजे हिमानी को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी उज्जैनी आरजे में एक नई सुबह, नई बातों और नए नगमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन 102.5 MHz पर। नमस्कार।

नमस्कार उज्जैन FM 102.5 MHz पर मैं हूँ आपकी आरजे हिमानी और आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम बॉलीवुड बीट्स। आज 12 सितंबर है, शनिवार की एक खूबसूरत और सुहानी सुबह आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए। वीकेंड की शुरुआत हो चुकी है, उम्मीद है आपकी स्टैंडर्ड मॉर्निंग गर्मा गर्म चाय और एक प्यारी सी स्माइल के साथ शुरू हुई होगी। अगले आधे घंटे तक हम बॉलीवुड के ऐसे गानों का मजा लेंगे जो आपकी शनिवार की सुबह में एक ताज़ा और सुरीला एनर्जी भर देंगे। तो बस अपने रेडियो का वॉल्यूम बढ़ाइए और एंजॉय कीजिए। शुरुआत करते हैं फिल्म तनु वेड्स मनु के इस बेहद मीठे और रोमांटिक गाने के साथ।

क्या बात है, मोहित चौहान जी की आवाज में ये गाना सुनकर दिल एकदम खुश हो गया। चलिए शनिवार की सुहानी सुबह को थोड़ा और खास बनाते हैं और सुनते हैं अगला गीत।

आप साथ हैं हिमानी के बॉलीवुड बीट्स में FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, जब शनिवार का दिन हो तो थोड़ा सा मजाक, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारा प्यार तो बनता है। फिल्म मैंने प्यार क्यों किया का यह ट्रैक जब भी बजता है तो मन झूमने लगता है। आइए सुनते हैं ये मजेदार गाना।

श्रोताओं, अब इस सुहाने वीकेंड का मिजाज थोड़ा सा क्लासिक सुकून भरा और सुरमई बनाते हैं। फिल्म लुटेरा का ये ऑल टाइम फेवरेट गाना आज भी जब कानों में पड़ता है तो 90 के दशक की वो प्यारी सी ठंडक और यादें ताज़ा हो जाती है। मोनाली ठाकुर की जादुई आवाज़ में सुनिए ये बेहद खूबसूरत नगमा।

FM 102.5 MHz पर गानों का कारवां यूं ही लगातार आगे बढ़ रहा है। अब बारी है हमारी प्लेलिस्ट में थोड़ा सा नटखटपन और शरारती अंदाज जोड़ने की। फिल्म अल्लाह की नो टाइम फॉर लव का ये ट्रैक आपको पुराने दिनों की मासूमियत में ले जाएगा। सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में सुनिए ये जबरदस्त और प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, प्रोग्राम अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया है, लेकिन हमारा शनिवार का ये सफर एक धमाकेदार और एनर्जेटिक नोट पर समाप्त होना चाहिए। पंजाबी तड़के और बॉलीवुड बीट्स के बेमिसाल मेल के साथ फिल्म चुप चुपके का ये आइकॉनिक गाना आपके वीकेंड को यादगार बना देगा। सोनू निगम और कुणाल गांजावाला की आवाज में सुनिए ये सुपर हिट ट्रैक।

क्या जबरदस्त और धमाकेदार समापन था। आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आधा घंटा आपके साथ गानों की मस्ती में कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। उम्मीद है इन गानों ने आपके शनिवार को एक शानदार शुरुआत दी होगी। अब अपने दोस्त आरजे हिमानी को दीजिए इजाजत, अपने वीकेंड को पूरी तरह एंजॉय कीजिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

नमस्कार उज्जैन FM 102.5 MHz पर मैं हूँ आपकी उद्घोषिका हिमानी और वक्त हो गया है आपके सबसे पसंदीदा और सदाबहार प्रोग्राम का यानी आपकी फरमाइश। दोस्तों आज 12 सितंबर है, शनिवार की इस खूबसूरत सुबह आपके खतों, संदेशों और फरमाइशों का पिटारा लेकर मैं हाजिर हो चुकी हूँ। हमारी आज की पहली फरमाइश आई है तास मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, मोहम्मद साकिब पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं बाजार चौक ग्राम दीवाल से शंकर लाल गंगराड़े, वनीता गंगराड़े, छोटू, पूजा, रोशनी, अजय और वामिका गंगराड़े। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं ग्राम छेंगा व देवी जिला खंडवा से अशोक कुमार वागे, वंदना वागे, भूपेंद्र वागे, झवर वांगे, तनुश्री, आरोही और कान्हा वागे। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

सफर को आगे बढ़ाते हैं। अगली फरमाइश हमारे पास आई है शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा जिला खनगोन मध्य प्रदेश से। डॉक्टर तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन समर राज, आर्यन वर्मा, बेबी आरोही इशिका वर्मा और अंजलि श्वेता वर्मा की। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतक बिरक और मीका बिरक। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

FM 102.5 MHz पर फरमाइशों का सफर जारी है। अगली फरमाइश हमें भेजी है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन ने। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय बेबी अनिष्का और राधिका गजभिये। और इस गाने को सुनना चाहते हैं ऊपर कोट बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अरजान और अदान अब्बासी। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, अब रुख करते हैं अगली फरमाइश की ओर, जो हमें भेजी है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लाहौरी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला धनजे और गायत्री धनजे ने। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का गाना।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमें भेजी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा और कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं। मालवा रेडियो श्रोता संघ, प्रमिलागंज, आलोर, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है भंडार सिवनी कोंडा गांव छत्तीसगढ़ से। सुभाष चक्रधारी, श्रीमती कविता चक्रधारी, मुस्कान और अनुष्का चक्रधारी की। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं शालर पहलगाम, काश्मीर से परिजादा मेहरजुद्दीन, केशरदीन और नजमदीन। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुंवर, दीपक श्याम कुंवर, श्रीमती प्रमिला और ज्योति श्याम कुंवर। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

श्रोताओं सफर को आगे बढ़ाते हैं। अगली फरमाइश हमें भेजी है बोरखेड़ा पिपरामल जिला उज्जैन से विनोद मोड़त, नेहा जैन, दीपक, मयंक मोड़त, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दिशा और कुश मोड़त ने। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का गाना।

श्रोताओं, वक्त का पता ही नहीं चला और हम अपनी आज की अगली आखिरी फरमाइश पर पहुंच चुके हैं, जो हमें भेजी है कोटमा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबीहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कलां गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय ने। साथ ही इस गाने को सुनना चाहते हैं बरेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल ढोमने, अर्जुन गवनेकर और धीरज सब्बासेरे। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का गाना।

उम्मीद है इन सुरीले गानों ने आपकी शनिवार की सुबह को बेहद खास बना दिया होगा। जिन श्रोताओं की फरमाइशें आज समय की कमी की वजह से रह गई हैं, उनसे माफी चाहेंगे, अगली बार उन्हें जरूर शामिल किया जाएगा। अब वक्त है विदा लेने का। मैं थी आपकी उद्घोषिका हिमानी, आकाशवाणी उज्जैन FM 102.5 MHz पर। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, हमारे पास एक विशेष फरमाइश है जिसे भेजा है आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गम्हाड़कर, राही श्रीमती सरिता गम्हाड़कर और प्रिंस एकांश कवाड़कर ने। आइए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए चित्रपट संगीत कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहला गीत है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है अलग अलग।

चित्रपट संगीत का अगला गीत सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज में। नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है शक्ति।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला और शिकायती गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है नगीना।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
0: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी।
0: बिल्कुल। वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए अमित कुमार की आवाज में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है तेरी कसम।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी बंदिनी, वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रपट संगीत में अगला और अंतिम गीत सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज की आवाजों में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है चालबाज।

0: दोस्तों नमस्कार, मैटिनी शो इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत से यूनुस खान की बातचीत।
1: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत जी। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका सर।
1: राजेश जी, जो आपका सबसे बड़ा काम है वो मुंबई को लेकर है। आपकी कई किताबें हैं, जो मेरी नजर सबसे ज्यादा पड़ी वो आमची मुंबई सीरीज की दो किताबों पर पड़ी है। तो मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप मुंबई कब आए, और दूसरा ये कि ये जो मुंबई पर काम करने का सिलसिला एक के बाद एक के बाद एक मुंबई पर आपकी किताबें आ रही हैं, ये कैसे शुरू हुआ?
2: देखिए, मैं 1989 में मुंबई आया, अमेठी से, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से। तो जो मेरा पहला ठिकाना बना, हाँ, चर्चगेट इलाके में, और वो है मुंबई यूनिवर्सिटी के राजाबाई टावर के ठीक सामने महर्षि कर्वे रोड पे वो बिल्डिंग है।
1: अच्छा,
2: क्वींस कोर्ट। और अगर आप देखें तो जो वास्तविक मुंबई है वही इलाका है चर्चगेट के 1.5 किलोमीटर के रेडियस में। जितनी चीजें हैं मुंबई को लेके, चाहे इतिहास से जुड़ी हो या संस्कृत से जुड़ी हो या राजनीति से जुड़ी हो या मुंबई के विकास के जुड़ी हुई, सारी की सारी चीजें उसी 1.5 किलोमीटर के अंदर आपको मिलेगी। चाहे विक्टोरिया टर्मिनस हो, चाहे और भी चीजें हो, लायन गेट हो जहां नौसेना विद्रोह हुआ था,
1: रीगल
2: टॉकीज हो, ओवल मैदान हो, क्रास मैदान हो, आजाद मैदान हो, ये सारी की सारी चीजें वही हैं। तो उस इलाके में रहते रहते मुंबई के बारे में मुझे प्रेम जगा, एक मोहब्बत जगी, जिसको आप इश्क कह सकते हैं। तो मैं मूल रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम में नौकरी करने के लिए आया था।
1: अच्छा।
2: तो मेरे बैच के जितने भी लोग थे वो एक एक करके समय आने पर मुंबई से ट्रांसफर करवा के अपने गांव की ओर चले गए, लेकिन मुंबई के प्रति प्रेम की वजह से मैं रुका रहा। और 1990 के आसपास फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो पहला मतलब मेरी नज़र में आया कि जिस शहर ने मुझे रोजी रोटी दी है, उस समय तो रोजी रोटी ही थी, नाम और सम्मान की कोई बात ही नहीं थी, संघर्ष का दिन था। तो मैंने सोचा कि मुंबई पे लिखना शुरू करना चाहिए। और आप ये देखिए, विसंगति देखिए कि मैं गंभीर लिखता हूं मुंबई पे, लेकिन जो मैंने पहला लेख लिखा था वो जो था ये था, यह है बॉम्बे मेरी जान, और वो व्यंग लेख था मुंबई पे, वो मेरी शुरुआत थी।
1: जी, जिस इलाके से आपने शुरू किया, आपने बताया कि क्वींस कोर्ट वाला इलाका था जहां आपकी रिहाइश बनी, साउथ बॉम्बे का वो इलाका जहां चारों तरफ इतिहास बिखरा हुआ है, और भारतीय जीवन बीमा निगम का जो मुख्यालय है वो भी उसी इलाके में है। तो आपका जो आना जाना, आपका जो काम काज है वो पूरा साउथ मुंबई में हुआ। वो कौन सी चीजें थी दक्षिण मुंबई की जिन्होंने आपको बहुत फैसिनेट किया?
2: वो सबसे बड़ी चीज तो ये थी कि मेरे सामने वो राजाबाई टावर मुंबई यूनिवर्सिटी का, और उससे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो आपको पता होगा वाटसन होटल,
1: बिल्कुल, जहां मुंबई का पहला सिनेमा दिखाया।
2: यस, पहला ल्यूमियर्स ब्रदर्स ने वहां पहला सिनेमा दिखाया। और दूसरी बात है कि बड़े बड़े लोग मोहम्मद अली जिन्ना से लेके मार्क ट्वेन तक उस वाटसन होटल में ठहरे। और एक बात और भी, आज तो 5 स्टार 7 स्टार का जमाना है सर,

उस जमाने में जब स्टार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो ये वाटसन होटल जो है सेवन स्टार के तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करता था। जब मैं वाटसन होटल से गुजरता था 1990 के दशक में, तो

0: इस तरह की चीजों को देख के जो मेरे मन में आया कि मुंबई पे लिखना चाहिए, और थोड़ी दूर पे लायन गेट था।
1: जी
0: आपको
1: नेवी का,
0: पता है कि रॉयल नेवी का जो बहुत बड़ा विद्रोह था अंग्रेजों के जमाने में, उसकी शुरुआत वहीं से हुई।
1: बॉम्बे और कराची वाला।
0: वो जो विद्रोह था बॉम्बे वाला, और वो एक साथ कई जगहों से हुआ है। दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, आप सब पता होगा क्योंकि आप भी मुंबई के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कि वो जहां पे ये महाराष्ट्र पुलिस का मुख्यालय है, वो
1: जी
0: जगह पहले कब्रिस्तान थी, मेडम पॉइंट एक जमाने में, क्योंकि इस इलाके में पूरा का पूरा इतिहास बिखरा है। हालांकि सर, मैं इतिहास का विद्यार्थी कभी नहीं रहा, मैं
1: जी
0: विज्ञान का विद्यार्थी था, लेकिन वहां से जो मुंबई को लेके एक रुचि उत्पन्न हुई वो बराबर चलती रही। 2012 में मुंबई पे मेरा पहला काम आया, एक मराठी पुस्तक का हिंदी अनुवाद।
1: वो क्या पुस्तक थी?
0: मराठी पुस्तक थी मुंबई तील गुनेगारिंचा एनसाइक्लोपीडिया, मेरे मित्र श्री प्रभाकर पवार जी की मराठी में पुस्तक। वो दैनिक सामना से जुड़े थे, और 1993 से मैं दोपहर का सामना से जब जुड़ा तो मैंने 2012 में उसका अनुवाद किया, मुंबई माफिया एक एनसाइक्लोपीडिया।
1: अरे
0: ये मुंबई
1: बाप
0: पे
1: रे,
0: मेरा पहला
1: मतलब
0: काम
1: क्राइम
0: था।
1: वाला पूरा काम, जितने डॉन हुए हैं।
0: जी, मेरी दिलचस्पी थी, और फिर उसके बाद चलता गया, और 2015 से लेकर 2020 तक, यानी कि पूरे के पूरे 5 सालों तक दोपहर का सामना में मेरा एक कॉलम छपता था आमची मुंबई,
1: जी,
0: मुंबई के इतिहास पे।
1: उसमें आप लगातार इतिहास पर काम करते थे
0: लगातार, और
1: जी।
0: 2019 में मेरी पहली किताब आई आमची मुंबई।
1: जी
0: और जब आमची मुंबई आई, आपने बात की आमची मुंबई 2 की, जब आमची मुंबई आई 2019 में, तो वो आमची मुंबई जो है वो अखबारी लेखन था। अखबारी लेखन की एक सीमा होती है, और मुंबई पर काम करने की सर मेरी भूख इतनी थी कि किसी अखबार के कॉलम से वो मिट नहीं सकती थी। तो 2019 से, क्योंकि कई कई कहानियां इतनी रोचक थी, इतनी बड़ी थी कि वो अखबार के कॉलम में समाहित हो नहीं सकती थी, तब मैंने 2019 में आमची मुंबई 2 पे काम करना शुरू किया, जो पिछले साल 2025 में आई।
1: क्या बात है। तो दो बड़ी किताबें मुंबई के इतिहास पर ये नजर आती हैं, और उसके अलावा मुंबई के माफिया पर भी आपकी किताब है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश की जाए कि बम्बई के इतिहास पर काम करना इतना आसान नहीं है, तो किन लाइब्रेरीज की और ग्रंथों की खाक छानते हुए आपने तथ्य जमा किए, और ये कितना मुश्किल था?
0: वो एक बड़े इतिहासकार ने कहा है कि इतिहास का सबसे बड़ा सबक यह है कि हम उससे कोई सबक नहीं लेते। जब हम इतिहास पे शुरू करते हैं तो हमको अपना जो नजरिया है बहुत विस्तृत करना पड़ता है, और ज्यादातर अगर देखा जाए तो आज इंटरनेट का जमाना है, हमारे पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं जो है अगर किसी पे भरोसा करता हूँ इस मामले में ग्रंथालय की, तो दो है। पहले नंबर पे एशियाटिक लाइब्रेरी है,
1: जी
0: दूसरे नंबर पे हिंदुस्तानी प्रचार सभा की लाइब्रेरी है, और जो मेरे संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम का पुस्तकालय भी है वो बहुत समृद्ध है।
1: अरे गजब।
0: वहाँ हिंदी अंग्रेजी मराठी की बहुत सारी दुर्लभ पुस्तकें हैं, रेफरेंस की पुस्तकें हैं, तो वहां से मैंने शुरू किया। इस बारे में मैं बहुत रिसर्च करता हूं, लगातार रिसर्च करता हूं। मैं सर आपको रिसर्च का एक उदाहरण देना चाहूंगा
1: जी,
0: कि आम धारणा है कि मुंबई जो है 7 द्वीपों से बनी है, उसमें मुंबई द्वीप जो मुख्य द्वीप है और माहिम है, फिर कोलाबा है, मझगांव है, वर्ली है, ओल्ड वुमन आइलैंड है, लिटिल कोलाबा है, इस तरह के 7 द्वीप हैं, आम धारणा है। लेकिन हकीकत यह है कि आप किस तरह से कहते हैं कि मुंबई में सचमुच 7 द्वीप थे। मेरी पुस्तक आमची मुंबई 2 का पहला लेख है वह 7 द्वीप जिनसे मिलकर मुंबई बनी, लेकिन उसी पुस्तक में 7वां लेख है क्या मुंबई में सचमुच 7 द्वीप थे। हकीकत में आप 7 द्वीप कहते कैसे, वो थियरी आई कहां से? मुंबई पे इतिहास के शोध किया है मिस्टर टिम राइडिंग ने, बहुत बड़ा शोध है उसने। उनका कहना है कि 7 द्वीप नहीं थे, जो 7 द्वीपों की बात है

0: वो 19वीं और 20वीं सदी के प्रारंभ में जो मिथक और भ्रांति से आई, एक्चुअली वो जो द्वीपों की संख्या है 4 से 6 है ओरिजिनल। रॉबर्ट मर्फी ने इस प्रश्न को उठाया भी, उन्होंने एक नक्शा भी बनाया जिसमें 4 या 6 द्वीप, क्योंकि वो 2 को गिनते नहीं थे, मजगांव और परेल उनकी नजर में द्वीप अलग अलग नहीं थे,
1: वो लैंडलॉक एरिया है।
0: हाँ, लेकिन उसके बाद हकीकत में जो 7 द्वीपों की थियरी आई सर, वो ईसवी सन 150 में टॉलेमी का एक ग्रंथ है ज्योग्राफिका, पूरा नाम है लेंडास द ज्योग्राफिका, यानी कि भूमि का भौगोलिक शास्त्र, उसमें जो है मुंबई यानी पूर्व में स्थित एक जगह का जिक्र जो है हेप्टानेशिया के रूप में किया गया है। हेप्टानेशिया का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है 7। तो जो 7 का मिसकंसेप्शन है वो उधर से आया, ओरिजिनल वो 6 द्वीप से ज्यादा नहीं थे। तो हमको इस चीज को खोजने के लिए जो टिम राइडिंग का शोध था, बहुत लंबा चौड़ा शोध था, तो मैंने कम से कम उसकी 3 जगहों पे क्रॉस चेकिंग की, जो यहाँ लिखा है वो सच है क्या, क्योंकि जब हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं किताब के जरिए तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि कहीं ऐसा नहीं कि कभी किसी पाठक ने ये बताया कि सर ये आपने गलत लिखा है। तो उसमें मैंने 2-3 लाइब्रेरी की खाक छानी और कई कई चीजें हमको मिली, तो उससे लगा कि नहीं, जो टिम राइडिंग का शोध है वो अपनी जगह पे सही है, रॉबर्ट मर्फी का भी शोध सही है, जॉन थॉर्नटन का एक नक्शा था वो भी सही है। तो इस ढंग से इस शोध में होता है, एक सिर्फ छोटी सी घटना, एक छोटे से प्रसंग को लेके मैं इस शोध की बात और आगे बढ़ाऊंगा कि 1857 की जो क्रांति हुई, आजादी की पहली लड़ाई, तो वो और जगहों की तरह मुंबई में भी हुई। मुंबई में हुई का मतलब यह है उसको करने की कोशिश की गई। मरीन बटालियन के कुछ लोगों ने, कुछ सिपाहियों ने मिलके ये योजना बनाई। उनकी योजना थी कि नाना साहब पेशवा के नेतृत्व में हम विद्रोह करेंगे मुंबई में। लेकिन उस जमाने में मुंबई का कमिश्नर था चार्ल्स फोरजेट। फोरजेट का जो इंटेलिजेंस था वो बहुत गहरा था, बहुत अच्छा था। तो सोनापुर यानी मरीन ड्राइव के इलाके में, मरीन लाइंस के इलाके में क्रांतिकारियों की, सैनिकों की बैठक होती थी। फोरजेट खुद भेष बदल के उसमें गया, उस बैठक में, और वहां से ये योजना जो है, इस योजना का पर्दाफाश हो गया। मुंबई पुलिस ने, चार्ल्स फोरजेट ने उस क्रांति को जो है उसको एकदम उसका पर्दाफाश कर दिया, और कई लोगों को उसमें सजाएं मिली, जिसमें 2 लोगों को आजाद मैदान में, उस जमाने में कांपा का मैदान कहा जाता था, तोप से तोप के मुंह पे बांध के उड़ा दिया गया। 2 सिपाही मंगल गडरिया और सैयद हुसैन। क्योंकि वो अंग्रेजों का जमाना था, ब्रिटिशों का शासन था, तो किसी भी पुस्तक में मंगल गडरिया और सैयद हुसैन का कोई भी जिक्र नहीं मिलता, सिर्फ नाम मिलता है। मुझे खोजबीन के दौरान कम से कम एक ही मुद्दे पे मैं 6 महीने लगा था, तो कहीं से सिर्फ इतना पता चला कि मंगल गडरिया जो था वो मूल रूप से गोंडा के गांव का निवासी था और सैयद हुसैन लखनऊ के आसपास के। तो ये मेरी, अभी भी मुंबई के कई इतिहासकार ये मानते हैं कि इन दोनों क्रांतिकारियों का ओरिजिन अगर किसी ने खोजा या थोड़ी सी ही जानकारी मिली तो वो मुझे बोलते हैं कि आपने खोजा, लेकिन उसमें 6 महीने सिर्फ एक ही तथ्य खोजने में चले गए। इतिहास के साथ सर ये होता है
1: जी। तो इतनी मशक्कत करने के बाद तथ्य आपने जमा किए, इन दिनों आप किस किताब पर काम कर रहे हैं?
0: इन दिनों का ये है मेरी पुस्तक साहित्य और मुंबई। और एक्चुअली मुंबई के बारे में बहुत सारे लेखकों ने लिखा है कि यहाँ साहित्य सृजन की, लेखन की बहुत सारी संभावनाएं मौजूद है और ये शहर प्रेरणा देता है, मोटिवेट करता है। तो साहित्य और मुंबई में मैंने 5 भाषाओं पे फोकस किया है, जैसे मुंबई के साहित्य, संस्कृति और इतिहास पे लिखी गई पुस्तकें, नॉन फिक्शन, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी, इसी तरह मुंबई को लेकर

0: लिखे गए उपन्यास इन पांच भाषाओं में, उनका जिस्ट, उनका सारांश, मुंबई पे लिखी गई कविताएं इन पांच भाषाओं में, मुंबई पे लिखी गई कहानियां इन पांच भाषाओं में, मतलब इस तरह के काम हुए हैं। हम लोगों को गर्व होना चाहिए कि जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूं, सन 1817 में शहर की पहली शहरी जीवनी उर्दू में छपी।
1: बाबा,
0: लेकिन वो छपी कहां? मुंशी नवल किशोर प्रेस लखनऊ।
1: अरे क्या,
0: शहर की पहली जीवनी।
1: हाँ हाँ।
0: तो आप उसमें इस तरह की किताबों का जिक्र देखेंगे, बुक ऑफ बॉम्बे को पढ़ेंगे, मुंबई का वृत्तांत पढ़ेंगे, मुंबई के वर्णन गोविंद नारायण माडगांवकर की किताब है
1: जी।
0: और जेम्स मैकलिन की गाइड टू बॉम्बे, इस तरह की किताबों पे पढ़ेंगे, और बहुत सारी हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू और अंग्रेजी की किताबों, कहानियों और कविताओं की चर्चा उस पुस्तक में आप पढ़ेंगे
1: जी। तो ये भी बहुत मशक्कत का काम है, इसके लिए भी बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है।
0: पिछले साल जुलाई से चल रहा है उस पे शोध, और अभी 3-4 महीने और लगेंगे सर।
1: तो क्या देश के अलग अलग इलाकों में जाना पड़ता है
0: या नहीं? मुंबई, मुंबई पे काम, मुंबई की लाइब्रेरियों में काम, मतलब इस तरह के विद्वानों से मिलना जो साहित्य के बारे में जानते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, उर्दू के विद्वानों से, लाइब्रेरियों में जाना, पढ़ना, उधर से तथ्य निकालना।
1: मुंबई माफिया पर जो आपने काम किया है, ये इतिहास कितना पुराना है?
0: ये बहुत पुराना इतिहास है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि जब से ये मोस्टली जो इतिहास है 1950 के दशक से,
1: आजादी के बाद का,
0: आजादी के बाद के दशक का, तब छुरे और गुप्ती वाले थे, उन्होंने शुरू किया, और दूसरी बात 60-70 के दशक में वो गोल्डन गैंग वगैरह लोग आए, और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो 80 के दशक से मुंबई माफिया का प्रभुत्व तो बहुत तेजी से शुरू हुआ। हाँ, जब वो हाजी मस्तान, करीम लालदा, शुक्र नारायण बकिया, दाऊद वगैरह का तो बहुत बाद में प्रवेश हुआ, फिर मतलब धीरे धीरे आज भी है, लेकिन अब हम ये, एक जमाने में मुंबई को हम माफिया सिटी बोल सकते हैं, लेकिन अब नहीं बोल सकते। अब तो बहुत शांत और बहुत सुव्यवस्थित और बहुत समृद्ध महानगर है आमची मुंबई, जिससे मुझे बहुत गहरा प्रेम है। तो इसलिए मुंबई के माफिया पक्ष की या मुंबई के निगेटिव पक्ष को मैं बहुत सिंबॉलिक रूप से कहता हूँ, उसकी बजाय मेरी नज़र में मुंबई के और जो सर्वसमावेशी संस्कृति है, मुंबई की समृद्धि है, सबको अपना बनाने की एक जो यहाँ की मिट्टी में तासीर है, मैं उसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ।
1: मुंबई सदा से मिनी हिंदुस्तान रहा है, इसका फूड कल्चर, सिनेमा की संस्कृति, इन सब पर लिखा आपने?
0: हर तरह से, जब मैंने मुंबई पे कॉलम लिखता था तो मैंने मुंबई की नाइट लाइफ पे लिखा, सिनेमा पे लिखा, फिल्म स्टूडियोज की सोकांतिका पे मैंने 2-3 आर्टिकल लिखे, आमची मुंबई वन में वो लिखेंगे, और खान पान की जो संस्कृति है उस पे, उन सब पे भी मेरी कोशिश रही कि हर चीज यहाँ पे मुंबई का जो भाषाई परिदृश्य है, मेरी उस पे भी एक पुस्तक आई है, मुंबई और हिंदी
1: जी,
0: हिंदी
1: तो
0: को लेकर।
1: मुंबई में हिंदी, मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, ये भाषाएं मुख्य रूप से चलती हैं, लेकिन सही मायनों में देखा जाए तो ये एक मिनी हिंदुस्तान है, इसके अलावा देश के तमाम हिस्सों के लोग यहाँ पाए जाते हैं, इस पर आपने गौर किया?
0: बिल्कुल गौर किया, मुंबई में मराठी, गुजराती, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के अलावा कुल 16 भाषाएं हैं जिनको मुंबई की मुख्य भाषा होने का दर्जा प्राप्त है।
1: 16 भाषाएं?
0: हाँ, 16 जो मुख्य भाषाएं हैं, और आपको ये भी जान के खुशी होगी कि मुझे जैसे आपने मिनी हिंदुस्तान की बात की, मैं वो कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मुंबई या महाराष्ट्र और मुंबई पूरे देश में इस वजह से अलग है कि मुंबई की सर्वसमावेशी संस्कृति है, दुनिया में जितने भी प्रमुख धर्म हैं यहाँ पर आपको उन धर्मों के लोग मिल जाएंगे, और उनमें एक जो भाईचारा है, जो सद्भावना है, उनके दर्शन होंगे, इसलिए मैं मुंबई को मिनी हिंदुस्तान से ज़्यादा एक लघु विश्व का दर्जा देता हूँ, जहाँ पे आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, हर देश के लोग मिल जाएंगे।
1: ये जो लघु विश्व शब्द का इस्तेमाल किया है, इसे पकड़कर हम दूसरी दिशा में जरूर जा सकते हैं, जहां मुंबई में दूसरे देशों के लोगों की रिहाइश बहुत रही है, इजरायलीज, ईरानी और ब्रिटिश, अमेरिकन्स, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे। आपका एक काम है आजादी की लड़ाई और मुंबई, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जिसमें सबसे बड़ा माइलस्टोन आता है 9 अगस्त 1942 या 8

0: अगस्त 1942 कह ले हम, जो ग्वालियर टैंक में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, लेकिन कांग्रेस रेडियो या मैं ये कहता हूं कि 20वीं सदी से पहले की लड़ाई क्या थी आजादी की?
1: नहीं, मुंबई का आजादी की लड़ाई में जिसका आपने जिक्र किया अगस्त क्रांति, उसके अलावा भी है,
0: एक उषा मेहता का कांग्रेस रेडियो था,
1: उषा मेहता जी और लोगों ने मतलब उसको शुरू किया था। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि किस ढंग से जुड़ा है, ये जो नारे हैं क्विट इंडिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, या करो या मरो, या साइमन गो बैक, ये दो तीन महत्वपूर्ण नारे पूरे देश में गूंजे। लेकिन ये नारे गढ़े किसने? साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये गढ़े मुंबई कर यूसुफ मेहर अली जी ने।
0: ओहो हो,
1: उन्होंने मतलब क्विट इंडिया और अंग्रेजों भारत छोड़ो या साइमन गो बैक, महात्मा गांधी जी मतलब ने यूसुफ मेहर अली जी को ये जिम्मेदारी दी थी कि आप इस तरह को, इस चीजों को किस तरह से कर सकते हो। तो उन्होंने ये दो तीन नारे गढ़ के दिए और पूरे देश भर में गूंजे। साइमन गो बैक के नारे वो पंजाब में भी गूंजे या पूरे देश भर में। एक और महत्वपूर्ण इस मामले में एक और है जो आजादी की लड़ाई में मुंबई के योगदान से संबंधित है। एक बहुत बड़ा कोटेशन है, बहुत महत्वपूर्ण, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा।
0: वाह वाह,
1: ये कहा जाता है कि लोकमान्य तिलक का नारा है
0: जी।
1: लोकमान्य तिलक जी ने इसको फेमस किया, इसको विख्यात किया, लेकिन ओरिजिनली इस नारे को लिखा और गढ़ा जोसेफ काका बैप्टिस्टा ने, मझगांव में उनके नाम पे गार्डन है। तो मुंबई में इस तरह की कहानियां हैं। और मैंने आपको,
0: ये तो बहुत शॉकिंग है।
1: हाँ यस, मैंने आपको क्या बताया, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे 1857 में मेरठ में और जगहों पे क्रांति, मुंबई की क्रांति का जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं आता
0: जी।
1: लेकिन वो बॉम्बे प्लाट के नाम से, अगर आप इतिहास को खंगालेंगे तो बॉम्बे प्लाट के नाम से ये पूरी की पूरी क्रांति, जो मैंने सैयद हुसैन और मंगल गडरिया की कहानी बताई आपको, जो प्रसंग बताया वो पूरा का पूरा है। और अक्टूबर 1857 में, 10 अक्टूबर 1857 को मंगल गडरिया और सैयद हुसैन को आजाद मैदान में तोप से बांध के उड़ा दिया गया था। तो मुंबई का बहुत बड़ा योगदान है
0: जी। अच्छा, भारत में जो रेलवे मूवमेंट शुरू हुआ वो तो जाहिर है कि मुंबई से शुरू हुआ, और 1853 में जो मुंबई से ठाणा तक ट्रेन चलाई गई, और इस रेल मूवमेंट के बारे में कुछ बताएं।
1: हाँ, रेल मूवमेंट के बारे में, ये सपना था कि एक रेलवे होना चाहिए, और हमारे लिए गर्व की बात है कि जगन्नाथ शंकर सेठ, नाना सेठ ने इस बारे में बहुत सारा काम किया था। उन्होंने एक इंडियन एसोसिएशन बनाई, उसके बाद इंडियन रेलवे एसोसिएशन बनी, जिसका विलय ब्रिटिश सरकार की संस्था में हुआ, और वो 1853 में वो ट्रेन चली। लेकिन ये बहुत बड़ा काम था, क्योंकि मुंबई सीएसटी से लेकर थाना तक उस जमाने में मतलब रिहाइश जो है एकदम ये थी, और दूसरी पहाड़ियां थी छोटी छोटी, और जो इलाका है मझगांव वगैरह या जहां से रेल गुजरती थी, या आगे चल के पुल बनाना, है बहुत कठिन काम था। और लोग ये कहते हैं कि ये सब ब्रिटिश सरकार की वजह से ही संभव हुआ, अगर ब्रिटिश सरकार न होती तो 1853 में जो मुंबई से थाना तक पहली ट्रेन चली वो ट्रेन चल नहीं पाती।
0: जो रेलवे स्टेशन थे वो तो आज जहां है वहां से बहुत अलग जगहों पर हुआ करते थे, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए।
1: तब के जमाने का जो भौगोलिक वो डेमोग्राफी थी सर, तब के जमाने की अलग थी और आज के जमाने की अलग थी,
0: तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
1: हाँ, तब कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि मतलब इस तरह की जगहों पे रेलवे स्टेशन होगा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हार्बल के बहुत सारे रेलवे स्टेशन जमीन से बहुत ऊपर है, तो वो इसी कॉन्सेप्ट का नतीजा है
0: जी। बहुत बढ़िया, आपसे तो बातें जो हैं वो कभी ना खत्म होने वाली हैं, पर बहुत अच्छा लगा मुंबई के इतिहास पर जिस तरह से आपने काम किया है। आमची मुंबई 1, आमची मुंबई 2, मुंबई माफिया, मुंबई और हिंदी, मुंबई और साहित्य, ये तमाम चीजें जो हैं ये बहुत दिलचस्पी जगाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए। और मुझे लगता है कि जब हमने सब चीजों की बातें की तो चलते चलते मुंबई पर एक फिल्मी गाना भी आपकी पसंद का सुनवा लिया जाए।

0: मेरी जान।
1: बहुत बहुत शुक्रिया राजेश विक्रांत जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे ढेर सारी बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद सर।
3: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पत्रकार और लेखक राजेश विक्रांत से यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग रीमा जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
4: ये विविध भारती है, दिन के 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। अठारहवां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज से नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ये चर्चा द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा साझेदारी तथा क्षमता निर्माण सहित प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इथियोपिया की भागीदारी की सराहना की और कहा कि इसकी उपस्थिति से ग्लोबल साउथ की सामूहिक आवाज को और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी आज देर शाम चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। बेलारूस के विदेश मंत्री मार्क्सिम रिजनकोफ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुंग भी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, फिनटेक, महत्वपूर्ण खनिजों तथा अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देश बहुपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में भी मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले आज सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रियसस भी इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थायी वैश्विक व्यापार के लिए सुरक्षित समुद्री मार्ग, निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला और समुद्री नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल ब्रिक्स व्यापार मंच में ब्रिक्स देशों से व्यापारिक बाधाएं दूर करने और कारोबार के लिए नए अवसरों का विस्तार करने की दिशा में काम करने का भी आग्रह किया।
1: ग्लोबल ट्रेड तभी आगे बढ़ सकता है जब सी लेन सिक्योर हो, सप्लाई रूट ओपन हो और सी फेरर सेफ हो, और इसलिए भारत फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और सी फेरर्स की सेफ्टी का दृढ़ समर्थक है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विश्व में बढ़ती व्यापारिक बाधाओं के बीच भारत आर्थिक सेतु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस बीच सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन, विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन को बंद कर दिया है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। ये तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन सुनिश्चित की गई है। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में चीन का सामना जापान से होगा।

और इस बीच खबर मिली है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री आज शाम उनके साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों को सलमा का सप्रेम नमस्कार। साथियों, आज यादों की महफिल सजी है महान संगीतकार शंकर जयकिशन जोड़ी के संगीतकार जयकिशन की यादों से। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर के महान संगीतकार जयकिशन दया भाई पांचाल को, जिन्होंने शंकर के साथ मिलकर शंकर जयकिशन की सबसे सफल और लोकप्रिय जोड़ी बनाई थी और भारतीय संगीत का नक्शा बदल दिया था। तो आज हम याद कर रहे हैं और आज हम सुनेंगे महान संगीतकार शंकर जयकिशन के संगीत से सजे सवरे कुछ यादगार गीत। यादों की महफिल कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी की आवाज में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जंगली।
1: कहता रहे

0: रंग भी कहे, कहने तो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने तो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में घिरे हैं, हम क्या करें। चाहे कोई मुझे जंगली कहे।
1: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है आशा भोसले मन्ना डे और साथियों की आवाजों में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है श्री 420।

यादों की महफिल कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साथियों, अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है कन्यादान।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

साथियों आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है धरती।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए। तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो है मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। नगमा निगार है शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का और फिल्म का नाम है बेटी बेटे।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी का जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीत रचना हसरत जयपुरी की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की, और फिल्म का नाम है जब प्यार किसी से होता है।

कार्यक्रम में अगली आवाज है मुकेश की। गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, धुन है शंकर जयकिशन की। फिल्म का नाम है अनाड़ी।

0: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर। पहले उत्तम जगदीश और उसके बाद संगीतकार उत्तम सिंह। एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले
0: जो संगीत की साधना में बीता। एक विराट

0: गाना है।
1: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी हुई थी।
2: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
3: चिट्ठी न कोई संदेह।
2: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए मुकेश और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है आशिक।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: गीतकार हसरत जयपुरी का लिखा गीत सुनिए मुकेश की आवाज में। इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम है दीवाना।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, हाँ जी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
1: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है,
1: है ना, बोलो बोलो।
0: तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
1: करो वादा,
3: हाँ जी वादा।
4: आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है राज हट।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इस गीत को लिखा है, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है अमन।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने सुने शंकर जयकिशन के संगीत से सजे कुछ यादगार सदाबहार गीत। आज शंकर जयकिशन जोड़ी के संगीतकार जयकिशन की याद का दिन है। साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

संगीत के इस सुरीले सफर में बनके हमारे हम सफर चलने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में एक बार फिर आपको बता दें आज की इबारत। एक चीज कयामत है लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देखा तुम्हें देख के माना वो ठीक कहा करते थे। जिंदगी में रस्में ये कस्में सभी तोड़ के चले आओ, लेकर मौजों का सहारा बना लेंगे हम तूफान में किनारा। वहां सच होंगे सपने बनेंगे गैर भी अपने, आती है जब ये रुत मस्तानी बनती है कोई ना कोई कहानी। अब के बरस देखे बने क्या फसाना, कितनी खुशियां कितने गम इस जिंदगी के दिन कितने कम, दिल का बढ़ता बोझ कभी कम होगा कि नहीं। हमसे मत पूछो कैसे ये किस्सा है अपनों का, गहरी नदी से ज्यादा मन में शोर, सबको किनारे पहुंचाकर माझी तो किनारा कभी पाएगा। तो सुरीला सफर के हमारे बहुत सारे साथी हम सफर बहुत सारे संदेशे और संदेश पहले ही लिख चुके हैं और लगातार लिख रहे हैं, तो उन सारी बातों को संदेशों को हम इस कार्यक्रम में पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे और सुरीला सफर में बन के हम सफर आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम पढ़ देते हैं पहले कुछ संदेश और कमेंट्स। हम सफर वही है जो मुश्किलों में भी कहे तुम मुस्कुराओ बस एक बार, पलकें उठाओ जब भी सावन की फुहार बरसती है, मन मयूरा नाच उठता है और दिल का सूनापन दूर हो जाता है, शाम ढलते ही जब दिए जलते हैं तो गम के बादल छट जाते हैं और उम्मीद की एक नई सुबह मुस्कुराने लगती है। अधूरी ख्वाहिशें सपने बुना करती हैं जो गाहे बगाहे दिल की उमंगों को जगा देती हैं, फिर दिल ये महसूस करने को मजबूर हो जाता है काश ये सपने साकार होते, सपनों की दुनिया क्षणिक ही सही एक सुखद एहसास तो दे जाती है। जैसे सीता राम राधा श्याम मिले, कभी ना कभी तो मिलन होगा तुमसे हमारा, माझी नैया ढूंढे किनारा। जब जीवन में कोई चाहत अधूरी रह जाती है तो मन उसे भूलने के बजाय कल्पनाओं में जीवित रखता है, मन में जो अधूरापन होता है वो सपनों और उमंगों से भरी एक दुनिया बनाता है जहां कोई बंदिश बंधन नहीं होते, बस उमंगों का सैलाब होता है जो हमें जीने की आशा देता है। और आज़ाद रहिए विचारों से बंधे रहिए संस्कारों से, एक दोस्त ने हमें मैसेज लिखा है, कहीं मोहब्बत की आहट कहीं सपनों की उड़ान कहीं जिंदगी के गम और कहीं किनारे की उम्मीद। बहती जाती है ये नदी कल कल गाती नदी, खेतों को पानी देती है सबकी प्यास बुझाती है, पर्वत से ये निकलकर रास्ता अपना बनाती है सागर तक जाने की धुन में, कभी ना थकती है चलती जाती आगे आगे, दुख सारे सबके ये भोगे जीवन का संदेश यही है बढ़ती जाना आगे आगे। इतनी सुंदर कविता भेजने के लिए आपका धन्यवाद। तो साथियों आइए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ में कार्यक्रम की, जिसमें आवाज है मोहम्मद रफी की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। राजा एक सीधा सादा हाउस बोट चलाने वाला लड़का और रीता एक अमीर लड़की, दोनों के विचार अलग अलग, सादगी खुलापन रहन सहन का अंतर, अमीर गरीब वर्ग की सामाजिक दूरियां टकराव, कई उतार चढ़ाव और गलत फहमियों के बाद होती है प्यार की जीत और राजा
राजा और रीता हो जाते हैं एक। तो हमें बताइए कि राजा और रीता की भूमिकाएं निभाने वाले कलाकार कौन थे और इस गीत को कहाँ फिल्माया गया वो भी बताएं। साथियों साथ में हमें ये भी बताइए कि नदी में, नाव में, शिकारी में, नदी किनारे में इस वक्त आपको कौन कौन से गीत और फिल्में याद आ रही हैं वो भी हमें बताएं।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। शशि कपूर, नंदा आगा, शमी, कमल कपूर और इस गीत की शूटिंग कश्मीर के श्रीनगर इलाके की खूबसूरत वादियों और डल झील में की गई थी। आपके कुछ कमेंट्स हम और पढ़ेंगे। आज की इबारत में नदी, तालाब, शिकारी पर गीतों का संगम है जो एक बेहद खूबसूरत भावनात्मक और रूमानी रिश्ता कहलाता है। आजकल शहरों की भागदौड़ और समाज के बंधनों और तनाव से दूर नदी की लहरों में नाव पर सवार होकर एक अलग सुकून का एहसास होता है। जब आप अपने हम सफर के साथ कश्ती पर सवार होकर कुछ पल के लिए प्यार भरी वादियों में अपनी जिंदगी के कुछ लम्हे गुजारते हैं तो रिश्तों का जुड़ाव बहुत गहरा हो जाता है। जिस रेडियो में विविध भारती चैनल ना हो उस रेडियो को हमें सुनना नहीं। विविध भारती का साथ है तो मुझे क्या कमी है, दुख में भी मिल रहा सुकून है। जी शुक्रिया। प्रेम रूपी गहरी नदी में जो शोर रूपी लहरों के साथ नैया हिचकोले खाती नजर आती है तब किनारे पर ले आता है साथी का साथ और तूफानों से गुजर कर किनारे लग ही जाता है सच्चा प्यार। हमारे सभी साथी जो प्यारे प्यारे संदेश लिखते हैं वो भी हमें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा भी किसी ने हमें लिखा है। अगला कमेंट है कि इस दुनिया का सबसे सबसे बड़ा सुकून सुने जाने में नहीं समझे जाने में छिपा है। जीवन में सुनना एक दवा है, आधी दुनिया का दर्द सिर्फ सुनने से मिट जाता है, अंतर शब्दों में नहीं उसके कहने के ढंग में होता है। मन उस नाविक जैसा है जो सबको किनारे तक पहुंचा देता है लेकिन खुद अपने किनारे की तलाश में रहता है, फिर भी उम्मीद बनी रहती है क्योंकि यही उम्मीद हमें हर दिन आगे बढ़ने की आशा देती है। नदी थी खामोश, किनारा भी अनजान था, नाव में बैठा कोई दिल का अरमान था, माझी ने पतवार थामी तो समझ आया हर सफर को मंजिल से ज्यादा अपनों का साथ चाहिए। साथियों, हिंदी फिल्मों में नाव, बोट या कश्ती में बहुत सारे मशहूर और सुरीले गीत फिल्माए गए हैं तो आज हम ऐसे ही गीत आपके लिए लेकर आए हैं जो नाव में बैठे कलाकारों पर फिल्माए गए। तो आपको ऐसे कौन से गीत पसंद हैं या फिलहाल आपको याद आ रहे हैं तो लिख दीजिए हमारे FB पेज पर। और ये भी बताइए कि आपने कश्ती में बैठकर कहां कहां की सैर की, इसके अलावा आपके इलाके, शहर, गांव, कस्बे में कौन सी नदी बहती है, क्या नाम है उनके और आप भारत में बहने वाली कितनी नदियों के नाम जानते हैं। और जब नदी, झील, नाव, कश्ती, शिकारा की बात हो तो बताएं कि कभी हाउस बोट में रहे तो कैसा लगा। और अब बात अमर प्रेम की, एक ऐसे पवित्र और अनकहे रिश्ते की कहानी जो समाज के बंधनों से परे है। दो लोगों के दरमियान एक गहरा और कोमल रिश्ता जो आत्मिक और मानसिक जुड़ाव बन जाता है। तो हमें ये बताएं इस फिल्म का कौन सा संवाद है जो अमर हो गया। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के फिल्म में निभाए गए किरदारों के नाम लिख दें और साथ में ये भी बताएं कि इस फिल्म के पहले हिस्से में जो बाल कलाकार का किरदार था नंदू, तो बड़ा होने पर नंदू का ये किरदार किस अभिनेता ने निभाया था।

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए। पुष्पा और आनंद बाबू, मशहूर डायलॉग था पुष्पा आई हैड टीयर्स, और बड़ा होने पर नंदू का किरदार निभाने वाले अभिनेता का नाम है विनोद मेहरा। बाल कलाकार थे मास्टर बॉबी, जिनका असली नाम था मासूमा, और साथी कलाकार थे बिंदु मदनपुरी, सुजीत कुमार और फरीदा जलाल। आपके कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं हम। जिंदगी के कई रंग हैं, कई सपनों की खूबसूरत दुनिया, कहीं अपने और पराए हैं, कहीं खुशियों की आहट है तो कहीं मन में उठता तूफान। एक माझी सबको नदी पार कराता है पर खुद किनारे की तलाश में रहता है, पर एक दिन समझ आया किनारा बाहर नहीं मन के भीतर है। वक्त के साथ इंसान खुशियों और गमों की धूप छांव से गुजरता हुआ अपनों से मिले अनुभवों के साथ थोड़ा संजीदा हो जाता है। दिन कितने भी कम हो, ख्वाब देखने की और तूफान को किनारा बनाने की चाहत ही इंसान को जिंदा दिल बनाए रखती है। एक साथी ने लिखा है, मैं पिछले सप्ताह ही कश्मीर की वादियों में समय गुजार कर आया हूं। मैंने डल झील में पत्नी के साथ गाना भी गाया, माझी नैया ढूंढे किनारा। गाने हमें रास्ता दिखाते हैं, जैसे हिम्मत हारे व्यक्ति के लिए तुझको चलना होगा। एक साथी ने लिखा है कि जब जब फूल खिले शशि कपूर नंदा, और कश्मीर के डलहौजी में इसे फिल्माया गया था। आवास की दुनिया के दोस्तों, मन चंगा तो कठौती में गंगा, और नेकी कर दरिया में डाल। मानो तो गंगा हूं, ना मानो तो बहता पानी। हम उस देश के बासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। गंगा में डूबा ना जमुना में डूबा, डूब गया मेरा मन तेरी दो आंखों में। हुस्न पहाड़ों का, ऐसे मुहावरे और बहुत सारे गाने गीत जिसमें किसी नदी पहाड़ का नाम आया है तो लिख दे। और एक अभिनेता बैलगाड़ी चलाते हुए नदी सागर की बातें करते हुए नदी ताल तलैया का गीत गा रहे हैं, तो बता दीजिए कि कौन से अभिनेता हैं वो। एक गैम्बलर और उसका तेज तर्रार हम शक्ल सीआईडी पुलिस अधिकारी, दोनों की पहचान को लेकर रोमांचक और भ्रमित करने वाले मोड़ आते हैं। अंत में गैम्बलर और इंस्पेक्टर दोनों मिलकर खतरनाक अपराधियों की साजिश को नाकाम कर देते हैं। तो बताइए कि द ग्रेट गैम्बलर में अमिताभ बच्चन की दोनों भूमिकाओं के नाम क्या थे, और उनकी दोनों नायिकाओं के नाम भी बताइए। और ये जो गीत अभी आप सुनने वाले हैं, ये किस देश में, किस लोकेशन पर इसे फिल्माया गया था, और इस गीत में जो गायक गा रहे हैं उनका नाम भी जरूर लिख दें।

साथियों, आपके जवाब हमने देख लिए और अभी पढ़ देते हैं। जय विजय अमिताभ बच्चन का नाम था उन दो किरदारों का, और जीनत अमान, नीतू सिंह, प्रेम चोपड़ा, उत्पल दत्त, इफ्तखार, मदन पुरी, हेलन रंजीत और सुजीत कुमार उनके साथी कलाकार थे। और इस गीत की शूटिंग हुई थी वेनिस इटली की बेहद मशहूर झील ग्रैंड कैनाल में और गोंडोला नाव पर। और इस गीत के बैकग्राउंड में जो आवाज़ सुनाई देती है अमोरे मियो, वो इटालियन भाषा है जिसे अंतर्राष्ट्रीय गायक शरद कुमार ने आवाज दी है। और बैलगाड़ी चलाते हुए जो गाना गा रहे हैं वो अभिनेता है संजीव कुमार। फिल्म का नाम है अनोखी रात, ओहरे ताल मिले नदी के जल में। और भारत में बहने वाली नदियों के नाम भी हमें मिल गए हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, गंगा, जमुना, सरस्वती, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोमती, चंबल, गंडक और घाघरा नदियां।

हमारे साथियों ने जो मैसेज भेजे हैं वो ये है कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जो 2525 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है, और सबसे छोटी नदी अलवर के पास अरवरी नदी है, जो करीब 45 किलोमीटर लंबी दूरी तय करती है। अनोखी रात ओरे ताल मिले नदी के जल में, सागर में संजीव कुमार। एक साथी ने लिखा है कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड की क्रूज में 2 नाइट 3 दिन का सफर किया है मैंने। एक साथी मित्र ने लिखा है, जिसका नाम है जीवन धारा उसका कोई नहीं किनारा। अगला कमेंट है कि मैं और मेरा पूरा परिवार, बेटी और दामाद 2019 में केरल गए थे, तब हम बोट हाउस पर ठहरे थे, सुबह से पूरा घूम कर आए, दोपहर का खाना नाश्ता और रात का डिनर भी बोट पर ही ठहर कर किया, दूसरे दिन सुबह बोट से बाहर आए, बहुत अच्छा दिन गया हमारा। देखिए, जैसे जैसा मैसेज आपने लिखा था हमने बिल्कुल वैसे ही पढ़ दिया। साथियों, राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले बनी ये एक बेहद संवेदनशील और लोकप्रिय फिल्म है नैया, जिसकी कहानी गंगा नदी किनारे बने एक छोटे से गांव की है। ये फिल्म मानवीय रिश्तों, निस्वार्थ प्रेम, समाज के बंधन और संघर्षों को बहुत खूबसूरती से दर्शाती है। तो अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो गीत आप सुनने जा रहे हैं, इसमें कौन से कलाकार नजर आ रहे हैं, और इस फिल्म नैया के निर्देशक का भी नाम हमें बताएं। तब तक सुनते हैं यही गीत, आपके जवाबों का हमें है इंतजार।

सोनू और गीता की इस प्रेम और संघर्ष की कहानी का निर्देशन किया था प्रशांत नंदा ने, जो कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका में जरीना वहाब के साथ नजर आए थे। और इस गीत में आवाज आपने सुनी येसुदास की, गीतकार संगीतकार थे रविंद्र जैन, फिल्म का नाम था नैया। हमारी एक साथी ने लिखा है कि मेरी जन्मभूमि सिंध नदी के किनारे बसा है मेरा गांव। एक साथी ने लिखा है कि मेरी सोच ये है कि जीवन में हम सफर ऐसा होना चाहिए, चाहे जीवन में कितने भी तूफान क्यों ना आए, जो एक बार अपने साथी का हाथ पकड़ ले तो ता उम्र छोड़े नहीं, अपने हम सफर का साथ मरते दम तक निभाए, यही तो सच्चा प्यार और सच्चा साथ है। एक साथी ने लिखा है कि हमारे घर में कोई आ गया था तो आधा प्रोग्राम तो निकल गया। अगला कमेंट है कि मेरे शहर में गंगा है, थोड़ी दूर पर पुनपुन भी मिलती है और सोन भी मिलता है। गंगा नदी का प्रारंभ गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल होते हुए दूरी तय करती हुई समुद्र में गिरती है। आवाज की दुनिया के मेरे दोस्तों, अब आपको जो गीत सुनवा रहे हैं उसमें आवाज है मुकेश की, गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम है कटी पतंग। तो इस फिल्म के कलाकारों के नाम और साथ ही निर्देशक का नाम भी हमें लिखकर भेज दें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण इस समय आप सुन रहे हैं, 2 बजने को हैं। अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत की पहली प्रस्तुति ये रही

अनुराधा श्री राम और गोपाल राव ने इसे गाया है महबूब के शब्द धुन आगोश की, फिल्म का नाम जोर।

शब्बीर अहमद के शब्दों को आप सुन रहे हैं अमजद नदीम की धुन पर। सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने इसे गाया है। फिल्म का नाम है ज़िला गाज़ियाबाद।

0: और इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आज दोपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच यह चर्चा द्विपक्षीय राजनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। आज प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लंबित और राजीनामा योग्य मामले आपसी सहमति से निराकरण के लिए रखे जा रहे हैं। भोपाल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर भोपाल में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यहां 57 खंडपीठों का गठन किया गया है। लोक अदालत के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के सचिव न्यायाधीश सुमित अग्रवाल ने बताया।
1: आज वर्ष की तृतीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। देखिए, आज की लोक अदालत के लिए 57 खंडपीठ का गठन किया गया है, जिसमें जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, कुटुंब न्यायालय और औद्योगिक न्यायालयों में कुल मिलाकर 57 खंडपीठ का गठन किया गया है और 10,000 पेंडिंग मामले रखे गए हैं और 80,000 प्री लिटिगेशन मामले रखे गए हैं और अधिक से अधिक मामलों के निराकरण की आशा है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री शाह ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की जीवन शैली पर आधारित पुस्तक का विमोचन कल विधानसभा भोपाल में किया गया। वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा द्वारा लिखी गई इस पुस्तक में डॉ. मोहन भागवत के व्यक्तिगत विचारों एवं उनके राष्ट्र व समाज के प्रति अनुशासित व्यक्तित्व का संपूर्ण गाथा का उल्लेख है। पुस्तक के बारे में वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा ने बताया।
2: किशोर सिंह चालक जी ने जब 2009 में ये दायित्व संभाला था, 17 साल हो चुके हैं। इन 17 वर्षों में देश एक अलग राह पे चला है और जो समस्याएं थी, बहुत सारी जो जटिल समस्याएं जिनको लेकर के वो बात करते थे, उनका समाधान होता भी दिखाई दे रहा है। तो यही वजह थी, बहुत लोगों ने सलाह दी है कि जो आपने लेख लिखा हुआ है उसका संग्रह करें और एक उसको पुस्तक का स्वरूप दें।
0: महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में खेले गए पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। महिला एशिया कप क्रिकेट में दुबई में कल भारतीय टीम फाइनल में पिछले चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका की टीम कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति अल्पेश यशवंत कोगजे ने कल जबलपुर में पदभार ग्रहण कर लिया। नर्मदापुरम जिले के स्कूली बच्चों ने स्थानीय शिल्पकारों के साथ मिलकर प्राकृतिक मिट्टी से 500 से अधिक गणेश प्रतिमाएं तैयार की हैं। मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति व आगरमालवा जिला एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त तत्वावधान में कल एचआईवी एड्स पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित हुई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत की अध्यक्षता में दो दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबूधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की। यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। सऊदी अरब ने हमले के बाद महत्वपूर्ण पाइपलाइन बंद की। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। और अब समाचार विस्तार से। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अब से कुछ ही देर में नई दिल्ली के भारत मंडप में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए हैं। दो दिन के सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिश्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाखस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देश के रूप में भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, खाद्य एवं सुरक्षा, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन और महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस शिखर सम्मेलन का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। और अब अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं भारत मंडपम में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित से। जी अंकित।
1: जी जागृति, देखिए।
0: हेलो अंकित, अभी आप शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर मौजूद हैं और ये बताइए कि इस समय कार्यक्रम स्थल का माहौल कैसा है और सम्मेलन के बारे में आपके पास क्या कुछ अन्य जानकारियां हैं।
1: जी जागृति, देखिए इस समय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आज का सत्र है अब से कुछ देर में शुरू होने वाला है। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष सम्मेलन स्थल पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर बाद 11 सदस्य देशों के नेता क्लोज डोर सेशन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के नेता समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे ये नेता। इसके बाद भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद वे संयुक्त रूप से पौधारोपण करेंगे और फैमिली फोटो के लिए भी एकत्रित होंगे। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले ब्रिक्स नेताओं के लिए सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। ये देखिए, भारत की अध्यक्षता में यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब दुनिया एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रही है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था इस समय आर्थिक बिखराव, तकनीकी बदलाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता का सामना कर रही है। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर बढ़ता दबाव इन चुनौतियों को और जटिल बना रहे हैं। इन आपस में जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए ऐसे सहयोग की जरूरत है जो समावेशी, व्यवहारिक और विभिन्न देशों की परिस्थितियों के अनुरूप हो। देखिए, ब्रिक्स इन चुनौतियों से निपटने के लिए संवाद और समन्वित कार्रवाई के माध्यम से एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। इसकी वजह यह भी है कि ब्रिक्स देश दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वैश्विक जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी करीब 40% और वैश्विक व्यापार में करीब 25% हिस्सेदारी है। जी जागृति।
0: जी धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। सम्मेलन में भाग लेने के लिए शी जिनफिंग आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। और अब अधिक जानकारी के लिए हम बात करते हैं हमारे संवाददाता आनंद से। जी आनंद, प्रधानमंत्री आज शिखर सम्मेलन से अलग अब तक किन किन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर चुके हैं और अगर आज की बात करें तो किन देशों के साथ अभी द्विपक्षीय वार्ता होने का कार्यक्रम है?
2: जी जागृति, आज का दिन भारत के लिए द्विपक्षीय और राजनयिक संबंधों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पहला सत्र शुरू होने वाला है।
0: जी,
2: आज सुबह से ही ब्रिक्स सदस्य देशों और भागीदार देशों के नेताओं के साथ लगातार द्विपक्षीय बैठकें कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और वियतनाम के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें की। इथियोपिया और मलेशिया ने भारत के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने में रुचि जताई है। इथियोपिया के ने विशेष रूप से भारतीय खनन कंपनियों को आमंत्रित किया है। वहीं मलेशिया के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में मौजूदा अवसरों पर चर्चा हुई। अगर आज हम शाम के कार्यक्रम की बात करें तो जागृति, आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक होने का कार्यक्रम है। यह राष्ट्रपति जिनपिंग की करीब 7 वर्षों में भारत की यह पहली यात्रा है। दोनों नेताओं के बीच बातचीत मुख्य रूप से सीमा पर तनाव कम करने और व्यापार असंतुलन के मुद्दों पर केंद्रित रहने की संभावना है। जी जागृति।
0: जी आनंद, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बेलारूस के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजनकोफ आज नई दिल्ली पहुंचे। भारत और बेलारूस के संबंध प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इससे पहले आज ही सुबह विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस भी सम्मेलन में शामिल होने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नई दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के साथ मुलाकात की। इससे पहले शिखर सम्मेलन से अलग कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता की थी। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोहराया कि सभी मुद्दों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से होना चाहिए। इस बीच चाइना सदर्न एयरलाइंस इस महीने की 21 तारीख से ग्वांगझोउ और नई दिल्ली के बीच नियमित यात्री उड़ानें फिर शुरू करेगी। इसके साथ ही 6 साल से बंद ये हवाई सेवा बहाल हो जाएगी। कोविड महामारी के बाद वर्ष 2020 में भारत और चीन के बीच हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। ये सेवा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत दौरे के बीच शुरू हो रही है। इस साल मार्च में भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो ने भी शंघाई और कोलकाता के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की थीं, जिससे दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क और मजबूत हुआ है। इस बीच ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को देखते हुए आज रात 9 बजे तक दिल्ली के प्रमुख मार्गों पर यातायात में परिवर्तन और नियंत्रित आवागमन लागू किया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से सार्वजनिक परिवहन विशेषकर मेट्रो का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे NewsOnAIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रदर्शनी में आए सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत करना देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की नवाचार व्यवस्था तेजी से विकसित हुई है।
4: India's innovation. भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विकसित हुआ है। भारत इनोवेटिव्स की यात्रा ने नीस में आयोजित अपने पहले वैश्विक प्रदर्शन के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव स्थापित किया है। भारत के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के साथ हम अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में एक मजबूत साझेदारी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रयोगशाला से बाजार तक और भारत से विश्व।
0: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से

0: यह योजना वर्ष 2019 में आज ही के दिन शुरू की गई थी। योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की गई है। सऊदी अरब ने ड्रोन हमले के एक दिन बाद देश भर में फैली एक बड़ी तेल पाइपलाइन बंद कर दी है। सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन को बंद कर दिया गया है। इस तेल पाइपलाइन को ऐसे समय में बंद किया गया है जब यमन के हौसी विद्रोहियों ने मोखा बंदरगाह और पेरिम द्वीप पर कब्जा कर लिया है, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में एक नया मोर्चा खुल गया है। बाब अल मंदेब जल डमरू मध्य दुनिया के प्रमुख नौवहन मार्गों में से एक है। पंजाब पुलिस के गैंगस्टर रोधी कार्यबल AGTF और देश छोड़कर भागे लोगों की निगरानी और प्रत्यर्पण की शाखा OFTEC ने केंद्रीय एजेंसियों के समन्वय से फरार अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ अमृत दलम को मोल्दोवा गणराज्य से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की है। गैंगस्टर रोधी कार्यबल के पुलिस अधीक्षक बिक्रमजीत सिंह बराड़ के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की 4 सदस्यीय टीम आज सुबह उसे भारत लेकर आई। बिहार में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, हालांकि कई इलाके अब भी प्रभावित हैं। राज्य के 14 जिलों के 2,000 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव अभियान जारी है।
1: प्रदेश में गंगा, सोन, बागमती, घाघरा और पुनपुन समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में गिरावट जारी है। हालांकि गंगा और पुनपुन कई स्थानों पर अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ताजा रिपोर्ट के अनुसार गंगा का जलस्तर पटना के गांधी घाट समेत राज्य के लगभग सभी स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। पुनपुन नदी श्रीपालपुर में खतरे के निशान से 1 मीटर से अधिक ऊपर बह रही है। जलस्तर में कमी के साथ गंगा, गंडक, कोसी और सोन के तटवर्ती इलाकों में कटाव का खतरा बढ़ गया है। जल संसाधन विभाग ने संवेदनशील तटबंधों और कटाव संभावित स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, कराईकल, विदर्भ, बिहार, राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल तक आंधी तूफान की आशंका है। दिल्ली में आज शाम हल्की बारिश का अनुमान है। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने तमिल विद्वान प्रोफेसर सोलोमन पपैया के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधा कृष्णन ने कहा कि प्रोफेसर पपैया की वाक्पटुता और विद्वता ने देश की साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गृहमंत्री ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की शिक्षाएं सेवा, त्याग, समानता, करुणा और मानवता की भावना को बढ़ावा देती हैं और समाज को मानव कल्याण के लिए प्रेरित करती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। महिला जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। भारत की ओर से सुप्रिया ने हैट्रिक लगाई जबकि मधु और सुखवीर कौर ने 1-1 गोल दागा। फाइनल में भारत का मुकाबला मेजबान चीन से होगा। इससे पहले पुरुषों के जूनियर एशिया कप हॉकी में भारत ने कल पहले सेमीफाइनल में मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अमरीका के बेन शेल्टन का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। महिला सिंगल्स में मौजूदा चैंपियन बेलारूस की आर्याना सबालेंका आज रात फाइनल में कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना का सामना करेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में 2 दिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए विश्व के नेता नई दिल्ली पहुंचे। अब से कुछ ही देर में शुरू होगा सम्मेलन। वैश्विक शासन, बहुपक्षवाद, व्यापार, सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मलेशिया, वियतनाम और इथियोपिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। अबूधाबी के युवराज के साथ भी मुलाकात की।

यमन में हौसी विद्रोहियों के महत्वपूर्ण द्वीपों पर कब्जे से लाल सागर में प्रमुख नौवहन मार्गों पर पकड़ मजबूत। और भारतीय महिला टीम ने चीन के मोकी में दक्षिण कोरिया को हराकर जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जय किशन का और फिल्म का नाम है अपने हुए पराई।

आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने। संगीत है शंकर जयकिशन का, आवाज है किशोर कुमार की, और फिल्म का नाम है रंगोली।

0: वो लिखती हैं रिश्तों की अनकही कहानियाँ।
1: एमए कर रही थी तभी साहित्य एकेडमी युवा का पुरस्कार भी मुझे मिला, राजस्थान साहित्य एकेडमी युवा का।
2: क्या बात है।
1: तो मुझे लगा कि साहित्य की दुनिया ही मेरी असल दुनिया है।
0: वो लिखती हैं जीवन के विविध रंगों से बुने उपन्यास। वो लिखती हैं सफर की स्मृतियों से सजे यात्रा संस्मरण। वो लिखती हैं मन की गहराइयों को छूती कविताएं।
1: इंट्यूशन जिन्हें कहें, ऐसे ऐसे ख्याल आए, तो कई बार मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने मल्लिका मेरे साथ थी और मुझसे लिखवा रही थी अपनी कथा।
0: वो हैं मशहूर साहित्यकार मनीषा कुलश्रेष्ठ। सुनिए आज के मेहमान 16 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा है विश्वेश्वर शर्मा ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है सन्यासी।

0: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
1: तो कुदरत को जिसको बनाना होता ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
0: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नख्मों का कार्यक्रम सदाबहार नख्मे। आइए सुनते हैं अगला गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, शब्द रचना शैलेंद्र की, संगीत रचना शंकर जयकिशन की, और फिल्म का नाम है संगम।

0: भारतीय सिनेमा को संवेदना और यथार्थ की नई पहचान देने वाले महान फिल्मकार बिमल रॉय। उनकी यादें, उनके व्यक्तित्व के कुछ अनसुने पहलू, उनकी बेटी रिंकी भट्टाचार्य के साथ।
1: पिताजी के जो जो फिल्में बनी है सभी लिटरेचर बेस्ड है, सबका कहानी लिटरेचर बेस्ट बंगाली लिटरेचर से उन्होंने लिया है। जैसे सुजाता, वो एक लिटरेरी स्टोरी थी, बंदिनी वो भी एक असली स्टोरी थी जेल की कहानी से।
0: सुनिए ये खास बातचीत 13 सितंबर शाम 4 बजे उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में, नगमा निगार है शैलेंद्र, धुन है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है जिंदगी।

साथियों, आइए सुनते हैं अगला गीत। लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश मन्ना डे की आवाजों में इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, संगीत है शंकर जयकिशन का और फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी,
0: मन चाहेगी।
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, गणेश पेठ पार्थी पुणे से, अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, कृष्णा शिंदे, आराध्या, श्लोक और भैया, कोटवा नारायणपुर यूपी से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी, कर्नाटक स्टेट से चिन्ना तिरुपति, प्रकाश श्यामला, अश्विनी आनंद और मनवीत, बडेना पाटन से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश और प्रकाश अरोड़ा, राजस्थान जोधपुर से अशोक बाणिया, प्रेमलता और सुमित बाणिया, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां, नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी और गुरमंत सुनना चाहते हैं तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम है रखवाला।

साथियों, मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है खिलौना। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुया जाधव, आकाश जाधव और पवन राजे जाधव, गांव हिप्पर सोगा जिला लातूर महाराष्ट्र से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, दस्तगीर शेख, फैजन बी शेख, बाबा सिमर और करिश्मा शेख, लाबरिया भैरो इंदौर से अनिल बामनिया, प्रमीला, नंदिनी, मुस्कान, नीलम और समस्त बामनिया परिवार, कोलार रोड भोपाल से मनीषा मालवीय, उमंग शीतल, लोकेंद्र और रामबाबू मालवीय, ग्राम पजोनिया जिला जालौन यूपी से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक चंसोलिया, शहर अनिका चौक बीड़ से जनार्दन वैद्य पाठक, भाग्यश्री नारायण आरुषी, चिऊ माऊ और बिट्टू की पसंद पर सुनिए ये गीत।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से विनोदपुरी, अशोकपुरी, सुशीलापुरी, कैलाशपुरी, आरएसपुरी, बीकेपुरी और वीपी रंजू। गोटेगांव एमपी से योगेश कुमार चौरसिया, संगीता चौरसिया, दिव्यांश कुमार चौरसिया। पवनपुरी बीकानेर राजस्थान से भंवर लाल सोनगरा प्रेमी, गीता देवी मूलचंद हंसराज, मुकेश, सुनीता कृष्णा, सावित्री राज, प्रथम राज, अंजलि पलक, अमीशा अनुष्का, आशीष, लक्षिता जतिन, मनोहर लाल सोनगरा, सरोज दायमा, अखिल दायमा, एलेक्सा और मोहन लाल देवड़ा। बड़वा से पुष्पेंद्र रावल, अयांश, इंदिरा, निशा, निहारिका, सोनू और मोनू रावल। नजीरगंज नेपाली पाड़ा जिला हावड़ा वेस्ट बंगाल से दीपक लींबू, रितेश लींबू, उषा, ज्योति, किरण, दिरशा, रज्जाक अली और समस्त परिवार। भुट्टो मंडी जिला फतेहाबाद हरियाणा से अमर वर्मा। छाबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शबनम बानो। आप सभी की पसंद पर सुनिए आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में गोविंद मुनीस का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, फिल्म का नाम है आंसू बन गए फूल।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है रास्ते प्यार के। और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। GCF स्टेट जबलपुर से सुरेश राजपूत, सुमित राजपूत, अभय राजपूत, मन्नत राजपूत, सुदेशना राजपूत, पुष्पा, शानू और निमो। कोटदा बहादुर जिला मंदसौर एमपी से तूफान डांगी, टीना डांगी और छोटा लक्ष्य। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। बोरखेड़ा जिला उज्जैन से विनोद विनोद मुनत, दीपक मुनत, मयंक, नेहा जैन और चेतन नहरा। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो खत हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आपने। गाजियाबाद यूपी से सुषमा शर्मा, श्वेता शर्मा, अभिषेक शर्मा और एमडी शर्मा। ग्राम तंगोरी जिला मोहाली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगोरी, जसबीर कौर, महकप्रीत कौर और सहजप्रीत सिंह। भुट्टा बाजार रतलाम से बाबू भाई लच्छेवाला। बीकानेर राजस्थान से मोहम्मद हुसैन भिश्ती, सुल्ताना असलम, जावेद उबैद और चांदनी भिश्ती। शनिवार पेठ बीड शहर से पीबी कुलथे, हनुमंत कुलथे और समर्थ कुलथे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, सौरव, शाइना, निवान शर्मा और मैंडी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद अजीज की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है नगीना।

0: साथियों, आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला आरती श्रीवास्तव और आकांक्षा विश्वकर्मा से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।
1: मन चाहे गीत। मन चाहे गीत।

नाट्य तरंग आज के प्रोग्राम में आपको सुनवा रहे हैं नाटक कल आना कल। मूल कन्नड़ कहानीकार एच टुंडीराज, हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरकार एच वी रामचंद्र राव, इसका निर्देशन किया निर्मला अग्रवाल ने। तो सुनिए नाटक कल आना कल।

0: साशा जी।
1: है? अभी तो 10:30 बजे हैं। मेरा मतलब है दफ्तर खुले आधा ही घंटा हुआ है, पर आप हैं टाइपिंग में एकदम खो गई हैं।
0: क्यों ना हो नकाल बाबू, भाई हम सब तो ठहरे काम चोर। एक ये है कुमारी आशा देवी, जिन्होंने पूरे दफ्तर का जिम्मा अपने ऊपर ले रखा है। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना आशा जी?
2: आप दोनों महानुभाव कुछ समय के लिए मौन धारण करेंगे
1: जी?
2: खुद कुछ करते धरते नहीं, दूसरे काम करने वालों को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं।
1: अरे अरे अरे, अरे आशा जी आप तो बुरा मान गई हैं। लगता है आप कुछ खास किस्म का काम कर रही हैं। शायद प्रेम पत्र लिखा जा रहा है।
0: अरे लिखना क्या, टंकित किया जा रहा है। अगर दफ्तर का कोई लेटर टाइप करना होता तो इतनी लगन कहाँ होती है।
2: ना तो ये प्रेम पत्र है और ना ये व्यक्तिगत पत्र। हिसाबी लाल जी, आप हटिए यहाँ से, अपना काम धंधा देखिए, बेकार में छिक छिक करते रहते हैं।
3: अरे भाई चौकन्ना, ये क्या है, सुबह सुबह हमें धूल चटवा रहे हो? दफ्तर खुलने से पहले ये सफाई वफाई का काम क्यों नहीं खत्म कर लेते?
0: नक्काल बाबू, ये हमारे चपरासी साहब हैं, आप इन्हें बेइज्जत नहीं कर सकते।
4: हाँ? अब बाबू लोगों, चाहे धूल चाटो या फूल, मुझे तो अभी सफाई करनी है। अगर दफ्तर खुलने से पहले यहाँ झाड़ू लगाने पहुँच जाऊँ तो साहब जी के घर पर सफाई कौन करेगा, हैं? बोलो, चलो आप सब लोग उधर हो जाइए।
1: हाँ, अब तुम्हें कौन रोके भाई। हाँ आशा जी, आपके प्रेम पत्र का मसौदा कहाँ तक पहुंचा? यदि आपको कालिदास से उदाहरण या शेक्सपियर से कोटेशन चाहिए तो इस सेवक को मौका दीजिए।
2: मिस्टर नक्काल, आप अपनी सीट पर जाइए। देखिए वो वृद्ध सज्जन कब से आपकी प्रतीक्षा में खड़े हैं।
3: आपका ये हिसाब कुछ अटपटा है मिस जी। क्या ये जरूरी है कि मैं ही उन्हें अटेंड करूं?
1: मैं भी इस दफ्तर में एक अदना सा लिपिक हूं आप ही की तरह, ऐसे में मैं ही क्यों? आप यहाँ कोई और भी तो उन्हें अटेंड कर सकता है।
0: नक्काल बाबू, आप यहाँ सबसे सीनियर हैं, अनुभवी और बड़े गुणी भी हैं।
3: बस करो हिसाबी बाबू, सारा मस्का मुझी पे खर्च कर दोगे तो साहब जी के लिए कहाँ से जुटाओगे? अजी ओ बुजुर्गवार, हाँ आप ही से कह रहा हूँ, यहाँ आ जाइए।
5: नमस्कार जी।
3: नमस्कार, कहिए क्या काम है?
5: बड़े साहब जी हैं
3: है? ये कैसा सवाल है,
1: मंदिर में आकर पूछते हो भगवान यहाँ है? अरे जहाँ दफ्तर होता है वहाँ बड़े साहब भी होते हैं।
5: मैं आपके बड़े साहब से मिलना चाहता हूँ।
1: अरे
5: कब आएंगे?
1: ठाकुर जी इतनी आसानी से दर्शन देंगे क्या? उनको देखना हो तो पहले पुजारी जी यानी हमारे दर्शन कीजिए।
2: मिस्टर नक्काल, आप लोग खामखा इन बुजुर्गवार को सता रहे हैं। साहब जी अभी आए नहीं हैं, कहिए क्या काम था?
5: जी मैंने आपके ऑफिस में एक अर्जी दे रखी है
2: जी।
5: यही कोई 20 दिन हुए होंगे।
2: आपकी अर्जी किस मामले को लेकर है?
5: बेटी मैं आजादी की लड़ाई का एक सिपाही हूँ, इस आशय का एक प्रमाण पत्र चाहिए, इसी के लिए मैंने अर्जी दी थी।
0: तो आप त्यागी हैं यानी आजादी की लड़ाई के सिपाही?
5: जी हाँ, मैंने 2 साल और 4 महीने जेल में काटे हैं।
0: अच्छा,
5: महात्मा गांधी जी को बहुत नजदीक से देखा है, कई बार नेहरू जी के भाषण भी सुने थे और भारत छोड़ो आंदोलन में।
0: बस बस बस, आप तो शायद एक मच्छर तक भगा नहीं पाएंगे, फिर आपने अंग्रेजों को कैसे भगाया होगा? अरे लोग बाग सुनेंगे तो आप पर हंसेंगे।
5: सच कहते हैं आप, वैसे मैं आप जैसों के हंसी का पात्र नहीं बनना चाहता था, इसीलिए आज तक इस प्रमाण पत्र और पेंशन इन सब से दूर रहा। और क्या करूं, गृहस्थी के झंझटों ने मुझे तोड़ दिया, वरना
1: इसीलिए कहते हैं अकल से काम लो।
3: अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत।
1: बुजुर्गवार, जिस वक्त धन कमाना था आप आजादी की लड़ाई के बहाने चैन की बंसी बजाने के ख्याल से जेल जा बैठे, अब जबकि अवकाश ग्रहण कर आराम से घर बैठने का समय आया तब आप पैसा कमाने की फिक्र में दर दर भटक रहे हैं।
5: सर, आप बुरा न माने तो एक बात को।
0: हाँ हाँ, बोलो बोलो।
5: आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आजादी की लड़ाई क्या थी, इसीलिए आप मजाक करते हैं।
0: अरे श्रीमान जी, हम अच्छी तरह जानते हैं आपकी लड़ाई तो खत्म हो गई, पर हम आज भी स्वतंत्र होने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।
3: जी हाँ, घर में बीवी के साथ,
0: डॉक्टर में साहब जी के साथ, हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी,
3: आखिरी दम तक चलती रहेगी।
2: वो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठिए दादाजी, साहब जी अभी आते होंगे।
1: हाँ बैठिए बैठिए। हाँ क्या

0: इस प्रकार के स्वावलंबन को मैंने महात्मा गांधी जी से सीखा।
1: अच्छा अच्छा, आपकी बात अब हमारी समझ में आ गई। चौकन्ना, टेलीफोन उठाना।
2: ओ, कहां मर गया ये चौकन्ना, पता नहीं इनको अपने काम की अहमियत कभी समझ में भी आएगी या नहीं। आशा जी जरा देखिए किसका फोन है।
3: आप देख रहे हैं ना, मैं टाइप कर रही हूँ।
1: हिसाबी लाल जी।
4: सर, आप सीनियर हैं।
2: ओहो, ठीक है, मैं ही उठाता।
4: नक्काल बाबू, फोन की घंटी का संगीत बंद हो गया
2: लगता है। साहब जी आ गए, आज बहुत जल्दी आ गए
4: लगता है। साहब जी की मैम साहिबा मायके से लौट आई।
0: साहब जी आ गए तो मैं अंदर जाकर मिल लूं।
2: श्रीमान जी, साहब जी अभी आए हैं, उन्हें दम तो लेने दीजिए।
5: पैसा मत आ गई, पता नहीं आज किसकी बारी है झाड़ सुनने की।
4: बारी और किसकी होगी, आप ही तो सबसे सीनियर हैं। पदोन्नति होगी तो भी आपकी, झाड़ मिलेगी तो भी आपकी।
6: नक्काल बाबू, साहब जी आपको तलब कर रहे हैं।
2: मैं समझ गया भाई, चल आजा मेरे भाई।
7: नो नो, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। ये क्या गैर जिम्मेदाराना काम है, स्टुपिड। मेरा मुंह क्या ताकते हो, जाओ इसे दोबारा करके लाओ।
5: जी सर।
0: सर, अब मैं साहब जी से मिल सकता हूँ?
2: नहीं, आप घर जाइए, आज साहब जी का मूड खराब है, आपका काम नहीं होगा।
0: जी
2: हाँ, कल आना कल।
8: सजन कब आएगा, सजन कब आएगा।
2: चौकन्ना।
6: जी सर।
2: सुनो, ये पंखा घर घर आ रहा है, इसमें थोड़ा तेल वेल डलवाओ।
6: छोड़िए सर, इसकी तो किस्मत ही फूटी है।
2: क्या,
6: जब से आप इस दफ्तर में आए हैं तब से लगा हुआ है, आपकी सर्विस की तरह इसे भी बहुत समय हो गया। अब इसकी क्या मरम्मत होगी, इसको रिटायरमेंट देकर नया पंखा खरीदा जाए।
2: हिसाबी लाल जी,
4: जी
2: आपने हमारे चपरासी महोदय का मशवरा सुना?
4: अजी छोड़िए उसके मशवरे को, ये बताइए आज साहब जी का मूड कैसा है।
5: अजी कुछ पूछिए मत, साहब खास मूड में है। अनहोनी तो ये है हिसाबी लाल जी कि मेरे सारे पेपर दस्तखत होके आ गए, ना झाड़ ना क्वेरी।
4: तो मैं अपने तबादले के बारे में आज ही उनसे बात करता हूँ।
2: कर लो।
4: आशा जी, आपने सुना ना, साहब जी आज खास मूड में हैं। आपको कोई काम करवाना हो तो करवा लीजिए।
3: उनके खास मूड से मुझे क्या वास्ता, मैं अपना काम ढंग से करती हूँ तो मैं क्यों चापलूसी करूँ।
4: ये भी ठीक है।
0: नमस्कार सर,
2: कहिए क्या काम है।
0: मुझे भूल गए सर, मैं सत्यमूर्ति हूँ, आजादी की लड़ाई का एक सिपाही।
2: हाँ ठीक है ठीक है।
4: ओ तो आप प्रमाण पत्र लेने आए हैं।
0: जी हाँ।
6: नक्काल बाबू,
2: हाँ
6: आपको साहब बुला रहे हैं।
2: ठीक है, आता हूँ, आप बैठिए, उधर साहब जी का बुलावा आ गया है।
9: नमस्कार सर।
6: नमस्कार। नक्काल बाबू
9: जी,
6: मैंने आपको एक खास काम के लिए बुलाया है।
9: कहिए सर।
6: वो क्या है कि इस महीने की 11 तारीख को उपूर में मेरी साली के बेटे का जनेऊ है।
9: जी।
6: 12 को पुतूर में साले की बेटी की शादी है।
9: ओ।
6: और 13 को मेरी श्रीमती जी की बड़ी बहन की बेटी का सीमांत पर्व है बसरूर में।
9: ओ, तो सर सारे शुभ समारंभ एक साथ संगम कर गए।
6: पर मेरा हर मौके पर उपस्थित रहना बहुत जरूरी है।
9: हाँ साहब जी, क्योंकि ये सब आपकी श्रीमती जी के रिश्ते में पड़ते हैं ना, अब जाए बगैर कैसे चलेगा।
6: वही तो मेरी समस्या है, अब जाऊं तो कैसे जाऊं।
9: अरे आप क्यों फिक्र करते हैं साहब जी, मैं हूं ना, मैं 3 दिनों की छुट्टी लीजिए और निश्चिंत होकर घूम आइए, दफ्तर का काम हम संभाल लेंगे।
6: नक्काल बाबू
9: जी,
6: इतनी लंबी सर्विस में भी आपने दफ्तर के काम का ढंग नहीं समझा, इसीलिए आपकी प्रमोशन भी नहीं।
9: जी
6: ऐसे शादी ब्याह के अवसरों पर अफसर लोग छुट्टी नहीं लिया करते।
9: जी समझ गया साहब जी, आपके इस महीने का टूर प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है, मैं आपके बताए ये सारे ऊर टूर में शामिल किए देता हूँ।
6: हाँ ठीक है, सारे डेट्स ठीक तरह से नोट कर।
9: ठीक है सर, मैं अभी फाइल तैयार की।

0: देता हूं। उपूर पुतूर बसरूर, 11 को उपूर, 12 को पुतूर, 13 को बसरूर।
1: अरे ये क्या रट रहे हो नक्काल बाबू?
0: साहब जी का टूर प्रोग्राम, 11 12 13 को दफ्तर में हमारा राज होगा।
1: अरे वाह।
2: सर वो मेरा प्रमाण पत्र।
3: भाई बुजुर्गवार, आप तो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गए। हमें प्रायोरिटी देखनी है, इस समय साहब जी का टूर प्रोग्राम बनाने की जल्दी है और आपको अपने प्रमाण पत्र की पड़ी है।
2: तो मैं साहब जी से ही मिल लेता हूँ।
3: कोई लाभ नहीं होगा, उनके पास आप चले भी जाएं लेकिन फाइल तो मेरे ही पास आएगी ना।
1: सत्यमूर्ति जी, आप इन छोटी छोटी बातों के लिए साहब जी को क्यों परेशान करते हैं?
3: बिल्कुल,
1: आज आप शांति से तशरीफ ले जाइए।
2: तो फिर मैं कब आऊँ?
3: कल आना। कल?
2: कल कल तो इतवार है।
3: ओहो, तो सोमवार को आइए। इतनी छोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं घुसती, अब जाइए।
4: नक्काल बाबू।
0: जी सर।
4: प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र आया है उसे आपने देखा?
0: जी हाँ सर, देख लिया है, पर उसमें कुछ खास बात नहीं है सर।
4: पर ये रूटीन सर्कुलर नहीं है, चाहिए तो ये था कि आप उसे पढ़ते और उस पर नोटिंग करके मेरे पास भेजते।
0: पर सर, लाल स्याही से उस पर टॉप प्रायोरिटी लिखा था। मैंने सोचा सर, ऐसी टॉप चीज को जल्दबाजी में पढ़ना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे इन ट्रे में नीचे रख दिया सर।
4: खैर, उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। द होल प्रोग्राम शुड बी क्लोजली मॉनिटर्ड।
0: जी हाँ, होल प्रोग्राम क्लोज ही होना चाहिए।
4: ये कैसी बातें करते हैं नक्काल बाबू
0: जी।
4: कार्यक्रम को बंद नहीं करना है
0: जी,
4: बल्कि उसकी क्लोज मॉनिटरिंग करनी है। मतलब कि उस परिपत्र के दो मुख्य मुद्दे हैं। पहला ये कि स्टाफ में डिसिप्लिन लाना होगा
0: जी,
4: और उनकी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। दूसरे, हमारे दफ्तर में सर्विस की क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल की बनाए रखनी है।
3: साहब जी, ये असल में सर्कुलर नहीं, सर्कुलर है।
4: खैर अब जो भी समझो। हाँ, पहला काम आप ये कीजिए कि स्टाफ मीटिंग बुलवाइए, उसके सारे बंदोबस्त की जिम्मेदारी आप पर होगी, समझे?
0: जी साहब, मीटिंग की व्यवस्था यानी किसी अच्छे होटल से कांटेक्ट कर लूंगा। 10 प्लेट मिठाई, 10 प्लेट समोसे और 10 कॉफी मंगा लूंगा।
4: ये तो मीटिंग की बात हुई, पर मीटिंग का एजेंडा क्या होगा?
0: सर आशा जी से कह दूंगा, वो टाइप कर देंगे।
4: पर आप उसका ड्राफ्ट तैयार करेंगे तभी तो वो टाइप करेगी ना।
0: जी हाँ साहब, हो जाएगा, आप तो गाइड करेंगे ही, फिर एजेंडा का ड्राफ्ट भी बन जाएगा। अगर आप हुक्म करेंगे सर तो मीटिंग के मिनट्स भी तैयार कर दूंगा।
4: सब कुछ फटाफट हो जाना चाहिए।
0: ओके साहब। सर मैं चाहता हूं कि आप उस शादी वाले टूर पर निकलने से पहले इस झंझट को निपटा दीजिए।
4: अरे नक्काल बाबू, इसको झंझट कहते हो तुम
0: जी?
4: बी सीरियस, मामला बड़ा गंभीर है।
0: समझ गया सर, सब काम आपके आदेशानुसार किए देता हूं।

0: सॉरी आशा, आज मुझे आने में देर हो गई।
1: कोई बात नहीं किरण, मैं तुम्हारी तरह विरह में व्याकुल होकर कविता नहीं लिखती। मैं तो बैठी स्वेटर बुन रही थी।
0: आज मैडम बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्या बात है।
1: खुश क्यों ना हूँ, यहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा है। ये हरियाली, ये ठंडी हवा, बच्चों की किलकारियाँ
0: और भी कुछ होगा।
1: और क्या,
0: मैं तुम्हारा किरण तुम्हारे पास बैठा हूँ, अरे तो तुम्हारे दिल को और भी खुशी देगा ना।
1: तुम आजकल बहुत बिगड़ गए हो।
2: भाई चना लीजिए चना। अरे मेरा चना तरोताजा कर देगा, हौसला भर देगा। सिर्फ एक रुपए में एक पैकेट।
3: क्यों साहब जी, चना लेंगे?
0: नहीं भाई, ये कहाँ से आ टपका दाल भात में मुंह से।
3: मैडम आप लीजिए ना, ये एकदम स्पेशल चीज है। इसको प्रेमियों का चना कहते हैं। खाकर तो देखिए, आप रोमांटिक हो जाएंगी।
0: अच्छा तो भाई फिर दो पैकेट दो।
3: ये लीजिए।
2: चना जोर गरम भाई, चना जोर गरम। चना लीजिए चना, एक रुपए में एक पैकेट। चना लीजिए चना।
0: अरे उधर क्या ताक रही हो, खाओ ना। कहते था कि रोमांटिक हो जाएंगे। अरे कम से कम इस बहाने मुझ गरीब का उद्धार हो जाए।
1: ओ किरण, किरण, इस बूढ़े को मैंने पहले कहीं देखा है।
0: ओहो,
1: बिल्कुल जाना पहचाना चेहरा है। किरण जरा इस चने वाले को बुलाना प्लीज।
0: ओके। ओ चने वाले दादाजी
2: जी,
0: आइए जरा।
3: और चाहिए? ले लीजिए। मैंने कहा था ना कि मेरा चना खाकर आप रोमांटिक हो जाएंगे। हाँ, चना खाते खाते स्वाद बढ़ जाता है और खाने की इच्छा होती है ना।
1: दादाजी आप आजादी की लड़ाई के सैनिक सत्यमूर्ति जी है ना।
3: अरे भुला दीजिए वो सब कुछ, उसका जिक्र क्यों करते हैं। मैं सब कुछ भुला चुका हूँ।
0: क्या आजादी की लड़ाई के वीर सैनिक?
3: नहीं भाई नहीं, मैं आजादी की लड़ाई का सैनिक वैनिक नहीं हूँ। मैंने ना तो किसी मूवमेंट में भाग लिया और ना ही जेल गया, क्योंकि मेरे पास इसका प्रमाण पत्र नहीं।
1: किरण, मैंने उस दिन तुम्हें इनके बारे में बताया था।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, याद आया।
3: नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सत्यमूर्ति चने वाला हूँ। पर इसका भी मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है।
2: चला भाई चला, गर्मा गर्म चला।
0: अब ये चना खाने से हमें प्यार नहीं बढ़ेगा, उदासी छा जाएगी। इस सारी व्यवस्था के विरुद्ध विद्वेष जन्मेगा, है ना आशा?
1: किरण, मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस अपराध में मेरा भी हिस्सा है, किंतु आज के बाद ऐसे अन्याय को नहीं होने दूंगी। सत्यमूर्ति जैसों को न्याय मिलेगा।
0: तो आशा देवी ने कल रात ऐसा सपना देखा होगा।
1: मैं आशावादी हूँ।
0: हाँ, तुम हो ही आशा।
1: कम से कम तुम जैसी सैनिक कभी तो नहीं हूँ।

0: लेडीज एंड जेंटलमैन, दफ्तर के कर्मचारियों में अनुशासन लाने और सार्वजनिक सेवा कार्य को अर्थपूर्ण एवं मानवीय बनाने में आप लोगों के सक्रिय योगदान की मैं अपेक्षा रखता हूं। हमारे प्रधान कार्यालय से जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उसके आम मुद्दों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। इस संबंध में आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? कम ऑन लेडीज फर्स्ट, मिस आशा।
1: सर, कार्यालय में अनुशासन का होना बहुत जरूरी है, साथ ही सभी कर्मचारियों को अपने ग्राहकों के साथ नम्रता से पेश आना चाहिए। इस संबंध में जो परिपत्र प्राप्त हुआ है उससे मुझे बहुत खुशी हुई है। प्रधान कार्यालय के अधिकारियों ने जो पहल की है उसके लिए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देती हूँ।
2: साथियों, इस संबंध में हम सबको दिशा निर्देश करने वाले माननीय साहब जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
3: पर साहब जी, एक समस्या है।
0: हाँ हाँ, कहिए।
3: काफी ठंडी हो रही है।
0: तो देर किस बात की है, शुरू कीजिए, चर्चा भी चलती रहेगी। मैं अभी
4: हिसाब। बिलाल जी, अब आप हाथों में उपन्यास नहीं थाम पाएंगे और रेस के आंकड़ों पर भी यहाँ काम नहीं हो सकेगा।
3: अरे उससे क्या फर्क पड़ता है नक्काल बाबू, उपन्यास फाइलों के भीतर पढ़ा जाएगा।
4: बच्चे भी कुछ
3: बची रेस के घोड़ों की कुंडली, वो उपन्यासों के भीतर सुलझाई जाएगी।
5: नक्काल बाबू,
4: क्या
5: वो एक बूढ़ा अर्जी पकड़े बहुत देर से आपको पूछ रहा है?
2: जाओ उसे बता दो कि ग्राहकों की सेवा में सुधार पर खास चर्चा चल रही है, इसलिए अभी फुर्सत नहीं है। उसे कहो कल आना। कल?
5: आज फुर्सत नहीं है, कल आना। कल?
0: हाँ, तो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची?
2: साहब जी, ईटिंग और ड्रिंकिंग हो गया।
0: अरे नक्काल बाबू, मैं मीटिंग की बात पूछ रहा हूँ। अनुशासन के बारे में तो बात हो गई, अब आम आदमी की सेवा के बारे में क्या तय हुआ?
2: आम आदमी का स्तर ऊंचा होना चाहिए सर।
3: सर, एक बड़ा सा बैनर बनवा लेते हैं, आम आदमी हमारे भगवान हैं, फिर उसको खास जगह पर टंगवा देते हैं।
0: हाँ, वेरी गुड। साथियों, ये भी आदेश है कि आम आदमी की अर्जियों पर 15 दिन के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए।
2: उससे क्या सर, अर्जी लेते वक्त आम आदमी से कह दिया जाएगा कि वो उस पर तारीख ना लिखे, जब हम उस पर फैसला देंगे तब हम ही तारीख लिखेंगे।
0: हाँ, एक बात और, आम आदमी की शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑफिस में एक पेटी रखने की भी सलाह दी गई है।
3: उसमें क्या है सर, हमारे यहाँ वो पेटी है ना, उसी पर एक लेबल शिकायती पेटी का चिपकवा देते हैं।
2: ये ठीक नहीं होगा सर। नो, एक नई पेटी बनवा दी जाए।
4: बड़ा ही मेरा जानकार है, बहुत बढ़िया बना देगा।
0: हाँ तो ठीक है, अब क्या रह गया? देखो, 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाया जाएगा
4: जी,
0: और अंतिम दिन एक बड़ी आम सभा होगी। इसके लिए 1000 रुपए का बजट प्रावधान भी है।
4: वाह वाह साहब जी, क्या ही अच्छा आइडिया है।
0: इस सभा में इन्हीं ग्राहकों में से किसी बुजुर्ग को चुनकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
2: अवश्य करेंगे साहब जी। एक शॉल उड़ाएंगे, चंदन का हार पहनाएंगे, एक थाली में फल समर्पण करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा 200-250 रुपए खर्च होंगे।
0: भाई समस्या वो नहीं है, अरे सम्मानित होने वाला व्यक्ति बुजुर्ग और प्रतिष्ठित हो और हमारा पुराना ग्राहक भी होना चाहिए।
3: साहब जी, हमारे दफ्तर में एक बूढ़ा आदमी आता है, सुनते स्वतंत्रता सेनानी है, उसे बुला ले तो कैसा रहेगा सर?
2: हाँ साहब जी, उसका नाम सत्यमूर्ति है,
4: मैं उसे जानता हूँ, मैं बुला लाऊंगा।
3: बेचारा गरीब बूढ़ा है, उसे थोड़ी सी खुशी मिल जाएगी।
0: हाँ तो ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी जो कुछ है वो कल देखा जाएगा। हा?

0: हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमने अपने कार्यालय की कार्य प्रणाली में बड़े प्रभावी परिवर्तन किए हैं। कर्मचारियों में अनुशासन आ गया है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ गई है, ग्राहकों की सेवा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमने कई योजनाएं बना ली है। 3 दिन तक ग्राहक सेवा अभियान चलाकर आज एक वृद्ध और पुराने ग्राहक को सम्मानित कर रहे हैं। इस परम आदर के लिए हमने स्थानीय व्यक्ति, आजादी की लड़ाई के महान सिपाही, बुजुर्गवार और हमारे माननीय ग्राहक सत्यमूर्ति जी को चुना। आदरणीय सत्यमूर्ति जी से निवेदन है कि वे यहाँ मंच पर पधारें और आज के माननीय अतिथि महोदय के कर कमलों से अभिनंदित हों।
1: साहब जी, सत्यमूर्ति जी अभी नहीं आए हैं।
2: ये क्या मजाक है, जाइए जल्दी बुलाकर आइए उन्हें।
1: नक्काल बाबू बुलाने गए हैं।
0: चूंकि सत्यमूर्ति जी काफी बुजुर्ग हैं और उनके आने में थोड़ा विलंब हुआ है, उनके आने तक हमारे सहकर्मी श्री हिसाबीलाल जी सत्यमूर्ति जी का परिचय देंगे।
3: उपस्थित सज्जनों, शायद ये सत्यमूर्ति जी का परिचय देने का जो सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ है, इसे मैं अपना अहोभाग्य मानता हूं। वे आजादी की लड़ाई के महान योद्धा हैं, यही नहीं, वे इस महान लड़ाई में जेल भी गए और
4: गर्मागरम चना, बस 1 रुपए में 1 पैकेट चना खाइए साहब, चना खाइए चना।
5: अजी महाशय,
4: बड़ा मजेदार चना है।
5: अजी मैं आप ही से कह रहा हूँ। अजी सभा कभी की शुरू हो गई और आप अभी यही है। अरे जल्दी कीजिए, मैंने आपको 4 बजे उपस्थित होने को कहा था।
4: भाई चना चाहिए, अरे गर्मा गर्म चना, मसालेदार चना, चना खाइए साहब चना।
5: अरे दादाजी सुनिए सुनिए, पहले आप सम्मानित तो हो जाइए, बाद में चना बेचने का धंधा बेरोक तो कीजिएगा।
6: आपको वहां ले जाने की जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ले रखी है, चलिए ना।
7: कौन है आप, मुझे कहाँ ले जाना चाहते हैं?
5: अरे पहचाना नहीं मुझे, मैं उस ऑफिस का नक्काल बाबू।
7: ओ समझा, मेरा आपके साथ चलना बहुत जरूरी है।
5: हाँ भाई हाँ, देर मत कीजिए प्लीज, ये मेरी इज्जत का सवाल है।
7: लेकिन मेरा प्रमाण पत्र?
5: सब दिया जाएगा, सब दिया जाएगा। इस समय आप जल्दी कीजिए, मैं आपको ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आया हूँ। गाड़ी
8: सर, मेरी अर्जी
6: आज नहीं होगा, कल आना, कल।
8: साहब जी मेरा प्रमाण पत्र।
5: आप जाओ भी, कह दिया ना कल आना, कल।
9: अरे सत्यमूर्ति जी आप कहाँ खो गए, चलिए भी।
7: क्या कहा, कहाँ चलूं? अरे देखते नहीं आज मुझे फुर्सत नहीं है, आपका काम नहीं होगा।
9: क्या,
7: कल आना कल।
9: अरे सत्यमूर्ति जी मेरी नौकरी चली जाएगी।
7: हाँ भाई अब जाओ भी, कह दिया ना कल आना कल।

0: कल आना कल। अभी आप श्री एच डोंडेराज के कन्नड़ नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री एच वी रामचंद्र राव ने किया। नाटक की निर्देशिका थी श्रीमती निर्मला अग्रवाल। प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्विनी कुमार, हेमेंद्र नाथ, राम मैनी, कीमती आनंद, बी एल टंडन, संदीप खत्री और हर्ष बाला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: बचपन की मासूम आवाज से लेकर हिंदी फिल्मों की लोकप्रिय गायिका बनने तक का खूबसूरत सफर। सुषमा श्रेष्ठ यानी गायिका पूर्णिमा।
2: तो कुदरत को जिसको बनाना होता है ना, वो बच्चे को पहले से ही उसी ढांचे में ढाल देता है और ढलने की एक अकल भी। मैं इतनी कंफर्टेबल थी उस माइक के सामने और मैं फिर शुरू हो गई। उस दिन क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, बस वहां से मैं 7 साल की थी और लगता है कुदरत ने वो एक स्टैंप लगा दिया कि डांस तो रहने ही दो, तुम गाना ही गाओ।
1: तो जरूर सुनिए उनके साथ की गई ये खास बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 19 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: बॉम्बे टॉकीज।
1: सर्वेंट्स, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।
2: दोस्तों नमस्कार। पिछले हफ्ते बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में जानी मानी गायिका दीपाली सहाय साझा कर रही थी मुंबई के संघर्ष की कहानी और भी तमाम दिलचस्प बातें। तो चलिए सुनते हैं जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग।
3: उस महफिल में कितनी तारीफ मिली,
4: उस
3: जहां
4: महफिल में
3: फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग होते हैं, प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, जो जो आर्ट से प्यार करते हैं, जिन्हें कैफी आजमी से प्यार है, जो थिएटर की दुनिया की बड़ी हस्तियां हैं।
4: वो जो महफिल हुई ना, उसके बाद बाबा आजमी सर ने जो बातें बोली थी वो मेरे साथ आई, मेरे साथ थी, मेरे अंदर बात तो चलने लगी थी स्वयं से कि ये क्या, ये आदमी जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है ये या फिर हमको गुमराह करने का कोई नया साजिश रच रही है दुनिया की, ये हम कर क्या रहे हैं। मतलब हम मुंबई से मुंबई आते हैं गाने के लिए और somehow एक डॉक्टर बोलता है गाना नहीं गा सकती और फिर हमको लगता है अब जीवन में क्या करें, चलो एक्टिंग का ऑफर सामने से आ जाता है, एक्टिंग करने लगते हैं, फिर लगता है नहीं डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर डायरेक्शन पढ़ के हिंदुस्तान के सबसे अच्छे जगह से डायरेक्शन पढ़ के हम निकलते हैं। एक साल दो साल अभी डायरेक्शन में काम ही कर रहे थे कि फिर से ये बोलते नहीं गाना गाना चाहिए आपको। तो मेरा लाइफ बहुत टर्मोइल में चल रहा था उस वक्त। उस महफिल, उस रात जो हुआ जब जावेद अख्तर और शबाना आजमी और बड़े बड़े दिग्गज उस महफिल में बैठे थे और जब उन लोगों की नजर में अपने लिए तारीफ देखी, शब्दों में नहीं नजर में, उनके प्रेजेंस में था कि उनको मेरा गाना बहुत पसंद आया था। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीजें आपको इतनी अच्छी लगती है कि आपको बोलने का भी मन नहीं करता है।
3: बिल्कुल, और वो महफिल ही ऐसी होती है,
4: वो महफिल होती भी उस तरह की ही होती है। वो तो उनके पूरे हाव भाव में एक वेलकमिंग एटीट्यूड था कि बेटा तुम सही रास्ते हो अगर तुम ये करो तो, पर कोई यहाँ पे खुल के राय नहीं देता है क्योंकि जो बाबा आजमी सर ने मेरे साथ किया वो बहुत कम लोग करते हैं। इनका मानना है कि भाई जियो और जीने दो और हर कोई अपना रास्ता खुद तलाशता है आप उसको नहीं सिखा सकते हैं।
3: तो बाबा आजमी ने आपको,
4: उन्होंने तो
3: एक राह दिखाई,
4: हाथ पकड़ के उस राह पे जबरदस्ती लेके गए कि ये आप कर क्या रही है अपने जीवन के साथ, ये उनका मानना था उस वक्त जब हम ऐसा कुछ नहीं सोचते थे। और फिर उनके कहने की वजह से आई टुक इट वेरी सीरियसली और हम सोचे कि अब रियाज शुरू किया जाए, बचपन का वो काम जो हम हमेशा से करते थे। रियाज जब शुरू किए तो पता चला गले का जो चाम है
3: वो फ्लैट हो गया,
4: वो जा चुका है। वो एक कार्यक्रम के लिए निकल जाए वो अलग बात है, बट अब गला दर्द होने लगता था लंबा गाने पर, यू नो। तो दो साल तो हमको सिर्फ रियाज में लग गया, चुपचाप, न कोई काम न कोई पैसा। पता नहीं क्यों कैसे ये हुआ मेरे साथ कि वो जो फेज था उसमें एक बार फिर से माँ बाप को डर लगा कि ये तो फिर करियर, फिर कोई रास्ता नहीं समझ आ रहा, ये लड़की कहाँ जाएगी। तो उस समय भी सुझाया गया कि बेटा अभी भी मौका है, एक अटेम्प्ट बचा है, यूपीएससी निकाल लोगी तो।
3: अरे बाप रे,
4: 2014 की बात है, एफटीआई के बाद, और पैकिंग शुरू हो गई कि चलते हैं दिल्ली, एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे और ये तो तय था कि एक अटेम्प्ट में ही निकाल लेंगे, इतना कॉन्फिडेंस था। और अभी एक ही अटेम्प्ट बचा था एज के हिसाब से। तो पैकिंग जब शुरू हुई और तब मेरी दीदी की शादी हुई थी जस्ट, मेरे जीजा जी हमारे जीवन में आए और उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव ये, काफी पढ़े लिखे हैं वो, उन्होंने बोला कि मेरा सुझाव है कि जब इतने साल दे दिए, 2007 से 2014 आ गया और तुम अभी तक हार नहीं मानी हो तो अब भी नहीं मानो, रुको करो, क्योंकि अब भरोसा नहीं था कि हम कर भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि गाना तो छूटे हुए बचपन में छूट गया गाना ना। बट वो वही तो है कि मेरे अलावा मेरे आसपास के लोग भी बड़े कमाल के मिले हमको, मेरे अलावा सबको मेरे अंदर विश्वास था कि ये कर सकती है। और फिर बाबा आजमी जैसे मिले हमको, उनका जब सुझाव मिला, जीजा जी भी बोले कि नहीं तुम कर सकती हो, शुड स्टॉप, वेट, मत जाओ दिल्ली, मत करो यूपीएससी, तुम इसके लिए नहीं बनी हो, तुम वहां जहां हो, तुम जिस चीज के लिए बनी हो तुम वहीं हो।
3: वाह।
4: और फिर हम दो साल जेन्युइनली मेहनत किए, हम रियाज किए, डिप्रेशन भी आया उस फेज में क्योंकि काम नहीं है, जो काम ऑफर हो रहा है आप उसको मना कर रहे हैं क्योंकि आप दो जगह नहीं जा सकते एक साथ। अगर हम शूटिंग करेंगे, अगर डायरेक्शन में असिस्ट करेंगे तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे, फोकस तो करना पड़ेगा। सो दैट वाज अ वेरी डिफिकल्ट फेज।
3: कैसे निराशा का सामना किया?
4: इस बार हम टूट गए बिल्कुल, इस बार ऐसा लगा कि जीवन ठीक नहीं है, तो वो डिप्रेशन ही था। और ये इस बार ये दीपावली नेगेटिव हो गई थी बहुत ज्यादा।
3: कितना लंबा चला
4: ये चला? कुछ एक डेढ़ साल।
3: किसकी मदद मिली?
4: माँ बाप फिर से, क्योंकि अब वो स्थिति थी कि पैसे भी थे, मतलब पिछले इतने सालों में तो पैसे अच्छे से कमाए थे, तो पैसे की कमी तो नहीं थी। ये डर नहीं था कि मुंबई में जीवन यापन कैसे होगा, पर क्योंकि वो राह, वो जीवन, और फिर जीवन में आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं बहुत सारे, वो सब आपको एक अलग एहसास देते हैं। और हम उसी फेज में पहुंच चुके थे जहां पे जीवन ने आपको बहुत सारे एहसास के दर्शन करा दिए थे। हमको याद है कि एक गाड़ी भी हम बुक कर दिए थे, नई गाड़ी। मेरे पास जो गाड़ी थी पिछले कई सालों से, उसको हटा के नई गाड़ी भी लेने का प्लानिंग हो गया। बट एक दिन हमको याद है कि अकेले थे हम, और दूध उबल के मेरे सामने गिर रहा था और हमको समझ नहीं आ रहा था।
3: अपने ख्यालों में गुम
4: थे। अपने ख्यालों में, और मेरी आंखों से हम वो देख रहे थे कि ये दूध उबल के गिर रहा है, और हम गिरने दे रहे थे, और नमक था हाथ में क्योंकि चीनी समझ के डालने जा रहे थे।
3: अरे बाप रे।
4: तो वो यू नो दैट मोमेंट, उस वक्त हमको लगा कि ये तो हम है ही नहीं, इतने लॉस्ट तो हम है ही नहीं, आई एम वेरी फोकस्ड एज अ पर्सन। हम इंसान बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड, बहुत फोकस्ड हैं, बहुत मोमेंट में रहने वाले हैं, तो ये तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। मतलब यू नो आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल वो जो ब्लैंक जीवन था ना, कि हम काम करना चाहते हैं पर कर नहीं रहे क्योंकि कोई बोल रहा है कि हम अच्छा गाते हैं, और हम गाते भी अच्छा हैं, पर क्या हम ये कर पाएंगे? मेरी तो किसी म्यूजिक डायरेक्टर से जान पहचान भी नहीं है, हम कैसे करेंगे? डायरेक्शन में क्या है, तो हम स्पॉट बॉय बन के भी नीचे से भी ऊपर उठ सकते हैं। एक्टिंग हम छोड़ चुके हैं, एक्टिंग नहीं करना है क्योंकि वो एक ही चीज कराते हैं, रोज रुलाते हैं, रोज किसी से यू नो वैम्प है तो बदमाश ही है। वो मेरा क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। सिंगिंग हम किए नहीं कभी, डायरेक्शन अब कर नहीं सकते क्योंकि वहां जितना इन्वेस्टमेंट लगता है वो दिन और रात बराबर होते हैं वहां पे। अगर हम वो करेंगे तो हम रियाज नहीं कर पाएंगे, पर क्या हम सच में सिंगर हैं?
3: बहुत बड़े सवाल थे।
4: हाँ, क्या सच में मेरे में ये योग्यता है कि हम एक ऑलरेडी सेट करियर जिसको हम इन्वेस्ट करके बना चुके हैं वो छोड़ के हम फिर से बैक टू स्क्वायर वन चले आए क्या? क्या हम गा पाएंगे कभी? क्या सच में मेरा गला ठीक हो गया है?
3: मेरा दिमाग घूम गया।
4: और फिर हम आई रिमेम्बर जब वो दूध वाला इंसिडेंट हुआ तो हम अपने पापा को फोन किए और हम बोले पापा कुछ गड़बड़ है। तो वो घबरा गए, क्या गड़बड़ है? हम बोले पता नहीं कुछ गड़बड़ है, हमको घर आना है। बोले आओ, कितने दिन के लिए आओगी? उनका पहला ये सवाल होता था कि आ रही हो तो फिर जल्दी नहीं चली जाए। तो हम बोले पता नहीं, 6 महीना 1 साल। तो उनको लगा कुछ तो बहुत मेजर हो गया है इसके साथ,
3: ये ऐसे नहीं आ
4: सकती, ऐसे बात नहीं करती है। और फिर हम घर पहुंचे और वो 1 साल बहुत परेशान रहे। मेरे पिताजी को ये भी था कि शादी हो जाए इसकी। उनको, माँ बाप को ऐसा लगता है ना कि कंपेनियनशिप होता तो शायद ये इतनी परेशान नहीं होती। एक साथ होता है तो ढाड़स बधा रहता है आपके पास। वो भी कमी होगी, आई एम श्योर वो भी कमी थी मेरी लाइफ में। बट उससे ज्यादा कमी ये थी कि हमको क्लैरिटी नहीं था कि हमको चाहिए क्या, क्योंकि हमको सब कुछ चाहिए था। किशोर कुमार के भक्त हैं हम, तो हमको किशोर कुमार बनना था।
3: गजब।
4: आई कुड एक्ट ऑल्सो, आई कुड सिंग ऑल्सो, आई कुड राइट ऑल्सो। और किशोर कुमार का की भक्ति मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी, पर ये नहीं पता था कि वो रास्ता इतना आसान नहीं है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, ये बहुत कठिन रास्ता है। और जब आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक काम करना है तो उसमें कितनी शिद्दत और मेहनत जाती है।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: कितने सारे सैक्रिफाइसेस जाते हैं, कितना सारा डर होता है।
3: कैसे अपने आप को संभाला और इस 1 साल में खुद को वापस पटरी पे लाया?
4: पता नहीं वो कैसे, वो माँ बाप के पास वापस आना ही सही डिसीजन था। क्योंकि उस वक्त मुंबई में अकेले रहना मेरे लिए ठीक नहीं था। तो थैंकफुली यू नो आज डिप्रेशन के ऊपर इतनी बातें होती हैं, हमारे पास इतने डॉक्टर्स हैं और खुल के ये बातें हो रही हैं। तब तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में भी नहीं था कि ये एक क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकता है।
3: यू नो हम तो इसमें किसी एक्सपर्ट की मदद,
4: राय, मदद, हमको ये अंदाजा नहीं था। हमको ये भी नहीं समझ आ रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत एहसास यू नो टूट रहे हैं हम अंदर ही अंदर। ये सब समझ ही नहीं था हमको, बस पता था कि जब भी हम हारते थे तो मेरे माँ बाप चाहिए हमको। तो बस हम, दैट वाज अ गुड डिसीजन।
3: लेकिन ये कितनी प्यारी बात है कि एक लड़की दुनिया के तमाम गमों और तमाम थपेड़ों से हार के अपने माँ बाप की गोद की तरफ लौटती है।
4: ये
3: दुनिया की सबसे प्यारी बात है,
4: सबसे प्यारी बात है। और ये मेरा सौभाग्य है, मेरे माँ बाप ऐसे हैं। मतलब आज तक हम अपने, मेरे पिताजी भी तो वही मर्द है ना जो इस समाज में जीते हैं, उसी उसी उसी समाज का हिस्सा है। पर मेरे पिताजी के मुंह से आज तक हम ऐसा कुछ नहीं सुने कि बेटा तुम तो लड़की हो, तुम ऐसा कैसे कर दी। कितनी बड़ी बात है ये।
3: बिल्कुल,
4: वो भी तो मर्द ही है ना।
3: बिल्कुल,
4: शायद मेरा पति ये बोल दे, पर मेरे पिता ने आज तक ये नहीं बोला है। थैंकफुली मेरा पति भी ऐसा नहीं है। पर आई एम जस्ट सेइंग कि वो उस समाज से निकला हुआ एक मर्द जिसने अपने पिता से बहुत मार खाई है बचपन में, उसने आज तक एक उंगली से भी नहीं छुआ है हम लोगों को। आप जनरली वही पास ऑन करते हैं ना, जेनरेशनल, जो आपने देखा सीखा। आपको यही पता है, बच्चे को टेम करने के लिए, बच्चे को वश में रखने के लिए मारना पड़ता है। और मेरे पिताजी ने आज तक हम लोग को मतलब डांटा भी नहीं होगा शायद। बहुत दुखी होते थे तो बोल देते थे कि दुख हुआ बेटा ये सुन के कि तुम ऐसा की, यू नो। तो ऐसे माँ बाप के पास आप वापस नहीं जाएंगे तो आप किसके पास जाएंगे, जो आपके हर ऊट पटांग सपने पे खड़े हैं पंख लेके कि ठीक है बेटा चलो पंख पहना देते, जाओ उड़ो। बाइक चलाना है उड़ो, गाड़ी चलाना है उड़ो, यू नो। बचपन में हमारे पापा का, हमारा सरकारी क्वार्टर था जो उसमें कैंपस था, वहां पे पापा मेरे सब्जियां उगाते थे, फूल गोभी, बंदा गोभी, मूली, गाजर, तो हमें वो भी रोपना होता था। आप देखिए हमारा कितना मल्टी पर्पज स्टूडियो है, जैसे ये कितना हमारा मल्टी टास्किंग ग्रोथ हो रहा था। हमें खुद का काम खुद करना है। तो आपके माँ बाप, और हमको नहीं पता कि वो लोग ये कॉन्शियसली कर रहे थे या वो ऐसे ही है, आई डोंट नो, क्योंकि वो बिल्कुल भी वैसे नहीं थे जैसे बाकी के माँ बाप थे। ये कुछ अलग तो थे, ये एक अलग तरीके से अपने बच्चे के साथ थे,
3: और इसलिए आप संभल गए।
4: इसलिए हम संभल गए।
3: यहाँ एक गाना सुनते हैं।
4: बिल्कुल,
3: संभलने का गाना, फिर आगे बढ़ते हैं।

0: क्या बात है, क्या बात है। तो इसके बाद दीपाली वापस आ गई।
1: बिल्कुल, पूरी तरह से।
0: और मुंबई में जिंदगी की हकीकतों का सामना करने के लिए तैयार।
1: तैयार। और ये 2016 की बात है जब हम बहुत बुरे स्टेज में थे, 15-16, और 15-16 वॉज वेरी डिफिकल्ट। बट 2017 में वापसी हुई मुंबई में, वापस आए, घर बदला, यू नो, जिस घर में रह रहे थे वो घर चेंज किया, और डिसाइड किया कि भोजपुरी भाषा में कुछ करना है। क्योंकि ये जो एक साल हम घर पे रहे, और क्योंकि अब हम भोजपुरी का मेरा एक्सपोजर हो गया एक्टिंग की वजह से, तो समझ आया। और इस बीच एक बहुत ही कमाल का शो नेटफ्लिक्स पे आता था, अब नहीं आता है, सतरंगी नाम का एक शो हुआ मेरे जीवन में। इसमें आई वॉज द होस्ट ऑफ दैट शो। ये कुछ ही दिन चला, ये कुछ 12 एपिसोड या 13 एपिसोड का था, पर एक एपिसोड का मतलब एक राज्य। तो समझिए कि फ्री में हमने पैसे के लिए ये काम किया था, बट ये एक्सपीरियंस सुन के लगा कि अगर पैसे देखेंगे तो काम, तो ये एक्सपीरियंस चला जाएगा। इसमें एक मौका ये था कि आप अलग अलग राज्य में जाते और वहां के फोक म्यूजिक को आप एक्सप्लोर करेंगे एज अ होस्ट।
0: वाह वाह वाह।
1: तो FTII का जो टाइम चल रहा था उसी वक्त ये शो आया था। तो आई डिड इट, और एक महीने का ही ट्रैवल था जो ब्रैकेट्स में था, एक एक हफ्ते का, तो वो हो गया। और इसकी वजह से हम दुनिया के, हिंदुस्तान के 13 अलग अलग स्टेट्स में गए और वहाँ के फोक म्यूजिक को सुने। और जब वो लिस्ट आई थी कि हम लोग को जिस जिस स्टेट जाना है, उसमें बिहार का नाम नहीं था। और ये बात हमको बहुत चुभी थी कि मतलब हम लोग इस योग्य भी नहीं है। झारखंड है,
0: झारखंड था,
1: यूपी है,
0: तो बिहार क्यों छोड़ दिया था।
1: मध्य प्रदेश है पर बिहार नहीं है। अब वो क्यों नहीं है हमको नहीं पता। और ये बात हम पूछे भी डायरेक्टर से कि बिहार क्यों नहीं है, तो वहाँ पे एक्चुअली वहाँ कोई बहुत सारे लोग हैं नहीं जो फोक करते हैं। ये बात हमको बहुत चुभी, ये बात सच है। मेरे जैसे जो यंगस्टर्स हैं, क्योंकि उस शो का पर्पस ये था कि जेनरेशन नेक्स्ट उस फोक विधा को कैसे आगे ले जा रहा है, तो बोला वहाँ पे बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है ना फोक लैंग्वेज में। और ये बात मेरे दिल में बहुत घर कर गई कि बात तो बिल्कुल सही है। मेरी अपनी भाषा है भोजपुरी और हम उससे दूर रहते हैं क्योंकि उसमें अश्लील गंदे गाने बन रहे हैं। पर अगर गाना गाने वाला ही उससे दूर हो जाएगा तो अच्छा गाना गाएगा कौन। हम गा सकते हैं, पैसा मेरी प्रायोरिटी है नहीं लाइफ में। तो अगर हम ये नहीं करेंगे, एक आइडियल सिचुएशन है ये जहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, देवी की कृपा से कलाकार हैं हम। और मेरी सोच ये है कि ये गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाई बो, या बनी जई हो बनी के जोगिनिया हो रामा पिया के करनवा, ये गाने मेरी जनरेशन को पता भी नहीं है कि सुमन कल्याणपुर ने या लता जी ने भोजपुरी के लिए गाया है, या भोजपुरी में जो मेरी नानी गाती थी या अम्मा गाती थी, दादी गाती थी, वो गाने, उन गानों में अश्लीलता नहीं होती थी। जब हम ही को इंटरेस्ट नहीं होगा तो इनकी लिस्ट में मेरा नाम होना भी नहीं चाहिए।
0: ओहो, ये बहुत बड़ा झटका था,
1: बहुत बड़ा झटका था। सो दिस इज व्हेन आई डिसाइडेड कि अब भोजपुरी के लिए कुछ करना है। और वहां कुछ ऐसा सामंजस्य बन गया जीवन में कि एक हिंदी कविता का एक YouTube चैनल है, उर्दू पोएट्री,
0: मनीष गुप्ता का,
1: मनीष गुप्ता का, उनके लिए एक किस्मत से एक गजल आपकी याद आती रही रात।
0: अच्छा, ओ हो हो हो हो, वो आपने किया था।
1: जी
0: देखिए मनीष गुप्ता बहुत प्रिय दोस्तों में से एक है।
1: जी, तो उनके लिए ये, उनके चैनल के लिए ये, और क्योंकि हम यू नो जस्ट उस फेज से निकले थे, वो जो मेरा लाइफ बहुत डिफिकल्ट फेज था, तो वो गाना जो है यूट्यूब पे वीडियो में है और आज भी हमको
0: खूब चलता है। वो
1: खूब चलता है हमको आज भी बहुत।
0: ओरिजिनली छाया जी ने गाया है।
1: जी,
0: और मजेदार बात यह है कि छाया जी विविध भारती परिवार का हिस्सा रही।
1: ओ, कैसा ये सर्कल है।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: तो आपकी याद आती रही रात भर की वजह से आई अंडरस्टूड कि यूट्यूब का क्या पावर है। मतलब मेरे जैसा एक इंसान जिसको कोई नहीं जानता है, जिसका कोई नामो निशान नहीं है संगीत के जगत में, वो लड़की एक किसी दूसरे के चैनल के लिए एक गाना गाती है, वो भी बैठ के बिना म्यूजिक रो रही है, गा रही है और रो रही है, और वो वायरल हो जाता है। और हमको फेसबुक पे और हम कहीं भी जा रहे हैं तो हमको लोग पकड़ के बोल रहे हैं, जो पहचान ले रहे हैं, आपको हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, आपके और गाने कहाँ सुन सकते हैं, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है।
0: और मैंने क्या समझा पता है?
1: हाँ।
0: किसी एक्ट्रेस ने गाया है। मुझे नहीं मालूम था कि हम इस तरह से एक मेज पर बैठे होंगे और विविध भारती के लिए बातें कर रहे होंगे। मैंने वो वीडियो बहुत देखा है,
1: अच्छा,
0: और बल्कि मैंने भी मनीष के लिए काम किया है, कुछ
1: अच्छा
0: कुछ कविताएं पढ़ी हैं।
1: ओहो, तो हमको तो मिलना ही था सर। तो उसकी वजह से ना हमको सोशल मीडिया का पावर समझ आया कि अब जो है आपको एक रियलिटी शो के प्लेटफॉर्म का वेट नहीं करना है, अब आपके हाथ में एक प्लेटफॉर्म है, उठाइए अपना कैमरा, अपने आप को शूट करिए और डाल दीजिए। क्योंकि अगर आपकी याद आती रही जिस तरह से लोगों के बीच गया, उसमें तो कुछ नहीं था, ना हम खूबसूरती से सज के बैठे हैं, ना कोई म्यूजिक है, ना कोई बैकड्रॉप है, ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक लड़की, नॉर्मल सी लड़की घर के कपड़ों में बैठ के गा रही है और एक आदमी ने उसको कैप्चर कर लिया
0: दो कैमरों से,
1: दो कैमरास लगा के। बोले अगर ये पॉसिबल है तो कितना स्कोप है मेरे पास, एंड आई कैन डू दिस विद माई ओन लैंग्वेज। भोजपुरी में अगर हम सेम चीज रिक्रिएट कर दें और लोगों को समझा के कि ये गाना क्या कहना चाहता है, अगर हम समझाएं अंग्रेजी में, तो जो यंग क्राउड है वो कनेक्ट करेगी कि अरे ये भोजपुरी भी बोल रही है लेकिन इंग्लिश में समझा रही है। तो जैसे हम कनेक्ट कर जाएंगे वैसे कोई भी कनेक्ट कर सकता है। और मनीष गुप्ता की वजह से मिल गए नीलेश मिश्रा। उनका चैनल आया था गांव कनेक्शन। उनको चाहिए थे लोकगीत,
0: वो बड़ी शिद्दत से तब ढूंढ रहे थे,
1: ढूंढ रहे,
0: ऐलान किया था।
1: तो उन्होंने जब ये ऐलान किया तो हम तो ताक में बैठे थे क्योंकि हम तो थे उनके फैन,
0: वो भी हमारे दोस्त।
1: अरे तो उन्होंने ऐलान किया कि वो मुंबई आ रहे हैं और उन्होंने सामने से मैसेज कर दिया था आपकी याद आती रही, आपकी याद आती रही की वजह से हम थोड़े फोकस्ड हो गए अपने फेसबुक इंस्टाग्राम ये प्रोफाइल्स पे काम करने लगे कि लोगों को मैसेज का रिप्लाई कर दें, बस इतना हम करने लगे थे। लेकिन जब नीलेश मिश्रा का मैसेज आया तो हमको लगा ये मामला सीरियस हो गया है, मतलब यू नो समवन लाइक नीलेश मिश्रा इज मैसेजिंग मी कि आपने बहुत अच्छा गाया है और हम साथ में कुछ कर सकते हैं क्या एक्सप्लोर। तो हमको लगा ये मौका अच्छा है भोजपुरी के लिए, वैसे भी हमको कोई पैसा तो देगा नहीं, ये बनाना प्रोडक्शन करना थोड़ा महंगा काम है, तो अगर व्हाट इफ आई नीलेश मिश्रा को ये आइडिया पिच करते हैं कि आप हमको अपने चैनल पे, वो ढूंढ रहे थे फोक आर्टिस्ट, तो लेकिन हम अपने अंदाज से गाना चाहते हैं, हम उसको गाएंगे पर वैसे नहीं जैसे लोग गाते आ रहे हैं, हम उसको समझाएंगे और फिर गाएंगे। एंड आई मेट नीलेश मिश्रा एंड वो बहुत खुश हुए इस कॉन्सेप्ट से, उनको लगा हाँ ये कुछ नया एक्सपेरिमेंटल होगा, और वहां से भोजपुरी क्लासिक्स दीपाली सहाय की शुरुआत हुई थी।
0: क्या बात है, और वो खूब चला,
1: खूब चला
0: और पूरी दुनिया में धूम मचाई,
1: बहुत चला।
0: और एक और चीज चली, पार्किंग सीरीज,
1: पार्किंग लॉट।
0: वो भी मजेदार है, उसमें तो आपने पता नहीं क्या क्या गाया है।
1: हाँ उसमें तो
0: जब जो मर्जी आई है गाया है,
1: जब जो दिल में आया। और पता है लोग हमको हमेशा बोलते थे, जो मेरे आसपास के दोस्त लोग थे, कि तुम क्या गाती हो यार, कितना पुराना, कोई सुन, हम सुने भी नहीं है ये गाना तुम जो गाती हो।
0: और मुझे ना ये लगता था कि ये कौन लड़की है जो मतलब सीरियसली ये बहुत अमेजिंग बात है, मतलब पार्किंग लॉट वाला जो पूरा मामला है, तो
1: ये दोनों पैरेलली शुरू हुआ
0: और ये इंस्टाग्राम की फीड में आते जाते थे और वो गूंजती हुई आवाज में गाने हम सुनते रहते थे, पर हमने ये सोचा ही नहीं कि ये,
1: हाँ, ये
0: मतलब ये बहुत मजेदार है। मुझे ये आज ये एहसास हो रहा है कि मैं तो बहुत लंबे समय से दीपाली के गाने सुनता आ रहा हूँ।
1: ये कमाल है। 2017 पार्किंग लॉट सीरीज शुरू,
0: और वो भी बहुत चली थी,
1: बहुत चला,
0: बहुत ज्यादा।
1: मतलब आई रिमेम्बर जिस दिन हमको रहमान सर के लिए रिकॉर्ड करना था, तो अंदर से मेरे एक एहसास आ गया था कि शायद अभी हम इतने बह जाएंगे इस इमोशन में, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है। 9 साल लगातार हम पार्किंग लॉट सीरीज की है, 9 साल से हम सोशल मीडिया पे लाइव गा के गाना डालते हैं, और आप विश्वास करिएगा मेरे दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि मेरी आवाज रहमान सर तक पहुंच जाए, AR रहमान सुन ले हमको, बस, और कोई तमन्ना ही नहीं थी मेरी।
0: और उन्होंने सुन ली,
1: और उन्होंने सुन ली।
0: उन्होंने क्या बताया, कहां, किस तरह से सुना?
1: उन्होंने इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना शुरू किया हमको।
0: अच्छा,
1: 6 जनवरी जो मेरा जन्मदिन है,
0: उनका भी
1: जन्मदिन है,
0: ये भी इत्तेफाक है।
1: दिलजीत दोसांझ का भी जन्मदिन है, ये मुझे इम्तियाज सर ने बताया है।
0: अरे बाप रे।
1: तो 6 जनवरी को इंस्टाग्राम पे AR रहमान की टीम का मैसेज आ जाता है, AR रहमान स्टार्ट्स फॉलोइंग मी, और उनके टीम का मैसेज आ जाता है कि AR रहमान सर आपको एक गाने के लिए आपका वॉइस ट्राई करना चाहते हैं। और जब हम गए तो पता चला कि उन्होंने मेरा कोई भोजपुरी गाना सुना था इंस्टाग्राम पे। एंड फिर आई एम श्योर उन्होंने पार्किंग लॉट के भी गाने
0: सारे सुने होंगे,
1: और यू नो ए आर रहमान जब किसी को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली वो काफी सोच समझ के करते होंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो हमको समझ आया कि ये यू नो जितना पावरफुल हम सोशल मीडिया को समझ रहे थे आज से 10 साल पहले, और जब हम ये जर्नी शुरू किए थे कि हम लाइव ही गाएंगे, हम कभी भी मुंह नहीं चलाएंगे वीडियो में, जब भी गाएंगे लाइव गाएंगे, क्योंकि ऐसा बहुत सिंगर्स करते थे अच्छा रिकॉर्ड करके और वो अपने गाने पे एक्टिंग करके मुंह चला के डाल देते थे। बट आई स्टार्टेड ट्रीटिंग दिस प्लेटफॉर्म एज माय इंडियन आइडल ऑडिशन प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो जो इंसिडेंट हुआ था ना मोंटी शर्मा वाला, वो हमको बहुत डरा दिया था। सो मेरे दिमाग में ये था कि अगर एक जावेद अख्तर बोल देते हैं कि रहमान सर आप जरा दीपाली को सुन लीजिए, वो एक अलग प्लेसमेंट होगा। पर अगर उनकी ऑफिस में काम करने वाला एक आदमी बोल देता है कि आप दीपाली को सुन लीजिएगा, वो एक अलग प्लेसमेंट होता है। अब मेरे भाग्य में ये नहीं है कि हमको जावेद अख्तर सब जगह भेज पाए, वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, वो मेरे पिताजी नहीं है, तो हम कैसे पहुंचे?
0: ये एक जरिया बना।
1: हाँ, यही जरिया मेरे दिमाग में, यही जरिया हम बनाए। आपको पता नहीं है, मतलब आज मेरा सौभाग्य है कि इम्तियाज अली सर का नंबर है मेरे पास और हम उनको फोन कर सकते हैं और यार रहमान सर से हम बात कर सकते हैं। पर इम्तियाज अली सर के मैसेंजर में, इंस्टाग्राम के मैसेज में हमने अपने पार्किंग लॉट के गाने भेजे हुए हैं इस उम्मीद पे कि क्या पता इनको कुछ अच्छा लग जाए, क्या पता ये गलती से देख लें। तो ये जो था मेरे लिए, हम चाहते थे कि जिस दिन भी हमको कोई म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, हमको किसी और के माध्यम से नहीं जाना पड़े। वो सीधा हमको बुलाए, क्योंकि फिर बात क्लियर है। किसी पैरवी से हम नहीं आए, किसी की सिफारिश नहीं लगी है मेरे लिए, मेरी योग्यता है इसलिए हम उनके सामने बैठे हैं।
0: वाह।
1: और ये योग्यता जो है सिद्ध करने में अगर हमको जन्म भी बीत जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो 10 ही साल लगा। ये जो
0: लेकिन ये 10 साल बहुत कठिन साल, बहुत फोकस के, जद्दोजहद के,
1: हाँ
0: कंफ्यूजन के साल।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत, बहुत मेहनत। क्योंकि अब हमको क्या लगा कि सोशल मीडिया इतना पावरफुल है तो इसके ऊपर कंटेंट तो आपको बनाना पड़ेगा ना। अगर कोई आपके प्लेटफॉर्म पे, आपके दीपाली सहाय के हैंडल पर आता है तो उसके पास देखने के लिए कुछ होना तो चाहिए। आप उसको फंसाएंगे कैसे कि वो आपके गाने तक पहुंच तो सके? अब अगर ये लड़की गाना ही शुरू कर दे तो फंस जाएगा कोई भी। लेकिन अगर एक ही वीडियो डालेगी तो कोई नहीं फंसेगा, क्योंकि एक करे और नहीं। अब ये शुरू हो गया रेकरिंग, मतलब एक सिलसिला शुरू हो गया जो यूनुस पिछले 10 साल से चल रहा था। और इस पूरे 10 साल में बस यही था कि जो भी हमको कोई भी सुने वो बस ये समझे कि ये लड़की अच्छा गाती है। और दिल के अंदर दम कोने में एक ख्वाहिश थी कि एक दिन मेरा गलती से भी भगवान तुम गाना पहुंचा देना यार रहमान के पास प्लीज।
0: वाह वाह वाह।
1: क्योंकि कुछ 3 साल पहले रहमान साहब का एक इंटरव्यू था इंस्टाग्राम पे और उनसे पूछा गया कि आप नया टैलेंट कहाँ ढूंढते हैं।
0: उन्होंने कहा था इंस्टाग्राम,
1: उन्होंने कहा था इंस्टाग्राम।
0: यस बिल्कुल, बहुत चर्चित हुआ था ये।
1: तो ये 3 साल पहले की बात है। मेरे अंदर फिर से वही विश्वास कि अब तो पहुंचेगा ही। पर पता नहीं है पहुंचेगा कि नहीं, पर विश्वास था कि पहुंचेगा।
0: वो पल जब आप गा रही थी वो कितना सपनीला पल था।
1: ओहो कैसे बताए हम। हम उस स्टूडियो में बैठे थे जहां रोजा और लगान जैसी फिल्में बनी थी और वहां पर हमको बुलाया गया था
0: चेन्नई में, एआर रहमान स्टूडियोज।
1: एआर रहमान जी का जो स्टूडियो है पंचतन नाम है उसका, वो उनका घर है, होम स्टूडियो है उनका।
0: बिल्कुल।
1: और जब हम पहुंचे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि 6 जनवरी की रात मेरे पति जो है ऐश्वर्य निगम, वो प्लेबैक सिंगर है और बहुत बेहतरीन कलाकार है, वो हमसे पूछे थे कि अब जब तुमको सच में एआर रहमान सर फॉलो करना शुरू कर दिए हैं और अगर तुमको सच में बुला लें तो तुमको क्या लगता है, तुमको क्या चाहिए? तो हम बोले एकदम दिल से बताएं क्या चाहिए। तो बोला हाँ। तो हम बोले यार सपना तो यही है कि इम्तियाज अली की फिल्म हो, इरशाद कामिल के बोल हो और ए आर रहमान का एक गाना हो सोलो।
0: एग्जैक्टली ये बोला,
1: एग्जैक्टली ये मेरे शब्द थे।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है।
1: जेवा पे सरस्वती बिराजती हैं भाई, बिराजती।
0: क्या बात है, क्या बात है। और ये संभव हुआ।
1: ऐश्वर्य ने बोला भी कि यू नो ए आर रहमान जिसको भी फॉलो करते हैं वो पूरे दुनिया में ढिडोरा पीटता है कि अब तुम सबको बता दो कि यू नो, तो उससे तुम्हारी क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी उन लोगों की नज़र में जो म्यूजिक कर रहे हैं, जो सीरियस हैं, उनको पता चल जाएगा कि अगर यार रहमान इनको फॉलो कर रहे हैं तो हमको भी इनको सुनना चाहिए। तो मेरे क्या शब्द थे कि अभी नहीं बताएंगे। आज 6 जनवरी है, आज से 6 महीने में मेरा एक गाना रिलीज होगा AR रहमान सर के साथ, तब बताएंगे दुनिया को।
0: अरे गजब।
1: और 10 जून को मेरा गाना रिलीज हुआ था।
0: एग्जैक्ट 6 महीने।
1: एग्जैक्ट 6 महीने।
0: वाह वाह वाह वाह, बड़ा जादुई मामला है।
1: जादुई है, जादुई है सर, इसमें टैलेंट का कुछ लेना देना नहीं है, ये सिर्फ भाग्य है, सिर्फ मेरा सौभाग्य है। टैलेंटेड, मेरे जितने टैलेंटेड हजारों लोग हैं, हजारों।
0: दीपाली, ये एक ऐसा गाना है, मैं वापस आऊंगा का गाना, कि आज इस पर लाखों करोड़ों रीलें बन गई, कितने सारे लोग इसको टॉकीज में सुनकर रोते हैं, फिर अपने साथ ले आते हैं, फिर घरों में सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहां हम आपसे वो गाना लाइव सुने।
1: जी जरूर।

0: जब आप ये सारे गाने की बातें गा रही थी, ये गाने भी बहुत इंटेंस गाने हैं, ये किसी कमर्शियल फिल्म के धूम धड़ाम गाने नहीं है
1: जी।
0: ये गाने बिल्कुल जज्बात में भीगे हुए गाने हैं। तो जब आप ये गाने गा रही थी, कितनी बार आंखें भीगी, कितनी बार आवाज कांपी?
1: बहुत बार। एक तो जब सिचुएशन समझाया गया कि यू नो फिल्म में ये क्यों है गाना और ये कहाँ आता है और कैसे एक पोता अपने मरते हुए दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरा कर रहा है, तो वो सिचुएशन सुन के तो हम रोने लगे। क्योंकि जब गाना सुने और जो सिचुएशन था, और इम्तियाज अली की फिल्म थी, आपने सपने देखे थे इन चीजों के और वो सच हो रहा था अभी, तो जब हम सुने तो हम रोने लगे। तो रहमान सर की जो असिस्टेंट है हीरल, उन्होंने बोला कि आपको नहीं रोना है, आपको रुलाना है लोगों को, आप नहीं रो सकती हैं। तो खैर प्रोफेशनली 20 साल से हम ये कर रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था उस दीपाली को पीछे रख के और प्रोफेशनल सिंगर को आगे लाना। मेरे पति का बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है, क्योंकि हम प्लेबैक कभी किए नहीं थे, तो उनके बनाए हुए गाने हम गाते थे उनके लिए स्टूडियो में, वो हमको सिखाते थे माइक पे कैसे गाते हैं। वो 6 साल की ट्रेनिंग भी काम आई मेरे इस काम में। और जब हम गाना सुने थे तो हमको सच में अविश्वास हो गया था अपने इस पूरे सिचुएशन पे कि रहमान सर को हम इतने काबिल लगते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं वो हमको। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है,
0: बहुत बड़ी।
1: पर मेरे अंदर खुद को ही लेके यू नो
0: संशय था,
1: हाँ, कि ये जो बात हो रही है, और आपको पता है इरशाद कामिल के बोल कैसे होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और ये गाने का रूप कुछ और था, जो अब जो आप सुन रहे हैं वो उससे काफी अलग था। ये तो इवॉल्व होता है, ये जो इनका जो क्राफ्ट है वो बिल्कुल इंसान की जैसा है। ये इवॉल्व होता है और ये अपनी शक्ल लेता है, ये बिल्कुल एक एक बच्चा पैदा करते हैं, ये जीनियसेस हैं। तो ये गाना जैसे जैसे शक्ल ले रहा था, हमको याद है कि रात के 2 बजे इरशाद सर का मैसेज आया कि ये नया लिरिक्स आया है। और जो नया लिरिक्स था वो ये था जो इस गाने में है, कि अपनी कहानी उतनी रहेगी चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो।
0: वाह वाह।
1: काजल नहीं मैं गालों का तिल हूँ, तुम सामने से शीशा हटा लो क्योंकि मैं तो मिटने वाला नहीं हूँ। ये जो बातें थी, ये जब हम पढ़े तो पता है हमको ना बहुत अपना सा लगा, ये बहुत अपना सा। ये सिर्फ एक प्रेमी की बात नहीं है, ये एक प्रकार का इंसान है, ये एक प्रकार की प्रजाति है इंसानों की, इस ब्रैकेट में हम भी आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो हमको पढ़ के ऐसा लगा कि ये तो मेरी कहानी है, तो ये तो हम गा सकते हैं। और जनरली क्या होता है, आपको अप्रोच बताया जाता है कि इस लाइन को ऐसे लेना है या ये एटीट्यूड है, पर ये कुछ जो चार ये जो पैराग्राफ था, कोई नहीं था उस रात स्टूडियो में, हम थे और एक टेक्नीशियन थे मेरे साथ, तो उन्होंने बोला आपको जैसे लेने की इच्छा है आप ले लीजिए। तो ये गाना हम जब गाए तो जाता है अप्रूवल के लिए सर के पास।
0: बिल्कुल।
1: और इंस्टेंट अप्रूवल आ गया कि बिल्कुल सही है।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: रहमान सर ने वो मेरे अंदर देखा जो हमको खुद भी नहीं पता था कि मेरे अंदर है।
0: एक तो ये गाना, फिर उसमें कुछ शोक गाने भी हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अलग अलग रेंज सामने आई।
1: बाप रे, ये एल्बम हमको लगता है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हिंदुस्तान में एक बहुत
0: कंप्लीट एल्बम,
1: कंप्लीट एल्बम है। यस।
0: तो मस्कारा भी सुना दीजिए।
1: आज हम पहली बार गाएंगे ये गाना।
0: अच्छा।
1: जिसने गाया है ये गाना वो इतनी प्यारी लड़की है, नीलांजना नाम है उसका।
0: बिल्कुल।
1: और वो बेसिस्ट है, शी इज अ बेस गिटारिस्ट।
0: उसको ये मौका दिया गया,
1: उसको ये मौका दिया गया। देखिए कितना कमाल है रहमान सर।
0: हमको तो आपकी आवाज में सुनना है।

0: मिलने में, क्योंकि हम मांग नहीं पाते हैं, ना तस्वीर मांग पाते हैं, ना बात करने का शुरुआत कर पाते हैं। तो रहमान सर जब सामने आए तो हम तो बिल्कुल ही फ्रोजन हो चुके थे उनको देख के। और तब तक ये गाना रिकॉर्ड हो चुका था, इस गाने पे काम चल रहा था। तो जब उन्होंने हमको देखा तो रहमान सर ने बोला, ए दीपाली हाय। तो मेरे लिए यही आश्चर्य की बात थी कि ये हमको बाय फेस बाय नेम हमको पहचान चुके हैं पूरी तरह से।
1: क्या
0: ये
1: बात है।
0: मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
1: बिल्कुल।
0: वो पटना वाली दीपाली ये दिन नहीं सोची थी, चाहती थी, बोला ना
1: सोची नहीं
0: सपने में
1: थी।
0: भी नहीं था कि ऐसा कुछ सच हो जाएगा, इच्छा थी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कम वॉक विद मी, मेरे साथ चलो। और हम लोग चलना शुरू किए और फिर उन्होंने बोला कि अंग्रेजी में बोला, दैट सॉन्ग हैज कम आउट रियली ब्यूटिफुल दीपाली, गुड
1: वाह
0: वर्क।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो मेरे लिए तो वो एक ऐसा सर्टिफिकेट था उस समय।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और उसके बाद हम लोग अंदर गए और वो जहां भी होते हैं एक ग्रैंड पियानो जरूर होता है, वो उसको हमेशा बजाते हैं। और उनका काफी, आई थिंक वो उससे बहुत कनेक्ट करते हैं उस काम से। और जब आप रहमान सर को पियानो बजाते देख लेंगे अगर सामने से, तो आई एम श्योर आपने देखा होगा, वो आपको कुछ दैवीय दर्शन कराता है, कुछ दैवीय देवलोक में लेके जाता है।
1: उनके
0: हम
1: लिए एक समाधि जैसा है।
0: उनके लिए समाधि है, पर उनके आसपास जो लोग खड़े हैं या बैठे हैं वो उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस है।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि जब इतना पावरफुल कुछ हो रहा होता है, अगर यहीं पे इस कमरे में अगर कोई बहुत पावरफुल इंसान आ जाए तो पूरा कमरा दमकने लगता है। वो है रहमान सर और उनके पियानो का जो साथ में प्रेजेंस है ना, वो एक बड़ा कमरा बन जाते हैं खुद,
1: वाह वाह
0: और
1: वाह
0: उसके
1: वाह।
0: अंदर सब आ जाते हैं, सब बह जाते हैं उसमें। वो पियानो बजा रहे थे, हम उनको देख रहे थे, और हम देख के सोच रहे थे कि हम सच में देख रहे हैं कि हम सपना देख रहे हैं, और हम नहीं, नींद से नहीं उठे हैं अगर ये सपना है तो, क्योंकि हम ए आर रहमान को लाइव पियानो बजाते देख रहे थे। और जब तक हम ये सोचते ही कि ये सच है कि सपना, उधर से आवाज आती है, दीपाली कम लेट्स जैम।
1: ओ हो।
0: और हम उनके पास गए, वो ऐसे ही पियानो बजा रहे थे, हम वहां खड़े हुए और हमने गाए पुराने गाने
1: क्या बात है, क्या
0: जी।
1: गाया।
0: पार्किंग लॉट सीरीज का एक बहुत मशहूर गाना है,

0: क्या बात है, कितना इंटेंस गाना है, और मुझे अच्छा लगा कि आपने यहाँ से उठाया इस गाने को।
1: हाँ, ये अच्छा एक लगा। ये मेरा स्टाइल है वैसे, किसी भी गाने को हम पता नहीं क्यों अंतरा से गाते हैं। ये क्यों है मेरे अंदर पता नहीं, क्योंकि हमको ऐसा लगता है ना कि आज मैं भी, इसलिए शायद, वेरी गुड, एक्चुअली गुड ऑब्जर्वेशन आपने बोला, तो हम ये सोचे लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत घट गया है, और गाने की खूबसूरती उसके साथ रह करके आगे बढ़ने में है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल।
1: लेकिन अब आजकल लोगों को हुक करना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, मछली के यू नो कांटे जैसा जाल फेंकना पड़ता है, और ये जो अंतरे हैं ना इन गानों के,
0: असली रूह इनमें
1: है, तो मछली पकड़ना है तो सही दाना डालना पड़ेगा।
0: क्या बात है।
1: तो हम ये नोटिस किए कि जब भी हम अंतरा से गाना शुरू करते थे, वो गाने का व्यूज बहुत बढ़ जाता था, और उस समय 5 मिलियन स्पॉटिफाई व्यूज नहीं थे मेरे पास। उस समय 500 व्यूज से 5000 हो जाते थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो आई रियलाइज्ड कि जब भी हम किसी गाने को अंतरा से शुरू करते हैं, क्योंकि अंतरे में ही बात है, अंतरे में ही सारे एहसास है, मुखड़ा तो रिपीट होता है।
0: और ये तो रहमान के साथ गाने वाला एक्सपीरियंस है, क्या बात है,
1: वो लोग अटकते हैं इसमें।
0: क्या बात है। एक गाना
1: जी
0: जिसके जादू में पूरी दुनिया गिरफ्तार है
1: जी,
0: इस कामयाबी ने दीपाली को क्या सिखाया है, और दीपाली कैसा महसूस कर रही है?
1: सिखाया ये है कि अपने आप को यही बोलो कि इस दुनिया में कुछ भी संभव है।
0: वाह,
1: कुछ भी हो सकता है। अपने आप को यहां तक बोल दो कि जो चीज हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं, वो भी हो सकता है, क्योंकि यही मेरी सच्चाई है। तो दीपाली ने सीख लिया है ये।
0: क्या बात है,
1: अब मेरे सपनों की भी कोई सीमा नहीं है।
0: बहुत ही सही, बहुत ही सही। दीपाली, इतनी सारी बातें की, हमने ऐश्वर्या की बात नहीं की। तो चलते चलते उनकी बातें की जाएं, किस तरह से मुलाकात हुई थी और कैसे वो आपकी जिंदगी में आए।
1: ऐश्वर्या से मेरी मुलाकात एक स्टेज शो के ही दौरान हुई थी। और कमाल की बात यह है कि हम लोग इतने सालों से, 2006 में ऐश्वर्या ने एक रियलिटी शो जीता था, वो बिहार से पहले थे, और हमको याद है 2005 में जब इस कार्यक्रम का ऑडिशन चल रहा था, उस लाइन में मेरे पीछे ऐश्वर्या भी खड़े थे।
0: अच्छा?
1: हम भी ऑडिशन देने गए थे। ऐश्वर्या को ये याद नहीं है, पर ऐश्वर्या का अगर आप उनसे मिलेंगे तो वो 6 फीट के बाहुबली है। बहुत बहुत भारी भरकम इंसान है वो। तो वो आप उनको बोले ना, एक पर्सनालिटी होती है जो आप देखते हैं तो याद रह जाती है। तो मेरे लाइन में मेरे पीछे वो इंसान था। तब हम नहीं जानते थे कि ये मेरा फ्यूचर पति होने वाला है। पर फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई 2018 में एक स्टेज शो के दौरान,
0: मतलब बरसों बाद
1: 2005 में हम उनको देखे थे, 2006 में पूरा बिहार उनके लिए वोट कर रहा था, क्योंकि वो उस रियलिटी शो के विनर थे। और 2006 में जब ऐश्वर्या को हार्ड मांस में देखने के बाद, जब उन्होंने शो जीत लिया, हम बिहार से दूसरे इंसान और पहली लड़की थे जिसने रियलिटी शो में एक जगह बनाई थी। वो हिम्मत हमको ऐश्वर्या से ही आई थी, नॉट द हस्बैंड ऐश्वर्या टुडे, द कंटेस्टेंट ऐश्वर्या, जो मेरे साथ लाइन में खड़ा था, एक आम सा लड़का। वो भी गया था, हम भी गए थे, पर वो जीत गया उस शो को। तो अगर वो जीत सकता है तो हम क्यों नहीं, हम क्यों नहीं वहां पहुंच सकते हैं। जीतने की सोच नहीं थी मेरे अंदर, क्योंकि हम लड़की थे इसलिए हम नहीं जीत सकते थे, मेरे दिमाग में गलत सोच है ये, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर वो ही मेरा उस समय का यथार्थ था। तो ऐश्वर्या की वजह से हमको बहुत मोटिवेशन मिला लाइफ में कि हम भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान बिहार के मुजफ्फरपुर के छोटे से जगह से अगर निकल के ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। और जब हम ऐश्वर्या से मिले तो 2018 में, तो हम उनको ये बात बताए भी कि यू नो यू हैव बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर मी टू गो टू मुंबई, क्योंकि हमको लगा कि अगर तुम कर सकते हो तो हम भी कर सकते हैं। और क्योंकि ऐश्वर्या का वैसे तो सबसे मशहूर गाना है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, और ऐसे कई सारे गाने हैं, पर ऐश्वर्या भी रफी साहब भक्त हैं।
0: वाह वाह वाह,
1: रफी भक्त हैं।
0: लेकिन ये मजेदार बात है कि एक रफी भक्त, एक किशोर भक्त।
1: हाँ, ये
0: किशोर प्लस गुलजार भक्त,
1: करेक्ट। ये एक डेडली कॉम्बिनेशन है, ये घर में मुद्दा है हमारे लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और मजेदार बात ये है कि किशोर कुमार रफी साहब को बहुत पसंद करते थे,
1: बहुत,
0: है ना, अपने घर में उनकी तस्वीर लगा रखी थी।
1: तो बस समझ लीजिए कि हम लोग भी वही है, हम किशोर कुमार का ही छोटा रूप है और रफी साहब का ही छोटा रूप है। हम लोग एक दूसरे से वैसे ही प्यार करते हैं। और ऐश्वर्या एक बहुत ही गुणी कलाकार है, बहुत समझदार कलाकार हैं, और मर्दों में जो मिसिंग है यू नो जिसको हम लोग कहते हैं कि मर्द बहुत दिमाग से सोचते हैं, बहुत कठोर होते हैं, ऐश्वर्य वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अगर ये कहें कि उसके अंदर की जो स्त्री है, हर इंसान के अंदर मर्द और औरत दोनों होता है, लेकिन जिस जेंडर में आप पैदा होते हैं, आप नेचुरली समाज की वजह से आप उस जेंडर को ज्यादा तूल देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं और आप ज्यादा उनके जैसा बन जाते हैं। ऐसे समाज में जहां एक मर्द प्रधान, पुरुष प्रधान समाज में एक ऐसा लड़का पैदा होता है जिसके अंदर की औरत जीवित है,
0: वाह वाह वाह,
1: ये बहुत कमाल की बात है। वो उतना ही मर्द है जितना वो औरत है, वो उतना ही कठोर है जितना वो मुलायम है।
0: वाह,
1: ये बहुत खूबसूरत, और शायद यही वजह है कि वो वैसा कलाकार है जैसा वो है, क्योंकि मेरे घर में मर्द का डेफिनेशन ही कुछ और था। मेरे घर में पुलिस वाले हैं, मेरे घर वाले पापा मम्मी पापा माँ पूरी औरत है, पिताजी पूरे मर्द हैं। पर ऐश्वर्य से मिल के समझ आया कि पूर्ण तो वही है जिसके अंदर दोनों है,
0: बिल्कुल,
1: और पूर्णता से है,
0: बिल्कुल।
1: तो बहुत मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपोर्ट आज के डेट में वो है ऐश्वर्य निगम,
0: वो
1: जो सिर्फ मेरे साथी ही नहीं है, हमको सिखाए भी हैं। माइक पे गाना एक कला है और उनके पास एक्सपीरियंस है, बहुत पहले वो प्लेबैक सिंगर बन गए थे, तो ये मेरा सौभाग्य है कि हम उनकी पत्नी बने। तो शायद यू नो रहमान सर तक पहुंचने का ये सारा जो रास्ता था, गुरुजी से ऐश्वर्य जी से भी मिलना इसी में लिखा था।
0: उनके लिए कुछ गाने को बोलूं तो
1: हाँ।

0: क्या बात है, मुझे पार्किंग लॉट सीरीज याद आ
1: गया। यस, ये पार्किंग लॉट सीरीज में था,
0: ये बहुत चला था क्योंकि उस वक्त बिल्कुल सुंदर गाना आर डी बर्मन
1: जी,
0: और इस गाने का जो पूरा चलन है, जो इसकी धुन है, जो बनावट है, अनमोल है। ये गाना सुनते हैं।

0: दीपाली, बहुत प्यारी बातें आपके साथ हुई और कुछ बातचीत ऐसी होती हैं कि ये लगता है कि इन बातों का सिलसिला कहीं तो खत्म ना हो, लेकिन कहीं तो खत्म करना पड़ेगा।
1: जी
0: बहुत शुक्रिया हम तक आने के लिए और इस पूरी यात्रा को हमारे साथ शेयर करने के लिए। हम ये कहेंगे कि विविध भारती में आप आती रहें
1: जी
0: और यहाँ हमारे साथ बातें करती रहें। बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद यूनुस जी। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हम पिछले 20 साल से इस प्रोफेशन में हैं, पर मेरी मुलाकात आज तक किसी आपके जैसे इंसान से नहीं हुई। हमको बहुत लोगों ने इंटरव्यू किया है सर, पर ऐसा हम कभी नहीं महसूस किए। इम्तियाज सर और रहमान सर से मिलके हमसे किसी ने पूछा कि आपने क्या सीखा, तो उनकी कला सीखने की तो मेरी औकात नहीं है, पर उनके सानिध्य में एक चीज हम जरूर सीखे कि जब वो किसी के साथ होते हैं तो वो उस इंसान के साथ पूर्णतः होते हैं। चाहे वो 100 की भीड़ में भी क्यों ना खड़े हों, वो अगर 15 सेकंड के लिए भी किसी की तरफ पलटते हैं तो वो 15 सेकंड उस इंसान के और उनके बीच कोई नहीं होता है। आप वो इंसान हैं, आप जो मेरे साथ थे, आप मेरे साथ पूर्णतः रहे, और वो आपकी खूबसूरती है कि इस तरीके से हम बात कर पाए। इस तरह से मेरे अंदर से चीजें सिर्फ मेरे पति ने निकलवाया है, मेरी बहन ने निकलवाया है, मेरे माँ बाप ने निकलवाया है, जिस तरह से आपने मेरे अंदर से वो चीजें निकलवाई हैं, आप कमाल हैं सर।
0: बहुत शुक्रिया दीपाली, बहुत शुक्रिया।
1: अमेजिंग।
0: थैंक यू।
2: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जानी मानी गायिका दीपाली सहाय से यूनुस खान की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में संपादन सहयोग प्रभा भटनागर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आप हमें FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी अदिति निगम। श्रोताओं, शाम के 5 बज गए हैं और अब वक्त है आपके लोकप्रिय कार्यक्रम युववाणी का, जहाँ गूंजती है युवा मन की बात और युवा प्रतिभाओं की सौगात। तो शामिल हो जाइए हमारे इस सफर में।

0: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी उज्जैन से आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो युववाणी। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त कीर्ति।
1: और मैं हूं रचना। नमस्कार
0: सर रचना, आज का हमारा ये एपिसोड सिर्फ एक रेडियो का टॉक शो नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीवन रक्षक संदेश है जो अगर किसी समय पर, सही समय पर किसी के काम आ जाए तो किसी की थमती हुई सांसों को फिर से तरोताज़ा कर सकता है, किसी के घर का चिराग बुझने से बचा सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कीर्ति। आज हम बात कर रहे हैं विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के बारे में। हर साल सितंबर महीने के दूसरे शनिवार को पूरी दुनिया में यह दिन मनाया जाता है ताकि लोगों में आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके।
0: बिल्कुल, और रचना इस साल का हमारा ये विशेष प्रसारण केंद्रित है एक बेहद प्रेरणादायक और ऊर्जावान थीम पर, सशक्त युवा सुरक्षित समाज, एक कदम मदद की ओर। और इसकी जो खूबसूरत टैगलाइन है वो कुछ इस तरह है कि सही समय पर सही मदद बन सकती है किसी की बड़ी उम्मीद।
1: क्या बात है कीर्ति, कितनी सटीक और गहरी बात कही है। जब भी सड़कों पर, घर में, कॉलेज में या कार्यस्थल पर कोई दुर्घटना होती है तो डॉक्टर या एम्बुलेंस के पहुँचने से पहले के जो शुरुआती 10 से 15 मिनट होते हैं उन्हें चिकित्सा विज्ञान में गोल्डन आवर कहा जाता है। उस वक्त अगर आसपास मौजूद इंसान को सही फर्स्ट एड की जानकारी हो तो 80% मामलों में मरीज की जान बचाई जा सकती है।
0: बिल्कुल रचना, और हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत पता है क्या है? ये कि हमारे देश की 65% से अधिक आबादी युवा है। अगर हमारा युवा सशक्त होगा, जागरूक होगा और प्राथमिक चिकित्सा की सही तकनीकों से अवगत होगा तभी तो एक सुरक्षित और संवेदनशील समाज का निर्माण संभव हो पाएगा। क्यों?
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कीर्ति। तो दोस्तों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको सिर्फ किताबी बातें नहीं बताएंगे बल्कि दैनिक जीवन में काम आने वाली प्रामाणिक वैज्ञानिक और डॉक्टरी दृष्टि से प्रामाणिक जानकारी देंगे। आज हम जानेंगे बेसिक CPR क्या है, जलने पर क्या करना चाहिए, मिर्गिया दौरे के समय कौन कौन सी पुरानी गलतफहमियों से बचना चाहिए और भारत सरकार के गुड समैरिटन लॉ यानी अच्छे मददगार कानून के तहत

0: मिलने वाली कानूनी सुरक्षा के बारे में।
1: बिल्कुल, ताकि आप या आपका कोई भी साथी दुर्घटना के वक्त कानूनी झंझटों से डरे बिना बेझिझक किसी की मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा सके। इसके अलावा हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड यानी कि मानसिक प्राथमिक चिकित्सा पर भी।
0: तो चलिए इस ज्ञानवर्धक और जीवनदायी सफर की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही सुंदर गीत फिल्म लोफर से, जिसका संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने। वैसे रचना, जब भी हमारे सामने कोई इमरजेंसी आती है, जैसे कि अचानक सड़क पर किसी गाड़ी का टकरा जाना, या फिर किसी का चक्कर खाकर गिर पड़ना, या फिर रसोई में हाथ कट जाना, तो आम तौर पर इंसान का पहला रिएक्शन क्या होता है?
1: पैनिक, यानी घबराहट और डर। लोग चिल्लाने लगते हैं, भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता कि आखिर करना क्या है, और इसी अफरा तफरी में बेशकीमती मिनट बीत जाते हैं।
0: बिल्कुल, यही सबसे बड़ी चुनौती है रचना। फर्स्ट एड का सबसे पहला नियम कोई दवाई या पट्टी बांधना नहीं है, बल्कि खुद को शांत रखना और प्रेजेंस ऑफ माइंड बनाए रखना है। अगर आप खुद शांत रहोगे, तभी आप पीड़ित को संभाल पाएंगे और सही कदम उठा पाएंगे।
1: बिल्कुल कीर्ति, फर्स्ट एड का सीधा सा अर्थ है किसी भी बीमार या घायल व्यक्ति को डॉक्टर या पेशेवर मेडिकल हेल्प मिलने तक दी जाने वाली तत्काल और अस्थायी सहायता। इसके मुख्य रूप से तीन उद्देश्य होते हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में 3 PS कहा जाता है।
0: इसमें पहले आता है प्रिजर्व लाइफ, यानी कि जीवन की रक्षा करना। किसी भी परिस्थिति में मरीज की सांसें और धड़कन बनाए रखना सबसे प्राथमिक लक्ष्य होता है।
1: दूसरा आता है प्रेवेंट वर्सनिंग, स्थिति को बिगड़ने से रोकना, खून के बहाव को रोकना, इन्फेक्शन से बचाना और घाव को गंभीर होने से रोकना।
0: और दोस्तों, तीसरा है प्रमोट रिकवरी, यानी कि स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना। मरीज को ढांढस बढ़ाना और सुरक्षित तरीके से अस्पताल तक पहुंचाने का प्रबंध करना। वैसे 3 P's का ये नियम तो हर युवा को याद रखना चाहिए दोस्तों। चलिए, अब हमारे श्रोताओं को बेसिक फर्स्ट एड के कुछ बेहद ज़रूरी प्रैक्टिकल स्टेप्स समझाते हैं, पर उससे पहले क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना है बहुत ही खूबसूरत सा गीत फिल्म गरम मसाला से, जिसे अपने दिलकश आवाज दी थी सोनू निगम, उदित नारायण ने, गीतकार थे मयूर पुरी और संगीत था प्रीतम का।
1: तो श्रोताओं, गीत के उस पार हम बात कर रहे थे बेसिक फर्स्ट एड के कुछ बेहद प्रैक्टिकल स्टेप्स की, जो किसी भी इमरजेंसी में जीवन रक्षक साबित होते हैं। वैसे रचना इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है DRABC प्रोटोकॉल।
0: हाँ कीर्ति, DRABC आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानक है।
1: से रचना इसे अगर हम आसान भाषा में समझे तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं DRABC में से डी। डी यानी कि डेंजर, खतरा देखें। सबसे पहले दोस्तों ये सुनिश्चित करें कि जहां दुर्घटना हुई है वह जगह आपके और पीड़ित के लिए सुरक्षित है या फिर नहीं। जैसे कि अगर सड़क पर बीच में हादसा हुआ है या फिर बिजली का तार फैला है, तो पहले खुद को और फिर मरीज को सुरक्षित स्थान पर लाएं।
0: आर यानी रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया जांचें। पीड़ित के कंधों को हल्के से थपथपाएं और जोर से पूछें, क्या आप ठीक हैं? अगर कोई हलचल या आवाज़ नहीं है तो तुरंत मदद के लिए आवाज़ लगाएं।
1: बिल्कुल। अब हम आते हैं ए यानी कि एयरवे पर, सांस की नली खोलें। पीड़ित के माथे पर हाथ रखकर सर को थोड़ा पीछे झुकाएं और चिन को ऊपर उठाएं ताकि सांस की नली खुल सके।
0: बी यानी ब्रीथिंग, अपने कान को मरीज के मुंह के पास ले जाए, चेस्ट की हलचल देखिए और 10 सेकंड तक सांस महसूस करें।
1: सी यानी कि सर्कुलेशन, अगर सांस नहीं चल रही है या फिर पल्स गायब है तो बिना एक सेकंड गवाए CPR शुरू करें।
0: कीर्ति, तुमने CPR का जिक्र किया, यह एक ऐसी जादुई तकनीक है जो दिल का दौरा पड़ने पर इंसान को मौत के मुंह से वापस खींच लाती है। अगर हमारे युवा CPR देने से झिझकते हैं, अक्सर देखा जाता है, क्योंकि उन्हें सही तरीका नहीं पता होता। ऐसे में जरूरी है कि हमें इसकी सही विधि पता हो।
1: बिल्कुल रचना, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले सुन लेते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: थे अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत दिया था प्रीतम ने।
1: दोस्तों, हम गाने के उस पर बात कर रहे थे सीपीआर देने के तरीके बारे में। ये बहुत ही वैज्ञानिक है पर आसान है। हैंड्स ऑनली सीपीआर देने की सटीक और प्रामाणिक विधि है कि मरीज को किसी सख्त और समतल सतह पर पीठ के बल सीधा लेटाएं। अपनी एक हथेली को मरीज के चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच यानी कि हृदय के ऊपर ब्रेस्ट बोन पर रखें। दूसरी हथेली को पहली हथेली के ऊपर रखें और अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लें यानी कि इंटरलॉक कर लें। अपनी कोहनियों को बिल्कुल सीधा रखें और अपने कंधों का भार मरीज की चेस्ट पर लाएं। चेस्ट को 2 इंच यानी कि लगभग 5 सेंटीमीटर नीचे दबाएं और तेज़ी से दबाकर छोड़ें। इसकी रफ्तार दोस्तों ध्यान रखें 1 मिनट में 100 से 120 बार दबाने की गति होनी चाहिए। हर 30 बार चेस्ट दबाने यानी कंप्रेशंस के बाद 2 बार माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दें। अगर मुंह से सांस देने में संकोच हो तो केवल चेस्ट दबाना यानी कि हैंड्स ओनली सीपीआर भी जारी रख सकते हैं दोस्तों।
0: वाह कीर्ति, यह जानकारी वास्तव में किसी की जान बचा सकती है
1: और हर व्यक्ति को इसका सही तरीका पता होना भी बेहद जरूरी है।
0: बिल्कुल। अब बात करते हैं एक और आम दुर्घटना की, अत्यधिक रक्तस्राव। कीर्ति, अगर किसी एक्सीडेंट में शरीर से बहुत तेजी से खून बह रहा हो तो क्या करना चाहिए?
1: हाँ बिल्कुल, खून का ज़्यादा बहना मौत का एक मुख्य कारण बनता है दोस्तों। इसके लिए सबसे पहला और कारगर तरीका है डायरेक्ट प्रेशर। किसी साफ कपड़े, गौस पैड या रुमाल से घाव के ऊपर सीधे हाथ से तेज दबाव बनाएं। अगर कपड़ा खून से भीग भी जाए तो उसे हटाए नहीं बल्कि उसके ऊपर दूसरा साफ कपड़ा रखकर दबाव बनाए रखें। यदि चोट हाथ या फिर पैर में है और कोई हड्डी नहीं टूटी है तो घाव वाले हिस्से को मरीज के दिल के स्तर से थोड़ा ऊपर उठा दें यानी कि एलिवेट कर दें। इससे रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है और खून बहना फिर भी ना रुके तो घाव से थोड़ा ऊपर टोनिकेट या फिर पट्टी मजबूती के से बांधें और तुरंत अस्पताल ले जाएं।
0: और एक और चीज़ कीर्ति, कई बार खाना खाते समय या बच्चों के खेलते समय गले में कुछ अटक सा जाता है जिसे चॉकिंग या दम घुटना कहते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान न बोल पाता है और न सांस ले पाता है, उसके लिए क्या तरीका है?
1: इसके लिए दुनिया भर में स्वीकृत एक बहुत ही असरदार तकनीक है जिसे हेमलिच मैनूवर कहा जाता है। पीड़ित व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाए और अपनी बाहों को उसकी कमर की चारों ओर लपेटें। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाएं और मुट्ठी के अंगूठे वाले हिस्से को पीड़ित की नाभि के ठीक ऊपर और पसलियों के नीचे रखें। दूसरी हथेली से अपनी मुट्ठी को पकड़ें और अंदर तथा ऊपर की ओर तेजी से झटका दें। ऐसा तब तक बार बार दोहराएं दोस्तों जब तक कि गले में फंसी चीज बाहर ना निकल आए या व्यक्ति खांसने ना लगे।
0: वाह, कितना आसान और कितना सटीक था। तो दोस्तों, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना और इन बेसिक फर्स्ट एड स्टेप्स को जानना ही एक जागरूक युवा की पहचान है। चलिए अब लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक और इसके बाद लौटेंगे बेहद दिलचस्प विषय के साथ जिसमें हम तोड़ेंगे फर्स्ट एड से जुड़ी सदियों पुरानी भ्रांतियों और मिथकों को। तब तक के लिए इंजॉय कीजिए यह गीत।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस
3: बस
2: समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: दोस्तों, अभी आपने सुना सैयद असरार शाह की आवाज़ में फिल्म फैंटम से ये गीत, जिसका संगीत दिया था प्रीतम ने और बोल लिखे थे अमिताभ भट्टाचार्य ने।
1: दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं अब एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के घरों में रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलता है। हमारे समाज में प्राथमिक चिकित्सा को लेकर जितनी जानकारी है उससे कहीं ज्यादा अधकचरी जानकारियां और भ्रांतियां फैली हुई है।
0: बिल्कुल सही कहा रचना। वो अंग्रेज़ी में एक कहावत तो काफ़ी मशहूर है, सुनी होगी, कि अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, यानी कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। और जब बात मेडिकल इमरजेंसी की हो तो गलत तरीके से दी गई मदद मरीज़ के लिए जानलेवा साबित हो सकती है।
1: बिल्कुल सही कहा कीर्ति। तो चलिए आज हम एक एक करके उन तमाम भ्रांतियों का पर्दाफाश करते हैं और हमारे श्रोताओं को डॉक्टरी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित फैक्ट्स बताते हैं।
0: बिल्कुल, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसे आम भ्रांति, जलने पर तुरंत टूथपेस्ट, बटर, देसी घी या फिर बर्फ लगा लेना। रचना, मैंने काफ़ी बार देखा है कि रसोई में हाथ जलते ही लोग भागे भागे जाकर टूथपेस्ट उथलाते हैं या घर का घी लगा लेते हैं, क्या ये सही है?
1: बिल्कुल गलत कीर्ति, यह एक ऐसी बहुत ही घातक भ्रांति है। आइए इसे समझते हैं क्यों। जब त्वचा जलती है तो त्वचा के अंदर गर्मी ट्रैप हो जाती है। टूथपेस्ट, मक्खन या ग्रीस जैसी भारी चीज़ें त्वचा के पोर्स को बंद कर देती है, जिससे अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती और टिश्यू गहराई तक जलने लगते हैं। इसके अलावा टूथपेस्ट में मौजूद केमिकल्स घाव में गंभीर इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं। बर्फ लगाने से भी आइसबर्न हो जाता है, जिससे त्वचा की कोशिकाएं मर जाती है।

0: बाप रे, ये बहुत ही अच्छी जानकारी दी रचना आपने। तो फिर जलने पर सही डॉक्टरी तरीका क्या है?
1: जलने पर केवल एक ही सबसे सही और वैज्ञानिक तरीका है, कूल रनिंग वाटर, बहता हुआ ठंडा पानी। जले हुए स्थान पर तुरंत नल का बहता हुआ सामान्य पानी, न ज़्यादा ठंडा न बर्फ, कम से कम 10 से 20 मिनट तक लगातार डालें। पानी डालने से त्वचा के अंदर की गर्मी बाहर निकलती है और जलन कम होती है। जली हुई जगह से अंगूठी, घड़ी या टाइट कपड़े तुरंत हटा दें, क्योंकि सूजन आने पर इन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद घाव को किसी साफ सूखे सूती कपड़े या स्टरलाइज गौज से ढीला ढकें। कोई भी मलहम बिना डॉक्टर की सलाह के न लगाएं।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी थी। अब हम आते हैं दूसरी सबसे बड़ी और ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में फैली अंधविश्वास पर। वो है कि मिर्गी का दौरा यानी कि एपिलेप्टिक सीजर या फिर फिट्स जिसे हम कहते हैं, आने पर मरीज को चमड़े का जूता, प्याज या फिर गंदी चप्पल सुंघाना।
1: कीर्ति, यह एक ऐसा अंधविश्वास है जिसे हमने फिल्मों में और असल ज़िंदगी में न जाने कितनी बार देखा है, लेकिन सच यह है कि जूता या प्याज सुंघाने का मिर्गी के दौरे को ठीक करने से 0.01% भी कोई वैज्ञानिक संबंध नहीं है।
0: अच्छा, तो फिर लोग ऐसा क्यों मानते हैं रचना, और दौरे के वक्त असल में दिमाग में क्या हो रहा होता है?
1: देखो, मिर्गी का दौरा दिमाग के न्यूरॉन्स में अचानक होने वाली अत्यधिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण आता है। यह दौरा आमतौर पर 1 से 3 मिनट में अपने आप बंद हो जाता है। जब तक लोग जूता ढूंढकर लाते हैं और सुंघाते हैं, तब तक दौरा अपने स्वाभाविक समय पर ख़त्म हो रहा होता है और लोग सोचते हैं कि जूते की वजह से होश आ गया।
0: बिल्कुल, और जूता सुंघाने के चक्कर में उल्टा मरीज की सांस रुकने या फिर इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। कई लोग तो दौरे के समय मरीज के मुंह में ज़बरदस्ती चम्मच, कपड़े का गोला या फिर उंगली डाल देते हैं कि कहीं वो अपनी जीभ ना काट ले।
1: बिल्कुल, जो कि बेहद खतरनाक है। मुंह में कुछ भी डालने से दांत टूट सकते हैं, फ्रैक्चर हो सकता है या मरीज का दम भी घुट सकता है।
0: बिल्कुल, और रचना, हमारे श्रोताओं को बताओ कि मिर्गी या फिर दौरे के समय वास्तव में क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो शांत रहे, मरीज को देखकर घबराए नहीं। इसके बाद मरीज के आसपास की नुकीली, सख्त या खतरनाक वस्तुओं को तुरंत हटा दे ताकि झटके से उन्हें चोट न लगे। फिर करवट दिलाएं, मरीज को धीरे से एक तरफ करवट करके लिटा दें। इससे उनके मुंह की लार या उल्टी बाहर निकल जाएगी और सांस की नली बंद नहीं होगी। उसके बाद सिर के नीचे कोई नरम कपड़ा या तकिया रख दे ताकि सिर जमीन पर न टकराए। फिर कपड़े ढीले करें, गले का बटन, टाई या चश्मा तुरंत हटा दे।
0: ये तो रचना तुमने क्या करना है ये हमें बता दिया, बताओ कि क्या नहीं करना चाहिए?
1: कीर्ति, मरीज को कसकर पकड़ने या उनके झटकों को रोकने की कोशिश बिल्कुल न करें। मुंह में कुछ भी न खिलाए न डाले। दौरा बंद होने के बाद मरीज को शांत वातावरण में आराम करने दें और ज़रूरत हो तो डॉक्टर से संपर्क करें।
0: कितना वैज्ञानिक और सरल तरीका है रचना। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये डूज और डोंट्स याद रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम सुनते हैं हमारी महफिल का आज का अगला गीत।

0: अभी आपने सुना अरिजीत सिंह की आवाज़ में बहुत ही सुंदर गीत फिल्म एनिमल से, जिसके बोल लिखे थे सिद्धार्थ गरिमा ने और संगीत तैयार किया था श्रेयस पुराणिक ने। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं एक और मिथक की, सांप काटने पर जहर को मुंह से चूस कर बाहर निकालना या घाव पर गहरा चीरा लगाना।
1: ओ कीर्ति, यह तो हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों का सबसे पसंदीदा सीन रहा है, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार मुंह से जहर चूसना मदद करने वाले व्यक्ति के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। अगर मदद करने वाले के मुंह में कोई छोटा सा घाव, छाला या कैविटी हुई तो जहर सीधे उसकी रक्त वाहिकाओं में प्रवेश कर जाएगा।
0: बिल्कुल, और घाव पर चीरा लगाने से अत्यधिक खून बहने और इन्फेक्शन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो फिर सर्पदंश यानी कि स्नैक बाइट का सही तरीका क्या है रचना?
1: देखो कीर्ति, सर्पदंश का केवल एक ही मंत्र है, मरीज को शांत रखना और अंग को स्थिर रखना। मरीज को घबराने ना दे, क्योंकि घबराहट से दिल की धड़कन तेज होती है और जहर पूरे शरीर में तेजी से फैलता है। जिसके अंग में सांप ने काटा है उसे बिल्कुल हिलने डुलने ना दे और उस पर स्प्रिंट बांध कर उसे स्थिर कर दे। घाव को साफ पानी से धोए लेकिन उसे कसकर न बांधे, तंग पट्टी से गैंग्रीन होने का खतरा रहता है।
0: इसके साथ ही झाड़ फूक या फिर ओझा के चक्कर में समय बर्बाद किए बिना मरीज को सीधे नज़दीकी सरकारी अस्पताल ले जाएं, जहां पर एंटी वेनम इंजेक्शन उपलब्ध हो। और रचना, हमने अक्सर देखा है कि सड़क पर कोई गंभीर हादसा होता है या फिर घायल व्यक्ति खून से लथपथ तड़प रहा होता है, लेकिन राहगीर केवल खड़े होकर तमाशा देखते हैं या फिर मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं, मदद के लिए कोई हाथ आगे नहीं बढ़ता। ऐसा क्यों होता है रचना?
1: कीर्ति, इसका सबसे बड़ा कारण नद्यता नहीं है बल्कि डर है। डर पुलिस या पूछताछ का, डर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने का, डर अस्पताल में पैसे जमा करवाने का और गवाही के झंझट में फंसने का। लोगों के मन में अक्सर यह खौफ बैठा हुआ है कि अगर वे किसी घायल को अस्पताल ले गए तो पुलिस उन्हीं को आरोपी बना देगी।
0: और इसी डर को ख़त्म करने के लिए भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बेहद क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कानून बनाया है दोस्तों, जिसे गुड सैमरिटन लॉ यानी कि अच्छे मददगार का कानून कहते हैं।
1: जी हाँ, हमारे देश के प्रत्येक युवा और नागरिक को इस कानून के अधिकारों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है।
0: दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये गुड सैमरिटन लॉ है क्या, हम जानेंगे विस्तार में लेकिन गाने के उस पार, तो बने रहिए हमारे साथ।

0: आप सुन रहे थे यह बेहद ही खूबसूरत सा गीत फिल्म दिल एक मंदिर से लता मंगेशकर की आवाज़ में, जिसके गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत था शंकर जयकिशन का।
1: दोस्तों, गीत के उस पार हम बात कर रहे थे गुड सैमरिटन लॉ के बारे में। आइए विस्तार से बताते हैं कि आखिर गुड सैमरिटन लॉ के तहत एक मददगार को क्या क्या कानूनी अधिकार और सुरक्षा मिली हुई है।
0: इसमें सबसे पहले आता है पहचान उजागर करने की बाध्यता नहीं। यदि आप किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हैं दोस्तों, तो अस्पताल प्रशासन या पुलिस आपसे आपका नाम, पता या फ़ोन नंबर देने के लिए दबाव नहीं बना सकती। आपकी इच्छा हो तो नाम बताइए, अन्यथा आप अज्ञात मददगार के रूप में भी जा सकते हैं।
1: और फिर अस्पताल में तुरंत इलाज। कोई भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल घायल व्यक्ति के इलाज में देरी नहीं कर सकता। वे आपसे पहले पैसे जमा करने या फिर FIR की कॉपी लाने की शर्त नहीं रख सकते।
0: तीसरा आता है पुलिस पूछताछ के सख्त नियम। पुलिस किसी भी मददगार को पूछताछ के नाम पर थाने नहीं बुला सकती और ना ही परेशान कर सकती है। यदि पुलिस को कोई बयान चाहिए भी, तो वह मददगार की सुविधा के अनुसार उनके घर या इच्छित स्थान पर जाकर एक बार मिलेंगी।
1: और फिर आता है अदालती गवाही से छूट। मददगार को बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वह गवाही देना चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस या फिर एफिडेविट के जरिए गवाही दर्ज करा सकता है।
0: तीसरा है पुरस्कार व सम्मान। केंद्र और राज्य सरकारें जैसे सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ऐसे नेक दिल मददगारों को गुड सैमरिटन अवार्ड और आर्थिक प्रोत्साहन राशि से भी सम्मानित करती है।
1: वाह, कितना शानदार और सुरक्षात्मक कानून है ना रचना। यानी अब किसी भी नागरिक को पुलिस या कानूनी चक्करों से डरने की

0: यह थी संवेदनशील विषय पर, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड यानी कि PFA। जब कोई भयानक हादसा होता है तो केवल शारीरिक चोटें ही नहीं लगती, बल्कि इंसान मानसिक रूप से भी गहरे सदमे में और पैनिक अटैक में चला जाता है।
1: सही कहा कीर्ति, कई बार घायल व्यक्ति या उसके परिजन इतने डरे हुए होते हैं कि वे अत्यधिक कांपने लगते हैं, रोने लगते हैं या सन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में केवल शारीरिक घाव पर पट्टी बांधना काफी नहीं होता, बल्कि उन्हें मानसिक संबल देना भी उतना ही जरूरी होता है।
0: तो दोस्तों, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देने का सही तरीका क्या है? रचना, हमें हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: देखिए, इसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा अनुशंसित 3 मुख्य सिद्धांत है, लुक, लिसन एंड लिंक, देखे, सुने और जोड़े। इसमें पहला आता है लुक। आसपास का माहौल जांचे, देखे कि कौन अत्यधिक सदमे में है, किसे तुरंत मानसिक और शारीरिक मदद की जरूरत है। फिर सुने, पीड़ित के पास बैठे, उनकी बात ध्यान से सुने और बिना किसी आलोचना के सुने। उन्हें रोने या अपने डर को बाहर निकलने दे। उनसे कहे, शांत रहिए, आप अब सुरक्षित हैं, हम आपके साथ हैं। यह वाक्य जादू की तरह काम करता है कीर्ति। और फिर जोड़े, उन्हें उनके परिजनों से संपर्क कराएं, उन्हें बुनियादी ज़रूरतें, पानी, कंबल उपलब्ध कराएं और पेशेवर मेडिकल या काउंसलिंग हेल्प से जोड़ें।
0: और रचना, अगर किसी को पैनिक अटैक आ रहा हो, सांस तेज़ी से फूल रही हो, तो उन्हें 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक या फिर बॉक्स ब्रीडिंग करवाई जा सकती है।
1: जी हाँ, उन्हें कहें कि वे लंबी सांस लें और अपने आसपास देखें। 5 चीज़ें जो वे देख सकते हैं, 4 चीज़ें जिन्हें छू सकते हैं, 3 आवाज़ें जो सुन सकते हैं, 2 चीज़ें जिन्हें सूंघ सकते हैं और एक चीज़ जिसका स्वाद महसूस कर सकते हैं। इससे उनका ध्यान पैनिक से हटकर वर्तमान माहौल में वापस लौट आता है।
0: कितना अद्भुत और व्यवहारिक तरीका है ना रचना। तो दोस्तों, शारीरिक फर्स्ट एड के साथ साथ किसी टूटते हुए इंसान को मानसिक संबल देना भी उतना ही बड़ा धर्म है।
1: तो चलिए, अब समय है एक और छोटे से खूबसूरत म्यूजिकल ब्रेक का, जिसके बाद हम लौटेंगे अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा कॉल टू एक्शन पर। उससे पहले एंजॉय कीजिए ये प्यारा सा गीत।

आपने सुना यह खूबसूरत सा गीत फिल्म कलयुग से राहत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में, जिसके गीतकार थे सईद कादरी और संगीत था रोहेल।

0: मालका।
1: अब दोस्तों वक्त है हमारे रोजगार अपडेट का, जहां हम आपको बताएंगे कि हाल ही में जारी हुई कुछ महत्वपूर्ण सरकारी भर्तियों के बारे में। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने असिस्टेंट ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। वहीं MP पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के तहत 504 पदों पर आवेदन का मौका है और आवेदन की अंतिम तारीख 23 सितंबर 2026 है। और अगर आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र से हैं तो SSC जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026 भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी एक अच्छी खबर है। IBPS ने रीजनल रूरल बैंक यानी कि RRBs में 13,706 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनमें ऑफिस असिस्टेंट, मल्टीपर्पज़ और ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3 के पद शामिल हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 है। और इंजीनियरिंग क्षेत्र से हैं, SSC जूनियर इंजीनियर भर्ती 2026 भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। यानी कि बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। तो दोस्तों अगर इनमें से कोई अवसर आपकी योग्यता और रुचि से मेल खाता है तो आवेदन करने से पहले संबंधित आधिकारिक नोटिफिकेशन में पात्रता, आयु सीमा और अन्य ज़रूरी शर्तें जाँच लें।
0: तो श्रोताओं इसी के साथ अब समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। आशा है आपको आज का यह विशेष प्रसारण बेहद पसंद आया होगा। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य लिखकर भेजिएगा। तब तक के लिए
1: आपके साथ थी मैं कीर्ति
0: और मैं रचना। हमें दीजिए इजाजत, सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम युववाणी। युवा शक्ति, युवा सोच और युवा अभिव्यक्ति के संगम से परिपूर्ण इस अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है, FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़। साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। सुधी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो सखी अदिति निगम। शाम की गोधूली बेला में अब समय है प्रभु की भक्ति स्मरण का, तो आइए शुरू करते हैं भजन संध्या कार्यक्रम। श्रोताओं, भजन संध्या में भजनों की शुरुआत भगवान गणेश के मधुर भजन से करते हैं। आइए करते हैं गणपति स्मरण और सुनते हैं मधुर गणेश भजन।

श्रोताओं, भक्ति की सुंदर यात्रा को अब आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं श्री कृष्ण की भक्ति की ओर। जब मन में कृष्ण का नाम बस जाता है तो जीवन की कठिन राह भी सहज लगने लगती है। तो आइए प्रेम और भक्ति के रंग में रंगते हुए सुनते हैं श्री कृष्ण का मन भावन भजन।

श्रोताओं, कृष्ण की भक्ति, जहाँ बात होती है कृष्ण की, वहाँ राधा रानी का स्मरण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राधा नाम प्रेम, समर्पण और निष्कलंक भक्ति का प्रतीक है। राधा रानी की भक्ति हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में अपना अहंकार नहीं बल्कि स्मरण महत्वपूर्ण होता है। आइए श्रद्धा और प्रेम का स्मरण करते हैं और सुनते हैं एक और मधुर भजन।

श्रोताओं, भजन संध्या के कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं। प्रभु श्री राम का नाम मन में विश्वास जगाता है और कठिन परिस्थितियों में भी सही राह पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए सुनते हैं भक्तिमय श्री राम का मधुर भजन।

श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान की भक्ति की ओर। श्री राम के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में निस्वार्थ सेवा और पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। बजरंग बली की भक्ति से ओतप्रोत सुनते हैं मन भावन प्रभु हनुमान का मधुर भजन।

कहते हैं सच्चे मन से पुकारने पर माता अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हैं। इसीलिए आइए कुछ पल संसार की चिंताओं से दूर होकर माँ के चरणों में अपना मन समर्पित करते हैं और सुनते हैं माता का एक मधुर भजन।

श्रोताओं, इसी मधुर भजन के साथ आज की भजन संध्या में हमारी यह भक्तिमय यात्रा को हम देते हैं विराम और मैं अदिति निगम आपसे लेती हूँ अनुमति, मगर आप सुनते रहिए FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी उज्जैन। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल से।
1: रहे हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
3: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना।
2: किसान वाणी कार्यक्रम सुन रहे हैं मैं सभी भैयन खो सभी बहनन खो पूनम बहन की दुई दुई हाथ जोड़ के राम राम पहुँच बे। हम उम्मीद करते हैं कि सभी जने खूबई नौने हुओ। देखो भैया बहनों हरों का है कि किसानन को अपनी उपज को पूरा फायदा मिल पावे इके लाने सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इके लाने कृषि बाजार अधोसंरचना योजना की पहल सोई करी गई है जिको उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रन में कृषि उपज के भंडारण विपणन और प्राथमिक प्रसंस्करण की आधुनिक ढांचागत व्यवस्था विकसित करवो है जो मुख्य रूप से दो बड़े हिस्सन में चल रही है कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और कृषि विपणन अधोसंरचना। कृषि बाजार अधोसंरचना योजना मुख्यतः कृषि विपणन अवसंरचना AMI और कृषि अवसंरचना कोष AIF भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिको उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपज के भंडारण विपणन और प्राथमिक प्रसंस्करण की आधुनिक ढांचागत व्यवस्था विकसित करवो है। योजना के मुख्य उद्देश्य और लाभन में सबसे पहले बात करत है वैज्ञानिक भंडारण क्षमता की। सो किसानन की उपज को सुरक्षित रखने के लाने गोदामों साइलों और शीतगृह को निर्माण करवो जिससे फसल कटाई के बाद होवे बारे नुकसान को रोको जा पावे। वित्तीय सहायता और सब्सिडी देवो मने इसे क्रेडिट लिंक्ड बैंक एडेड सब्सिडी योजना के तहत सामान्य क्षेत्रन से 25% और पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रन में या महिला SC ST उद्यमिन के लाने और FPO के लाने 33.33% तक की पूंजीगत सब्सिडी दी जात है। ब्याज में छूट मने AFI के तहत पात्र ऋण में 3% तक की ब्याज सहायता और क्रेडिट गारंटी को लाभ मिलत है। बाजार तक सीधी पहुंच मने बिचौलियन की भूमिका को कम करके किसानन को उनकी उपज के उचित मूल्य दिलावे के लाने सीधे विपणन और ई नाम एकीकरण को बढ़ावा दो जात है। और भैया बहना हरो ई के अलावा भी बड़ी अच्छी जानकारी आज हम अपन के लाने लेके आए हैं। तो देखो का है कि खरीफ के मौसम में खेतन में अपन ई समय कई तरह की फसलें उगात हैं। फसलन में बढ़वार की अवस्था में कई तरह के रोग और कीटन को प्रकोप सोई हो जात है। सो उड़द और मूंग की फसलन में भी कीट व्याधि की रोकथाम के लाने विभिन्न तरीकन को मिला के समन्वित कीट प्रबंधन करो जात है। मने फसलन में समन्वित कीट व्याधि प्रबंधन से बीज उपचार जल प्रबंधन पोषण प्रबंधन निगरानी और नियंत्रण जैसी बातन को ध्यान रखो भी बहुत ही जरूरी है। सो ई के संबंध में अपन और जानकारी प्राप्त कर लिए थे। सुनत है जो भेंट वार्ता उड़द एवं मूंग में समन्वित कीट प्रबंधन विशेषज्ञ है डॉक्टर RP शर्मा, इनसे बातचीत करी है मनोज सक्सेना भैया ने।
3: किसान भाइयों, समय के गुजरने के साथ ही फसलों में भी अब बदलाव देखने को मिल रहा है। बारिश अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है और फसलें भी अब देखिए ना परिपक्व होने की स्थिति में आ गई हैं। फलियों में भराव शुरू हो चुका है। बात हम कर रहे हैं आज खरीफ मूंग और उड़द की फसल की। यहाँ ऐसी अवस्था में जब फलियां भरने लगी हों, फूल पर फसल हो, तब रोग और कीट बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जी हाँ, इसी विषय पर हम आज बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी से, जिन्हें की हम सब RP शर्मा के नाम से जानते हैं, प्रधान वैज्ञानिक हैं कृषि विज्ञान केंद्र देवास से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: धन्यवाद
3: सर। इस समय खरीफ की फसल में पहले हम मूंग और उड़द दोनों की साथ ही बात कर लेते हैं। फलियों में अगर कीट लगते हैं
4: जी
3: तो क्या नुकसान हो सकता है, उन कीटों की पहचान कैसे की जाए और उनका प्रभावी नियंत्रण कैसे किया जाए?
4: निश्चित रूप से देखिए, उड़द और जो मूंग जो फसल है ना, दलहन विशेषकर
3: जी,
4: इनका अपने आप में बड़ा महत्व है
3: जी।
4: भले ही हम कहते हैं कि हमारे देश में जो है 35% जो है विश्व का एरिया भारतवर्ष में है
3: जी।
4: उत्पादन के दृष्टिकोण से भी देखते हैं तो पूरे विश्व का जो है 27% जो है दलहन की पूर्ति हम करते हैं
3: जी।
4: हम विश्व में प्रथम नंबर पे आते हैं
3: जी।
4: लेकिन जब उत्पादकता की बात करते हैं उड़द मूंग विशेषकर
3: जी,
4: तो 5 से 6 क्विंटल उत्पादकता आती है मात्र, जो कि बहुत कम है,
3: बहुत कम है,
4: है ना। और कई किसान जब इसको उड़द मूंग को रबी में करते हैं या समर में करते हैं तो 15 क्विंटल भी लेते हैं, मतलब दूने से भी ज्यादा उत्पादकता में अंतर है। तो खरीफ में अभी जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें मुख्य कारण है कीट बीमारी। यदि कीट बीमारियों का किसान भाई उड़द मूंग में सही प्रबंधन कर ले तो निश्चित रूप से जो उत्पादकता हमारी आज भारतवर्ष की 5 से 6 क्विंटल है उसको हम 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ले जा सकते हैं। इसकी मुख्य कमी के लक्षण क्या है, देखिए, एक तो खरीफ में जब किसान दलहनी फसलें विशेषकर मूंग उड़द करता है तो वो एक तरफ से बोनी करता है, लाइन से लाइन की

0: यूरिया वो एंटर नहीं करता है। निश्चित रूप से आप जानते हैं, हम लोग सभी जानते हैं कि खरीफ में फसल जब रुक रुक के बारिश होती है ना, तो फसल का जो वनस्पति बढ़वार बहुत ज्यादा होता है। तो हम जो है जैसी बोनी जो है गर्मियों में करते हैं, रबी में करते हैं, वही बोनी हम लोग जो है अधिकतर किसान भाई जो हमारे जो है इसमें भी कर देती है। यदि बुंदेलखंड की बात करें या विंध्या प्लेटू की बात करें, इधर रीवा सीधी शहडोल सिंगरौली उस क्षेत्र में जो है हम बोनी करते हैं उड़द मूंग की, आज भी हमारे किसान भाई उड़द मूंग को छिटकाव विधि से बोते हैं। बुंदेलखंड में भी बात करोगे ना, वहां भी छिटकाव विधि से बोती है। तो परिणाम जो होता है कि लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी जो है मेंटेन नहीं हो पाती है। और जब पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन नहीं होगी तो निश्चित रूप से उसमें विभिन्न प्रकार के कीटों का प्रकोप। इसलिए किसानों से सबसे पहले तो अनुरोध यही है कि वो जो है लाइन से लाइन की दूरी जो है ना उसको मेंटेन।
1: मतलब कि इसका ये हुआ कि हम जो रबी की फसल में अनुपात रखते हैं लाइन से लाइन की दूरी का, वही हम यहाँ रख लेते हैं जो गलत है। कीटों पर आते हैं सर, कीट जिस तरीके से बारिश के दिनों में बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं फसलों पर, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो कौन कौन सी कीट ऐसे हैं जो इस समय बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं?
0: इस समय देखिए जो मुख्य कीट है जो उड़द मूंग में आ रहे हैं, माहू है, लीफ ओवर है, जैसे जिसको बोलते हैं, हरे मच्छर है और सफेद मक्खी। सफेद मक्खी जो है बहुत ज्यादा हान पहुंचाने वाला कीट आज हमारे यहाँ हो गया है।
1: सही बात।
0: और सफेद मक्खी के कारण ही आज हमारे यहाँ जो किसानों किसान भाई जो पीला जो मोजेक रोग बोलते हैं वो इसी के कारण फैलता है। विशेषकर जहाँ सोयाबीन वाला क्षेत्र है और जहाँ किसान भाई रबी में और गर्मियों में भी मूंग लगाते हैं और उस खेत में आपने यदि फिर दोबारा लगा दिया है तो निश्चित रूप से मानिए कि सफेद मक्खी का प्रकोप बहुत ज्यादा होगा। अभी हम लोग जो देख रहे हैं मालवांचल में, विशेषकर हमारा जो नर्मदा की पट्टी है, उस नर्मदापुरम लें, देवास के पास जो नेमावरी का क्षेत्र लें, खातेगांव कन्नौज जो एरिया जो नेमावरी की पट्टी है, इस क्षेत्र में जो है गर्मियों में मूंग बहुत लगाते हैं किसान भाई। और गर्मियों में जो मूंग लगा रहा है किसान भाई, अभी जो सोयाबीन लगाई है, तो जितनी भी नेमावरी पट्टी वहां सफेद मक्खी का जबरदस्त प्रकोप है। इसमें किसान भाइयों ने काफी स्प्रे भी किए हैं लेकिन प्रतिरोधक क्षमता आ गई है, सफेद मक्खी को नियंत्रण नहीं कर पा रहे। और निश्चित रूप से किसान भाइयों, जब हम लोग सोयाबीन मूंग मतलब कहने का दलहन और तलहनी फसलें ये करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका बढ़वारी होगी। इस कीट को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, है ना। इसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैविक तरीके हैं, जैविक तरीके अपनाओगे आप तो निश्चित रूप से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।
1: अब इस समय जैसे कि फलन हो रहा है, फलियां भर रही हैं, ये बड़ी ऐसी स्थिति होती है कि अब फली को अगर कोई कीट खा लेगा तो सीधा सीधा आर्थिक क्षति होनी है।
0: जी।
1: कौन सा कीट है जो सबसे ज्यादा इस समय लग रहा है?
0: इस समय दो कीड़े हैं, एक तो फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी जो बोलते हैं, फल के अंदर मक्खी दे देती है उसमें, और दूसरा जो है चने की इल्ली है, इसको एलकोबर्पा बोलते हैं। एलकोबर्पा जो चने की इल्ली है ना, जो चने की घेंटी के अंदर घुस जाता है और दाने को डैमेज करता है, वैसे ही वो एलकोबर्पा जो कीट है वो दाने के अंदर जो घुस जाएगा, इसके फली के अंदर घुस जाता है और दाने को खराब कर देता है। मुख्यतः जो है फ्रूट फ्लाई जो फल मक्खी है और जो है चने की इल्ली, उसको चने की एलकोबर्पा नाम है उसका। और चूंकि चने का वो मुख्य कीट हुआ करता था पहले, लेकिन आजकल जो है 14 प्रकार के रंग बदलते

0: निश्चित रूप से आप देखिए जो फली है आपकी उड़द की या मूंग की उसके ऊपर आपको आपको हरी इल्ली मिलेगी। हरी इल्ली बिल्कुल इल्ली इसी पे नुकसान करती है, वो फल जो लगा हुआ है फल को डैमेज करती है, फल को नुकसान करती है। इसलिए ऐसी इल्लियों से आप जरूर बचाव रखें इस समय निश्चित रूप से यदि आपने कंट्रोल नहीं किया तो उपज में 25-30% की हानि केवल इससे हो जाती
1: है। इसको नियंत्रित करने के लिए दवा कौन सी उपयोग करना चाहिए?
0: देखिए साहब, दवा की बात निश्चित रूप से किसान भाई हमारे यहाँ मालवांचल की बात करें तो ऑलरेडी किसान बहुत सारी दवा डालते हैं, इसका परिणाम जो हो रहा है कि कीटों में प्रतिरोध क्षमता पैदा हो गई। तो रस चूसने वाले जो कीट है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि रस चूसने वाले कीटों के लिए हम सबसे पहले तो इमीडा क्लोरपिट जो दवा आती है उसे बीजोपचार करें। यदि आपने बीजोपचार कर दिया है तो उसमें रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप कम से कम होगा। दूसरा जो है, यदि आपका जेसिड्स है, थ्रिप्स है, ये लगे हुए हैं तो इसके लिए भी हम लोग जो है जैविक कर सकते हैं। और जैविक में जो है आपका जो है लेडी बर्ड बीटल है, कोक्सिनोला इसको बोलते हैं, एक क्रासोपरला, ऐसे ये छोटे छोटे जीवाणु हैं, परजीवी हैं, इनको यदि आपने खेत में छोड़ दिया तो ये इनके ऊपर अंडे देते हैं। ये इल्ली जो आपकी है और कोक्सिनेला है ना, ये माऊ को थ्रिप्स को खा जाता, तो मतलब प्राकृतिक रूप से आपका जो है कंट्रोल होगा। दूसरा जो है सफेद मक्खी की बात कर रहे थे, इसमें हम लोगों ने यदि पीले चिपचिपे बोर्ड लगा, पीले चिपचिपे बोर्ड का मतलब ये है गत्ता ले लें, हालांकि ये आईपीएम का जो सेंटर है वहाँ भी मिलते हैं किसान भाइयों, लेकिन यदि आप वहाँ नहीं जाना चाहते हैं तो एक गत्ते काट लें आप, और गत्ते को जो है पीला झटक पीला जैसे बोलते हैं गाँव में लोग, तो पीले रंग से हम लोग इसको पोत दें, पोतने के बाद इसमें ग्रीस लगा दे सफेद वाली, जो ट्रांसपेरेंट जेली बोलते हैं इसको, ग्रीस सफेद ग्रीस लगा देंगे 10 से 12 जगह, इसको खेत में गाड़ देंगे, फसल से थोड़ा सा ऊंचा रहेगा ये, और इसको गाड़ देंगे तो निश्चित से मांगिए जितने भी प्रोण जो हैं वो प्रोण इस पे चिपक जाएंगे। 8 दिन बाद आप देखोगे तो पीलापन पूरा खत्म हो जाएगा, और इसमें आपको जो है काला काला दिखेगा, तो इसको आप 8 दिन बाद फिर साफ कर दें और फिर ग्रीस लगा दें, तो जितने भी प्रोण है मतलब युवा, इसमें शिशु नहीं आ पाते, आपके अंडे नहीं आ पाएंगे, इसलिए आपको छुटाना नहीं है, खेत में से निकालना नहीं जब तक आपकी मूंग की फसल उड़द की फसल कट नहीं जाती है, तो उसको लगा दें। दूसरा, इसमें जो चने की इल्ली थी इसमें एनपीबी का भी आप डाल सकते हैं, न्यूक्लियस पॉलीहेड्रोसिस वायरस है, 250 ml प्रति हेक्टेयर, तो ये आपने इसको डाल दिया तो चने की इल्ली को निश्चित रूप से मानिए कि तीसरे दिन बुखार आता है, चौथे दिन काली पड़ जाएगी, पांचवे दिन काली पड़ के उल्टी लटक जाती, तो इसमें बीमारी फैला दें, हम लोग दवा पे बाद में जाए। इसके बाद ट्राइकोडर्मा वेरिडी भी हम लोग जा सकते हैं, कई बार फफूंद लग जाती है जमीन में, तो फफूंद को खाने में ट्राइकोडर्मा वेरिडी है ना, इसको भी अपन लोग कंट्रोल उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, निश्चित रूप से कीटों की ये बात हो गई है, अब थोड़ा सा बीमारियों की बात में,
1: बिल्कुल मैं वही पूछने वाला था सर कि बीमारियां भी लगती हैं तो मुख्य बीमारियां भी आप बताइए।
0: एक तो पीला मोजेक है किसान भाई, उस समय पीलापन बहुत आता है, और पीला मोजेक जो बीमारी है वो बीमारी सफेद मक्खी और रस चूसने वाले कीड़े जो मैंने आपको बताया इनके द्वारा फैलती है। इस जो वायरस है, इस वायरस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वायरस किससे फैलता है उसको कंट्रोल कर सकते, वो जो वायरस फैलता है सफेद मक्खी, तो सफेद मक्खी को जब आपने कंट्रोल कर लिया है तो निश्चित रूप से मांगनी है ये पीला मोजेक जो है कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन फिर भी शुरू की अवस्था में कहीं कहीं यदि आपको पीले पौधे दिख रहे हैं तो उन पीले पौधों को उखाड़ करके किसान भाइयों उसको गाड़ दें, तो इससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, एक कोलर रॉट बीमारी और आती है, जड़ सड़न, जड़ भी सड़ जाती है, तो इसके लिए भी मैंने आपको निवेदन किया था ट्राइकोडर्मा
1: जी
0: 2 kg प्रति हेक्टेयर डाल दें, या जो है मेटालेक्जिल एक दवा आती है उसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग जो है ना। दूसरा जो है जो बीजोपचार है ना वो सबसे ज्यादा कारगर है, मेटालेक्जिल कर लेंगे ना तो 2.5 gram 1 kg बीज के हिसाब से बीजोपचार करोगे ना तो इसमें निश्चित रूप से ये बीमारी से अपन लोग बच सकते हैं। और दूसरा, एक तीसरी बीमारी और आती है पाउडर मिल्डू, विशेषकर बारिश के मौसम में आती है पाउडर मिल्डू, चू
1: बभूतिया टाइप,
0: हाँ बभूतिया टाइप की, इसका शुद्ध नाम तो ये बभूतिया रोगी बोलते हैं गांव के किसान भाइयों। जब लगातार बारिश होती है और बीच में मौसम शुष्क हो गया, मतलब गर्मी सी पड़ी, उमस जैसी उमस पड़ रही है और बारिश हो रही है, तो ऐसे में ये बभूतिया रोग निश्चित रूप से खेत में आने के चांसेस है। जैसा भी मौसम बन रहा है तो इसमें बभूतिया रोग आ सकता है, बभूतिया रोग आता है तो इसमें जो दाने की जो गुणवत्ता है गुणवत्ता प्रभाव पड़ता है, और पत्तियां बिल्कुल सफेद हो जाती है, फलियों के ऊपर भी आ जाता है। तो ये इसमें किसान भाइयों किसी भी प्रकार का दवा डालने की जरूरत नहीं है, आप जो है बैटरीबल सल्फर जो आता है घुलनशील सल्फर, 2 gram 1 liter पानी में घोल बनाओ और घुलनशील सल्फर का स्प्रे कर दोगे तो जो बीमारी कंट्रोल हो जाती है। दूसरा, कार्बोनेजियम ले सकते हो आप, है ना, उससे 0.5 gram प्रति लीटर पानी में घोल बनाओगे ना तो इससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, एकदम हम लोग जो रासायनिकों की बात नहीं करें, रसायनों का उपयोग हम लोग बरसों से करते आ रहे हैं, परिणाम जो हो रहा है कि नए नए कीट आज क्षेत्र में आ रहे हैं और कीटों में प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो रही है। सफेद मक्खी की बात हो रही है, कहीं भी किसी भी किसान के पास जाइए आप इस समय, किसान हमेशा ये कहता है कि साहब मैंने 4 spray कर दिए, मैंने 5 spray कर दिए, लेकिन सफेद मक्खी नहीं मर रही। सफेद मक्खी को आपको कंट्रोल करना है तो आपको सबसे पहले कोई

0: असल वो रहे बीजोपचार से शुरुआत करनी
1: बिल्कुल सही।
0: जब तक बीजोपचार के लिए नहीं करोगे ना तो सफेद मक्खी को केवल स्प्रे से आप कंट्रोल नहीं कर सकते।
1: वाकई सर ये ऐसा विषय है कि किसान भाइयों ने आज जाना होगा कि हमें अगर अपनी फसल से बारिश के दिनों में खरीफ में भरपूर उत्पादन लेना है तो कुछ बातों का ध्यान तो रखना जरूरी है। किसान भाइयों आज की इस बात को हम यहीं विराम दे रहे हैं। सर को हम फिर कभी आमंत्रित करेंगे और भी विषय पे बात करेंगे। सर आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अब अपन ने सुनी जो भेंट वार्ता उड़द एवं मूंग में समन्वित कीट प्रबंधन विशेषज्ञ हते डॉक्टर आरपी शर्मा इनसे बातचीत करी हती मनोज सक्सेना भैया ने। और चलो अब कछु मनोरंजन हो जाए तो आपरन को सुनवात हैं जो बारामासी नीता खरे की गाय भई।

0: अबे अपन ने सुनी जो बारामासी स्वर हतो नीता खरे को। भैया बहनाहरो आजकल पॉली हाउस बनावे और इस्तेमाल करवे को चलन बढ़ रहो है, जो एक पारदर्शी प्लास्टिक की फिल्म से ढकी भई संरक्षित संरचना है जी में पौधन को नियंत्रित वातावरण उगाओ जात है। पॉली हाउस से बेमौसम उत्पादन मिलवे के संगे संगे पैदावार सोई अधिक होत है। सो ई के संबंध में अपन कछु और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सुनत है जो लघु वार्ता पॉली हाउस में उद्यानिकी फसलों की खेती विशेषज्ञ है डॉक्टर विजय अग्रवाल।
1: किसान भाइयों, पॉली हाउस एक ऐसी संरचना है जो प्लास्टिक के बने घरनुमा संरचना होती है और इसके अंतर्गत हम सारे उद्यानिकी फसलें, चाहे फूलों की खेती हो चाहे सब्जियों की खेती हो, उसके लिए जो पौधों के लिए जो आवश्यक वातावरण होता है वो उसके अंदर हम निर्मित करते हैं। ये इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें पौधों के हिसाब से अंदर का तापमान, अंदर की नमी, आर्द्रता, बारिश के पानी से बचाव, साथ ही साथ पाला ओला, साथ में कीड़े और बीमारियों से पौधों की सुरक्षा होती है। इस आवरण की जो मुख्य बात होती है, इसमें ऊपर आप देखेंगे कि एक परावैगनी अवरोधी प्लास्टिक लगी रहती है और साथ में इसके दोनों तरफ होते हैं, यहाँ पर इसमें कीट अवरोधी जाली लगी रहती है जिससे अंदर कीड़े प्रवेश नहीं करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है जब हम पॉली हाउस में खेती करते हैं, इसमें हम वर्ष भर खेती कर सकते हैं चाहे कोई सा भी मौसम हो और इसके अंदर हम कोई भी फसलें इसमें लगा सकते हैं। दूसरा फायदा होता है, इसके अंदर बेमौसमी फसल उत्पादन भी संभव होता है। जैसा कि हम देखते हैं जब हमारे किसान भाई बेमौसम में सब्जियों की खेती करके बाजार में उत्पाद लेकर आते हैं तो उनको अधिक मूल्य मिलता है। साथ ही साथ आज के समय में जो वातावरण में ओला पाला एवं अन्य समस्याएं होती हैं जिससे जो फसल है उत्पादन प्रभावित होता है, इसमें उस दशा में भी अच्छा उत्पादन होता है। संरचना जो होती है पॉली हाउस चारों तरफ से बंद होती है तो इसमें कीड़े एवं बीमारियों का प्रवेश अंदर ना के बराबर होता है और फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। इसके बाद इसमें अंदर सिंचाई के लिए टपक सिंचाई पद्धति या ड्रिप सिंचाई पद्धति की व्यवस्था होती है जिसमें पौधों में बूंद बूंद करके जो पौधों की आवश्यकता होती है उतना पानी जाता है। साथ ही साथ जो पौधों की खाद की या पोषक तत्वों की भी जो मांग होती है उस हिसाब से नपातुला हम इसमें पोषक तत्व भी पौधों को देते हैं जिससे पौधों की वृद्धि काफी अच्छी होती है। किसान भाइयों, बात आती है कि हम इसमें कौन कौन सी फसलों का चयन करें। इसमें हम दो प्रकार की खेती कर सकते हैं, एक सब्जियों की खेती कर सकते हैं, एक फूलों की खेती। सब्जियों की खेती की अगर हम बात करें तो इसमें बेल वाले जो टमाटर होते हैं, जो इनडिटर्मिनेट किस्म के होते हैं, उनकी हम इसके अंदर खेती करते हैं। साथ में इसमें चेरी टमाटर की खेती होती है। इसके अलावा इसमें हम रंगीन शिमला मिर्ची, जिसका बाजार भाव ज्यादा होता है, उस तरह की शिमला मिर्ची की इसके अंदर खेती करते हैं। और खीरा, जो कि स्वपरागित खीरा होता है, क्योंकि खीरे में नर एवं जो मादा पुष्प होते हैं अलग अलग आते हैं एक ही बेल पर, लेकिन इसमें स्वपरागित किस्म अंदर लगानी पड़ती है क्योंकि अंदर कीड़ों का प्रवेश नहीं होता है, तो इस कारण से स्वपरागित हम खीरे लगा सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रखें कि इसमें लौकी, गिलकी, करेला, तोरई ऐसी फसलें जिनमें नर और मादा फूल अलग अलग आते हैं, ऐसी फसलों का चयन हम ना करें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इसमें अगर हम फूलों की बात करते हैं तो इसमें जो हाइब्रिड किस्म के गुलाब होते हैं जिनको कट फ्लावर के रूप में जाना जाता है, जिसकी बाजार में एक फूल 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक का एक फूल की कीमत होती है, वो इसके अंदर हम लगा सकते हैं। इसके साथ साथ जरबेरा नामक पुष्प की खेती कर सकते हैं इसके अंदर, और इसके अलावा इसमें कार्नेशन आदि की भी खेती इसके अंदर की जा सकती है। ये सब्जी एवं फूलों की खेती कर रहे हैं तो इसमें किस्म जो होती हैं, एक विशेष किस्में इसके अंदर लगाते हैं जो कि ग्रीन हाउस या पॉली हाउस के अंदर अच्छा उत्पादन देती हैं, तो सही किस्मों का ही इसमें चयन करें। इसके बाद जहाँ तक संभव हो, जब इसके अंदर हम पौधे लगाते हैं, सब्जियों के पौधे लगाते हैं, तो पौधों को भी आप सुरक्षित वातावरण में, कीट अवरोधी वातावरण में आप पौधे तैयार करें जिससे उसमें किसी भी प्रकार के कीड़े एवं बीमारियों की संभावना ना रहे, और उसी प्रकार के पौधों को आपको पॉली हाउस के अंदर लगाना है। पॉली हाउस के बारे में कुछ चीजें हमको ध्यान में रखना है। इसमें जो फिल्म लगती है प्लास्टिक की, वो परावैगनी अवरोधी होनी चाहिए। प्राकृतिक रूप से वातानुकूलित जो पॉली हाउस है वो हमको लगाना है। जितने क्षेत्र का हम पॉली हाउस लगा रहे हैं उससे 5 गुना पानी की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। ये संरचना 6.5 मीटर हाइट की होनी चाहिए। अगर कम हाइट की होगी तो इसमें तापमान बढ़ेगा। इसके साथ साथ इसमें ध्यान रखें कि चारों तरफ कीट अवरोधी जाली लगी हो जिससे कीड़े अंदर प्रवेश ना कर पाए, और 2 दरवाजे इसके अंदर होने चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आप पॉली हाउस के अंदर सब्जी एवं फूलों की वर्ष भर खेती कर सकते हैं और इनसे मिलने वाला उत्पाद की गुणवत्ता भी अच्छी होती है, जिससे आपको इसका बाजार में अच्छा मूल्य मिलेगा।
0: अब अपन ने सुनी जो लघु वार्ता पॉली हाउस में उद्यानिकी फसलों की खेती, विशेषज्ञ हते डॉक्टर विजय अग्रवाल। हमारे किसान भैया बहन खेती किसानी के संगे संगे मछली पालन सोई करत है और इकेलाने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है जो 10 सितंबर 2020 से शुरू करी गई हती। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को उद्देश्य है देश में मत्स्य पालन क्षेत्र को सतत विकास करवो, मछुआरन की आर्थिक स्थिति में सुधार लावो, योजना के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से पूरे देश में मत्स्य संपदा से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दो जा रहा है। योजना के मुख्य उद्देश्य में उत्पादन में वृद्धि, मने मछली पालन और उत्पादकता को बढ़ा के इको नए स्तर पे ले जाबो है। आय में वृद्धि के लाने मछुआरों और मत्स्य किसानन की आय को बढ़ावा देवो और रोजगार के नए अवसर पैदा करवो भी इको मुख्य उद्देश्य है। बुनियादी ढांचा जैसे कोल्ड स्टोरेज, आइस प्लांट, मछली परिवहन जैसी सुविधाओं को विकास करवो, आर्थिक सहायता और अनुदान मने सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत को 40%, जबकि महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों को 60% तक का अनुदान दो जात है। इके लाने सरकार की तरफ से तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक यूनिट, मछली बीज हैचरी और मोटरसाइकिल विद आइस बॉक्स जैसी गतिविधियों के लाने आर्थिक मदद दी जात है। सो जो तो हती जानकारी और हम उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो भी जानकारियां हमने अपने भैया बहनों को दी वे उनके काम में आए और वे खेती किसानी के लाने सरकार की इन सभी योजनाओं को बातन को अपना है और फायदा भी उठा है। और ई के संगे आज को किसानवाणी कार्यक्रम हमें तय समाप्त करत है। स्वीकार करो पूनम बहन की, राम राम।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे?
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब?
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछ ना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सभी डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। आप जल्द ही दिल्ली से समाचार का रिले सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: ब्रिक्स के 20 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने दो स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती रहती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रॉइका के माध्यम से सभी पहलुओं और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: ग्लोबल गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्ष के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी। ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया, जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। ब्रिक्स देशों ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए सभी तरह के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिक्स नेताओं ने पौधारोपण किया। उन्होंने इंडिया इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आयोजित भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का उद्देश्य उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में विकसित नवाचारों को दुनिया तक पहुंचाना है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि जन स्वास्थ्य की रक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक है। श्री नड्डा ने आज आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव की मौजूदगी में 10 क्रिटिकल केयर ब्लॉक और 12 एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं से राज्य में मरीजों को बेहतर सेवा मिलेगी। भारत ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में दुनिया की सबसे लंबी स्टील स्लैग सड़क बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। 1.85 किलोमीटर लंबी ये सड़क स्वदेशी तकनीक के व्यापक प्रयोग को दिखाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये पहल कचरे से संपदा बनाने और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने की प्राथमिकताओं के अनुरूप है। पाकिस्तान के एक मानवाधिकार संगठन ने अधिकारियों पर बलूचिस्तान में सुनियोजित सैन्यकरण और दमनकारी अभियान चलाने का आरोप लगाया है। संगठन ने कहा कि हिंसा और विस्थापन नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गए हैं। भारत ने महिला जूनियर एशिया कप हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोची में पहले सेमीफाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आदित्य निगम। FM 102.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। अब आपको आज रात साथ ही कल तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7:10 पर। 7:21 पर आप सुनेंगे मालवी की तारी गूंज, मालवी समाचार, मालवी लोकगीत। रात 8:00 आप सुनेंगे भोपाल से रिले। 8:45 पर आप सुन सकेंगे समाचार संध्या का अनुप्रसारण। रात 9:00 आप सुनेंगे न्यूज एट 9। उर्दू में समाचार आप सुनेंगे 9:15 पर। संस्कृत भारती 9:30 पर आप सुन सकेंगे। रात 10:00 आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकेंगे 11:05 पर। FM गोल्ड के कार्यक्रम आप सुनेंगे 11:10 पर। ये थी आज रात तक प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब सुनेंगे हम कल दिन भर साथ ही शाम तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। सुबह 5:50 पर आप सुनेंगे संकेत धुन। 5:52 पर आप सुनेंगे वंदे मातरम। सुबह 6:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर आप सुनेंगे वंदनवार चिंतन। श्री रामचरित मानस गान आप सुन सकेंगे 6:35 पर। संगीत सरिता आप सुनेंगे 6:45 पर। सुबह 7:00 आप सुनेंगे महाकाल वंदन। 7:05 पर कार्यक्रम विवरण। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 7:10 पर। 7:20 पर सुप्रभात उज्जैन का अनुप्रसारण आप सुन सकेंगे। समाचार प्रभात आप सुनेंगे सुबह 8:00। आठ बजकर 15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुन सकेंगे। 8:30 पर आप सुनेंगे उज्जैनी आरजे। बॉलीवुड बीट्स आप सुनेंगे 9:30 पर। आपकी फरमाइश सुबह 10:00 आप सुन सकेंगे। सुबह 11:00 आप सुनेंगे रंग तरंग कार्यक्रम। दोपहर 12:00 आप सुनेंगे हिंदी न्यूज बुलेटिन। 12:05 पर आप सुनेंगे यादों की महफिल। दोपहर 1:00 आप सुनेंगे सुरीला सफर। दोपहर 2:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। 2:10 पर प्रादेशिक समाचार। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार। विविधा 2:30 पर आप सुन सकेंगे। नाट्य तरंग कार्यक्रम आप सुनेंगे 3:30 पर। पिटारा उजाले उनकी यादों की आप सुन सकेंगे दोपहर 4:00। युववाणी कार्यक्रम शाम 5:00 आप सुन सकेंगे। शाम 6:00 आप सुनेंगे भजन संध्या कार्यक्रम। 6:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। दिल्ली से समाचार आप सुनेंगे शाम 7:00। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7:10 पर। 7:21 पर मालवी की तारी कुंज, मालवी समाचार, मालवी लोकगीत। रात 8:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम। 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात 9:00 न्यूज 8:09 का रिले किया जाएगा। 9:15 पर आप सुन सकेंगे उर्दू समाचार। 9:30 पर छाया गीत। ये थी आज रात तक और साथ ही कल तक अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। नमस्कार।
3: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
4: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
3: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
5: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज नई दिल्ली में हुआ शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अगले 5 वर्षों में स्व सहायता समूह की बहनों को मिलेगा 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण। प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, लंबित और राजीनामा योग्य मामले आपसी सहमति से हुए निराकृत। और मौसम विभाग ने 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित प्रतिष्ठित रामनाथ स्वामी मंदिर के मनोरम दृश्य के बीच भारत मंडपम में विश्व नेताओं का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट 2026 को संबोधित करते हुए कहा, इस वर्ष का ब्रिक्स समिट एक ऐतिहासिक पड़ाव है। हम ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मानव जीवन में 20 वर्ष की आयु मैच्योरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी के नए चरण का आरंभ करती है। यह वो अवस्था होती है जब सपनों के साथ जिम्मेदारियां जुड़ती हैं, सामर्थ्य को नई दिशा मिलती है। आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में है। पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हम एक दूसरे के दर्शकों का सम्मान करते हैं और कर्तव्य निष्ठा से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सभी को साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा।
1: एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले, अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 11 पूर्ण सदस्य देश और 10 साझेदार देशों सहित कुल 21 देश हिस्सा ले रहे हैं। 11 पूर्ण सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया शामिल हैं, जबकि बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम साझेदार देशों के रूप में भाग ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में हो रहे इस सम्मेलन का विषय है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उद्यम वित्त पोषण और एसएचजी बैंक लिंकेज और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत देशभर की लाखों स्व सहायता समूह की सदस्यों, लखपति दीदियों और आवास हितग्राहियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि अगले 5 वर्षों में समूहों को 10 लाख करोड़ रुपये का बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपये का व्यक्तिगत ऋण भी शामिल है।
2: हमने तय किया है कि हेल्पलाइन समय पर लोन मिले इसकी व्यवस्था, ये भी तय किया कि बिना वजह समूहों को या दीदियों को बैंक लोन से मना नहीं किया जाएगा, और किसी बहाने कि जब बैंक में दिक्कत आए तो एक हेल्पलाइन बनाई जाए और दीदियां उस हेल्पलाइन पे दिक्कतें बताएं, समाधान हम करें, ताकि दीदी अपने आप को अकेला महसूस ना करे। बैंक सखी मदद के लिए है, इंडिविजुअल खुद का काम धंधा समूह की सदस्य करना चाहती है उसको भी लोन मिलना चाहिए।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल आगर मालवा से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की सितंबर माह की 40वीं किस्त का अंतरण करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश की 1,25,10,150 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,835,09,22,450 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता सीधे अंतरित की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से भेंट की। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन, युवाओं के कौशल विकास तथा प्रदेश में रोजगार के नए अवसरों के विस्तार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही प्रदेश के युवाओं को अधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से रोजगार एवं कौशल विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के संबंध में भी विचार विमर्श किया। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें लंबित और राजीनामा योग्य मामले आपसी सहमति से निराकरण के लिए रखे गए। भोपाल में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भोपाल के अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में जिला न्यायालय परिसर भोपाल में लोक अदालत का आयोजन किया गया। यहां 57 खंडपीठों का गठन किया गया है। रायसेन जिला न्यायालय परिसर सहित सभी तहसील अदालतों में लोक अदालत आयोजित की गई। लोक अदालत में 9000 से अधिक लंबित और प्री लिटिगेशन प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए थे। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के द्वितीय चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों को मंजूरी दी है। इससे योजना के क्रियान्वयन को और गति मिलेगी तथा शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह निर्णय नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने की। आज प्रदेश के विभिन्न शहरों में बारिश का दौर एक बार फिर प्रारंभ हुआ। इंदौर, धार, खरगोन और बड़वानी में तेज बारिश हुई, जबकि भोपाल में दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। रतलाम के नामली में मूसलाधार बरसात होने की खबर है। वहीं मौसम विभाग ने अगले आज 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें उज्जैन, धार, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, देवास, हरदा, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी, बालाघाट और छतरपुर शामिल हैं। महिला एशिया कप क्रिकेट में दुबई में कल भारतीय टीम फाइनल में पिछले चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका की टीम कल पाकिस्तान को 4 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंच गई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में वृत्त स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित मेले में 50 से अधिक कंपनियों ने सहभागिता की। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत झाबुआ जिले के कलेक्टर ने मेघनगर स्थित औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। आगरमालवा उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा ममता गवली ने नीमच में आयोजित हुई संभाग स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जगह बनाई। जबलपुर जिले के ग्राम नुनसर स्थित शौर्य कृषि केंद्र का उर्वरक लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत निरीक्षण के दौरान की गई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

आकाशवाणी उज्जैन केंद्र में आपका स्वागत है। FM 102.5 मेगाहर्ट्ज़, साथ ही न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी आप हमें सुन सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो सखी अदिति निगम। श्रोताओं, अब वक्त हो गया है मालवा की माटी, परंपराओं, लोकगीतों और जनजीवन की बात का। तो आइए जुड़ते हैं अपनी जड़ों से और शुरू करते हैं प्रोग्राम मालवी की तारी गूंज।

राम राम। उज्जैन आकाशवाणी प्रोग्राम माय मालवी गीतारी गुंज में आई गयो है तमारो अपनो प्रवीण जोशी। 12 सितंबर यानी कि आज का खास दिन राष्ट्रीय महिला पुलिस दिवस पे खास बाता करांगा उज्जैन पुलिस प्रशिक्षण शाला की महिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा पाठक सोनी से। ने साथे सुनांगा मालवी में गणपति जी का भजन, पर पहला देश प्रदेश ने बाबा महाकाल की नगरी के साथे सीएम डॉक्टर साहब मोहन यादव जी के शेर का हाल तो जानीला। मालवी में समाचार सुनीला।

नमस्कार, मालवी समाचारों के साथ है मैं प्रवीण जोशी। पहला आज का खास समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट 2026 के संबोधित करते हुए किया कि अनी साल का ब्रिक्स समिट एक ऐतिहासिक पड़ाव है। मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब मोहन यादव आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से मिलिया। मौसम विभाग ने आज उज्जैन, धार और छतरपुर सहित 15 जिला में भारी बारिश को अलर्ट जारी किया है। अबार समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट 2026 के संबोधित करते हुए किया कि अनी साल का ब्रिक्स समिट एक ऐतिहासिक पड़ाव है। हम ब्रिक्स की 20वीं वर्षगांठ मने रिया हाँ। मानव का जीवन में 20 बरस की उम्र मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के नए चरण की शुरुआत करती है। ये वो अवस्था है जब अपना सपना के बीच जिम्मेदारियां जुड़े हैं, सामर्थ्य के नई दिशा मिले है। आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में चाली रियो है। पिछला 20 बरस में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। हम एक दूसरा के दर्शकों का सम्मान करते हैं और कर्तव्यनिष्ठ से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं जाएं, बल्कि सभी के साथ चलने की सोच के आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब सही टाइम है कि हम ब्रिक्स भी हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगला 20 बरस के लिए हमें एक नयो और एम्बिशियस एजेंडों पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर बरस बदले है, लेकिन इसकी वजह से हमारी संस्थागत गति नहीं रुकनी चाहिए। उनने आगे किया कि मैं ब्रिक्स की निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखता हूँ। इसके तहत ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और परिणामों को फॉलोअप हुई सकेगो। मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब मोहन यादव ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। अनी अवसर पे मध्य प्रदेश के विकास, रोजगार सृजन, युवाओं के कौशल विकास तथा प्रदेश में रोजगारों के नए अवसरों के विस्तार से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में युवाओं के कौशल विकास और रोजगार को बढ़ावा देने के वास्ते राज्य सरकार द्वारा किए जारी प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही प्रदेश के नौजवानों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने तथा केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सहयोग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं को खास ढंग से आगे बढ़ाने के संबंध में भी विचार विमर्श किया। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 18,77,000 मकानों की स्वीकृति दी है। यह निर्णय नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 9वीं बैठक में लियो गयो। बैठक की अध्यक्षता आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने की। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ सभी पात्र लाभार्थियों तक पहुँचे। आज प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत को आयोजन किया जा रहा है। इनमें लंबित और राजीनामे वाला मामला आपसी सहमति से निराकरण के लिए रखा जा रहा है। रायसेन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं न्यायाधीश हर्षनी यादव ने बताया कि लोक अदालत में 9,000 से अधिक लंबित और प्री लिटिगेशन प्रकरण सुनवाई के लिए रखा गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में दुबई में काले भारतीय टीम पिछला बरस की चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी। श्रीलंका ने काले पाकिस्तान के 4 विकेट से हरा दियो थो। 131 रन को पीछे करते हुए श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम ने 4 विकेट गवे के 8 गेंद रहते ही लक्ष्य हासिल कर लियो थो। प्रदेश में 3-4 दिन के ब्रेक के बाद मानसून फिर सक्रिय हो गयो है। मौसम विभाग ने आज उज्जैन, धार और छतरपुर सहित 15 जिला में भारी बारिश को अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अनी वर्ष 801.30 मिलीलीटर बारिश दर्ज हुई है। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत झाबुआ जिला का कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने मेघनगर में आयोजित औद्योगिक इकाइयों को निरीक्षण किया। निरीक्षण में प्रदूषण एवं पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को जायजो लियो। आगरमालवा उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा ममता गवली ने नीमच में आयोजित हुई संभागीय स्तरीय जूडो प्रतियोगिता में 40 किलो वजनी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीती के राज्य में अपनी जगह बनाई ली है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जबलपुर में आयोजित की जाएगी। आप सुनी लिया था आज का मालवी समाचार। नमस्कार।

किसान भाइयों ने बेनाउन, आज हम खास दन की खास बाता करी रहा हां राष्ट्रीय महिला पुलिस के दन पर। पुलिस अपना आप में ही पूरी कानून व्यवस्था, सुरक्षा, अनुशासन को काम करे है, पर आज को यो खास दन सार्वजनिक सुरक्षा में पुलिस वाली बेना उनके साहस समर्पण ने नेतृत्व के सम्मानित करे है। अनि जोरदार विषय पे और भी बात करांगा, पर पहला यो मालवी को गणपति जी को भजन सुनीला ने पाछे हूँ।

0: अब पढ़ाई के साथ कमाई भी। मध्य प्रदेश सरकार लाई है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। 18 से 29 साल के युवाओं को मिलेगी इंडस्ट्री ट्रेनिंग और हर महीने 8,000 से 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड। हुनर सीखो, पैसा कमाओ और करियर बनाओ एक साथ। रजिस्टर करने का मौका अभी है।
1: mmsky.mp.gov.in पर जाएं। सीखो, कमाओ और लाइफ में कुछ बड़ा करो।
2: राष्ट्रीय महिला पुलिस को आज को दिन महिला पुलिस द्वारा की जाने वाली साहस भरी ड्यूटी के याद करने, उनके प्रोत्साहन देने ने साथ ही उनके साहस भरे इन कामों के लिए उनके धन्यवाद देने को दन है। अनी वास्ते आज हम इन्हीं विषय पर और खास बात करांगा उज्जैन पुलिस प्रशिक्षण शाला की पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा पाठक सोनी मैडम से। भाइयों, बेनाउन श्रोताओं, राष्ट्रीय महिला पुलिस का दन या सारी साहस भरी कर्तव्यनिष्ठ और संवेदनशीलता की प्रतीक महिला पुलिस से महिला पुलिस की बात सुनीला ने पाछे हूं।
3: जी नमस्कार, सभी को नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार।
4: मैडम, हम जानना चाहेंगे कि 12 सितंबर को राष्ट्रीय महिला पुलिस दिवस मनाने की शुरुआत और इसका मूल उद्देश्य क्या है?
3: जी, राष्ट्रीय महिला पुलिस दिवस, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जब हम महिला ऐसी महिलाओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं जो पुलिस विभाग में काम करती हैं, या खास करके जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में काम कर रही यूनिफॉर्म वाली महिलाएं हैं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ये राष्ट्रीय महिला पुलिस दिवस 12 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत तो यूनाइटेड स्टेट्स से हुई है, पर धीरे धीरे विभिन्न देशों में जहां भी महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारी काम कर रही हैं, अब सभी जागृत हो रहे हैं और इसको मनाने की शुरुआत लगभग सभी जगह हो रही है।
4: जी बिल्कुल, धन्यवाद। पुलिस सेवा को आमतौर पर एक चुनौतीपूर्ण और पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है। एक महिला पुलिस अधिकारी के रूप में आपने इस धारणा को किस तरह बदला?
3: अब सही कह रहे हैं, खास करके जो पुराना भारतीय परंपराएं थी या जो पुराना समय था आज से कुछ 21 साल पहले का, उस वक्त में निश्चित तौर पर महिलाओं को पुलिस में आने के लिए कोई उत्साहित या प्रोत्साहित नहीं करता था। सबको यही लगता था कि ये बहुत कठिन क्षेत्र है, पुरुष प्रधान क्षेत्र है, तो एक तो ये माना जाता था कि इसमें मैस्कुलिन पावर चाहिए या बहुत ज्यादा बॉडी फिटनेस चाहिए, मार धार करनी है, इस तरह की सोच होती थी। और दूसरा, लंबे ड्यूटी आवर्स होते हैं, इसके लिए भी महिलाओं के लिए ठीक नहीं होता। और तीसरा, लोगों को लगता था कि सामाजिक रूप से उनके विवाह और फिर आगे उनके परिवार को लेकर के दिक्कत होगी। तो ईश्वर की कृपा और माता पिता का आशीर्वाद, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद, मतलब मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, सबने इतना साथ दिया कि हमने बहुत अच्छे से कर पाए। और बहुत बड़ा रोल इसमें हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का भी रहा कि जब मैं आई पुलिस विभाग में, उस वक्त में बहुत कम लड़कियां इस फील्ड में थी, खास करके सीनियर रैंक पर, तो कई बार हमको देखने के लिए मजमा भी लग जाता था, भीड़ हो जाती थी। जी, तो बहुत सारे फनी एक्सपीरियंसेस भी होते थे, कुछ कड़वे एक्सपीरियंस भी होते थे, पर हमारे सीनियर ऑफिसर्स ने हमेशा हमको साथ दिया और कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि हम अलग हैं, हम लड़कियां हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वहां नहीं जा सकते। तो जो हमारे आसपास हमारे कलीग्स, हमारे साथी, हमारे सीनियर्स और हमारा परिवार, इन सब से मिलकर के ही हम ये कुछ कर पाए। और आज की स्थिति अगर देखें तो फिर अब काफी लड़कियां इस फील्ड में हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं।
4: जी, ये बहुत चुनौतीपूर्ण एक महिला पुलिस का एक जॉब भी है। इसमें महिला पुलिस कर्मियों की भूमिका आज की कानून व्यवस्था से आगे बढ़कर समाज में किस तरीके से बदलाव ला रही है?
3: बिल्कुल, बहुत अच्छी ये पहल है कि महिलाओं को मध्य प्रदेश शासन ने आरक्षण भी दिया है, तो अब बड़ी संख्या में महिला अधिकारी और महिला कर्मचारी तो सभी रैंक्स में आ रही हैं। एक समय जरूर कठिन था, पर अब जो समाज में भी बदलाव अगर आप देखें तो हमारी जो आम महिलाएं हैं जो थाने में जाने से पहले डरती थी, हिचकती थी, अब वो बड़ी बेबाकी से, बड़ी आसानी से किसी भी थाने में चली जाती हैं और हर थाने में उनको कोई ना कोई महिला मिल जाती है उनकी बात सुनने के लिए। यहाँ तक कि कई बार पुरुष भी अपने आप को ज्यादा सहज महसूस करते हैं किसी महिला के साथ अपनी बात, अपने पारिवारिक बात को शेयर करने के लिए। सीनियर सिटीजन्स अपनी बात को शेयर करने के लिए बहुत सहज महसूस करते हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस का एक चेहरा है ही, लेकिन पारिवारिक फ्रंट पर, टेक्निकल फ्रंट पर और भी फ्रंट्स पर महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
4: जी मैडम, हम एक और कुछ भी जानना चाहेंगे, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की
3: जी
4: ओर से कौन-कौन से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं?
3: जी बहुत अच्छा प्रश्न है। मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचनी भी चाहिए कि महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर के मध्य प्रदेश शासन विशेष रूप से बहुत संवेदनशील है। इसके लिए अभियान सृजन नाम का अभियान साल में 2 बार हम ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा जो बच्चे घर से चले जाते हैं या जिनको प्रलोभन दे करके लोग ले जाते हैं, जिनमें बड़ा हिस्सा लड़कियों का या बालिकाओं का होता है, उनको घर वापसी के लिए ऑपरेशन मुस्कान, ऑपरेशन हमदर्द, इस तरह के ऑपरेशंस रेगुलर मध्य प्रदेश पुलिस ऑर्गेनाइज करती है। इसके अलावा महिला हेल्पलाइन भी है और महिलाओं की सुनवाई के लिए हर जिले में महिला थाना खोला गया है। पहले महिला थाने सिर्फ 9 जिलों में थे, पर 3 साल पहले ही सभी जिलों में महिला थाने खोले गए हैं। तो सभी महिलाएं अपनी बात रख सकती हैं और हर थाने में प्रयास किया जाता है कि चाहे वो अर्बन थाना हो चाहे रूरल थाना हो, वहां कम से कम 2 महिला पुलिसकर्मी जरूर हो, जो कि किसी भी जो पीड़िता है या जो अपनी बात कहने महिला आ रही है उसकी बात को अच्छी तरह से सुने। तो इस
4: जी
3: तरह बहुत सारे अभियान है मध्य प्रदेश पुलिस के, और कई अभियान जिनका कोई नाम नहीं है लेकिन महिला डेस्क या ऊर्जा डेस्क के नाम से थानों में कार्यरत है हमारी महिला पुलिस वाली।
4: जी मैडम, ये अभी आज का जो दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, इसमें
3: जी
4: आज महिलाएं साइबर अपराध, ऑनलाइन ठगी, सोशल मीडिया उत्पीड़न जैसी नई नई चुनौतियों का सामना कर रही है, उन्हें
3: जी
4: आपकी सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या होगी?
3: महत्वपूर्ण सलाह ये है जो मैं सोचती हूँ कि हमारा जीवन बहुत कीमती है और हम स्वयं बहुत कीमती हैं, तो हमको हर चीज दिखाने की, बताने की, जताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि आपके पास कोई गोल्ड की चीज है या डायमंड की चीज है तो आप उसको डिस्प्ले नहीं करते ना, तो इन द सेम वे आपको सोशल मीडिया पर हर कुछ डिस्प्ले नहीं करना है सारा कुछ, क्योंकि एक बार कुछ भी चीज एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसफर हुई या आपने कोई ऐसा फोटो खींचा जो आप कहीं नहीं चाहते दिखे लेकिन वो ट्रांसमिट हो ही जाता है, तो इसलिए इस तरह की चीजों से बचें। किसी पर भी

भरोसा ऐसा ना करें कि वो बाद में आपका फायदा उठाए। अनजान लोगों से दोस्ती ना करें। कोई कितना भी आपको लोभ दे, कितना भी प्रलोभन दे कि आपके अच्छा जीवन या अच्छा प्यार और ऐसी चीजें, तो इन सब चीजों में बहुत ज्यादा समझदारी लें। और जब तक आप

0: नहीं रखने की बात है।
1: जी मैडम, यदि किसी महिला या बालिका के साथ अपराध होता है तो उसे पुलिस तक पहुंचने में किन बातों से नहीं डरना चाहिए?
0: किसी भी बात से नहीं डरना चाहिए। दरअसल पुलिस उसके साथ के लिए ही है और उसकी सुरक्षा के लिए है। तो कई बार लड़कियों को क्या लगता है कि हमारा नाम लोगों को पता चल जाएगा, हमारे साथ अपराध हुआ है, जो खासकर पुराने समय में लोगों की सोच होती थी, इज्जत चली जाएगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल पूरे भरोसे के साथ पुलिस के पास आइए और आपकी बात सुनी जाएगी और आपका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा। तो कहीं भी घबराने की बात नहीं है। सारी सुनवाई बंद कमरे में होगी, इवन कोर्ट की सुनवाई भी बंद कमरे में होती है। और बालिकाओं के लिए खास करके बहुत फ्रेंडली माहौल उनको दिया जाता है। उनकी चिकित्सा सुविधा और सब तरह की सुविधा निशुल्क होती है। इसलिए किसी भी बात से नहीं डरना है, किसी भी दबाव में नहीं आना है, किसी प्रलोभन में और किसी भी बहकावे में नहीं आना है। पुलिस आपके साथ है, बिल्कुल सीधे आइए पुलिस के पास।
1: जी मैडम, आपने एक चुनौतीपूर्ण पद को हासिल किया है, तो महिला पुलिस अधिकारी बनने की आपकी व्यक्तिगत यात्रा कैसी रही? इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
0: जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी के ऊपर एक सीरियल आता था, शायद आपने भी देखा होगा, उड़ान नाम से एक सीरियल
1: बिल्कुल
0: आता था। वो किरण बेदी जी पहली महिला आईपीएस थी भारत की, और कंचन चौधरी जी भी उन्हीं की बैचमेट थी।
1: जी
0: तो उनका जीवन हम सबको बहुत प्रेरित करता था। उस वक्त जब हम टीवी में देखते थे तो लगता था कि काश कभी हम भी बन पाए। तो खैर, राज्य पुलिस सेवा से सेलेक्ट होकर के आए इस विभाग में, और चुनौतियां तो निश्चित तौर पर रही। परिवार को भी बहुत संकोच रहा कि पुलिस में कैसे कर पाएगी। हमारी कई जो मित्र थी उनको भी घबराहट लगती थी कि कैसे ये पुलिस में सरवाइव करेगी, किस तरह से काम करेगी। पर हिम्मत रखी, अधिकारियों का साथ रहा, परिवार का साथ रहा, तो समय निकलता गया और हम मजबूत भी होते गए और दूसरे आने वाली पीढ़ी को प्रेरित भी करते रहे कि मुझे लगता है इससे सेफ और इससे अच्छा जॉब नहीं है।
1: हमारा अगला प्रश्न यही था मैडम। अभी
0: जी
1: पुलिसकर्मी परिवार से जुड़े रहना और
0: जी
1: व्यक्तिगत जीवन के बीच आपका संतुलन कैसा होता है? संतुलन कैसे बनाती हैं आप?
0: संतुलन तो मुझे लगता है कि बड़ा चैलेंजिंग होता है। हर वक्त ही हम भागम भाग की स्थिति में होते हैं, पर समय प्रबंधन की टेक्निक सीखते हैं, लिस्ट बनाते हैं। और मुझे एक बहुत सीनियर लेडी ऑफिसर ने हमको सलाह दी थी कि परिवार को जरूर साथ रखना। तो मेरे इन लॉज मेरे साथ रहे, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहे, तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं बड़ी हो गई हूँ और मुझे कुछ अलग से
1: जी
0: करना है। उनके साथ रहते रहते ही सब कुछ आसानी से हो गया। और घर की चिंता आपको बिल्कुल नहीं होती जब आपके बड़े आपके साथ होते हैं। और फिर बिटिया भी अपने आप उनके साथ साथ बड़ी हो गई। और जब बच्चे देखते हैं कि माँ वर्किंग है और माँ बहुत मेहनत कर रही है, तो बच्चे भी जल्दी सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं या सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं। आपकी बहुत ज्यादा आप पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो ये ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश मैं भी करती थी, तो मेरे साथ मेरा परिवार भी करता था, तो तभी जाकर के ये हो पाता है।
1: महिला अधिकारी होने के नाते मैडम, आपको
0: जी,
1: अपने कार्यकाल में ऐसी कौन सी चुनौती मिली जिसने आपको और अधिक मजबूत बनाया?
0: चुनौतियां बहुत रहती हैं, खास करके जब मैं किसी पीड़ित महिला को देखती थी या मेरे साथ की जो मेरी स्कूल मेट थी या कॉलेज मेट थी, और उसको देखती थी कि ये चूंकि वो अपने फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनी और उसने अपने करियर को नहीं चुना या कहीं कमजोर पड़ गई अपने करियर की राह पे, तो उसकी जो परेशानियां होती थी उससे मुझे लगता था कि अरे नहीं, मुझे मुझे बने रहना है इस जॉब में और ये जॉब अच्छा है। और खास करके मेरे सीनियर ऑफिसर, मेरे जो पहले एसपी थे, एक बार जब मेरे को किसी ने कहा कि वहाँ एक फला जगह पर चलना है, वहाँ लेडी ऑफिसर को ले जाता हूँ क्योंकि वहाँ महिलाओं की भीड़ बहुत रहेगी, तो मनीषा को ले जाता हूँ। तो मेरे पहले एसपी जो थे उन्होंने कहा कि मनीषा को आप महिलाओं की भीड़ कंट्रोल करने के लिए मत सोचिए, वो सिर्फ एक महिला अधिकारी नहीं है, वो आपके और मेरे जैसे एंटी डेकोइटी एरिया में एसएलआर लेकर के चलने वाली पुलिस अधिकारी है।
1: जी
0: तो वो जो सेंटेंस था वो मेरे जीवन में आज तक प्रभाव डालता है कि हमें पीछे नहीं हटना है, जहां हो सकेगा हम पूरी मेहनत करेंगे।
1: जी आप पुलिस विभाग में शीर्ष पद पर हैं, तो वहां पर महिलाओं के लिए कार्यस्थल का वातावरण और नेतृत्व की भूमिका कितनी
0: जी
1: महत्वपूर्ण है?
0: निश्चित तौर पर महिलाओं के लिए एक अच्छा कार्यस्थल देना हर सीनियर ऑफिसर की जिम्मेदारी है।

0: है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मुझे अच्छा कार्यस्थल मिला या जहाँ मुझे कमी महसूस हुई, उस कमी को मैं अपने स्तर पर ना होने दूँ। और अब तो खैर उसके बारे में एक्ट भी आ गया है कि महिलाओं के लिए कार्यस्थल बेस्ट होना चाहिए और उनको किसी भी तरह से शोषण का या दबाव का एहसास ना हो, तो ये एक्ट अपनी जगह है, लेकिन हमको सबको कार्यस्थल को बेहतर बनाना हमारा टास्क है। और मैं देखती भी हूँ कि पिछले 25-27 सालों में, जैसे मेरे जॉब को 27 साल हो गए, पहले पुलिस में जो पुरुष अधिकारी होते थे वो बहुत छूट गाली देते थे और अब वो समय बदला है और निश्चित तौर पे महिलाओं के लिए बेहतर कार्यस्थल बने हैं। टॉयलेट्स की समस्या हम लोगों ने बहुत साल झेली, अब वो समस्या लगभग खत्म हो चली है। अब चाइल्ड केयर लीव भी मिलती है और महिलाएं अपनी बात रख पाती हैं, और सीनियर लेवल पर भी सफिशियंट नंबर ऑफ लेडी पुलिस ऑफिसर्स है, तो वो भी एक आपस में डिस्कस करती हैं और बड़े लेवल पर बात भी करती हैं, तो ये बहुत अच्छे से हो पाता है। और सब लीडरशिप का ही रोल है इसमें, जितना सीनियर ऑफिसर को जो समझदार होंगे और जो सेंसिटिव होंगे, वो निश्चित तौर पर अपना अपने यहाँ का वातावरण अच्छा रखेंगे।
1: बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपने। आज की बेटियां पुलिस सेवा में करियर बनाना चाहती हैं, उन्हें
0: जी
1: किन गुणों और तैयारियों पर विशेष ध्यान देना चाहिए?
0: जी पुलिस सेवा के लिए सबसे पहले आपका कमिटमेंट आपकी पढ़ाई को लेकर हो, कि आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो निकालना ही है, तो उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी करें। जैसे पुलिस में भर्ती 4 लेवल पर होती है, जो आईपीएस की सिलेक्शन होता है, यूपीएससी सिलेक्ट करती है, एसपीएस में एमपीपीएससी या स्टेट का पीएससी सिलेक्ट करता है, तो वहाँ आपका बेसिक सिर्फ राइटिंग वर्क पर, मतलब आपके एग्जाम के बेस पर होता है, रिटन एग्जाम के बेस पर और इंटरव्यू पर। लेकिन सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल रैंक पर जो भर्ती होती है, उसमें आपकी फिजिकल फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एट द मोमेंट ऑफ मतलब एग्जामिनेशन, ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो अगर आप अपना जो भी गोल बनाते हैं उसके हिसाब से आप जो विज्ञापन निकलता है उसमें जो नॉर्म्स लिखे हुए हैं आपके भर्ती के, तो आपको वो तैयारी करनी होगी। और फिटनेस तो मुझे लगता है कि भले एग्जाम ना भी हो तो पुलिस में रहने के लिए फिटनेस तो चाहिए ही, और फिटनेस दोनों तरह की हो, एक मेंटल अलर्टनेस भी हो और फिजिकल फिटनेस भी हो, और इमोशनली भी स्ट्रांग होना है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि पुलिस में दबाव भी आएगा, आपको बुरे दौर में लोगों को देखना होगा, तो आपको इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट होना होता है कि दूसरे के दुख को अपने ऊपर ना ओढ़ लें, या दूसरे के दुख से आपको असर ही ना हो रहा है, दोनों चीजें नहीं होनी चाहिए। मतलब आप इमोशनली इतने टफ भी ना हो जाएं कि किसी के दुख का आपको कोई असर ही नहीं हो रहा, आपकी सेंसिटिविटी खत्म हो गई। और इन द सेम वे आप, मतलब इन द अपोजिट वे अगर कहें कि आप इतने सेंसिटिव हो गए कि उसका दुख अपने ऊपर ओढ़ के बैठे हुए हैं और उसके लिए सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सेंटिमेंटल ज्यादा हो रहे हैं, तो ये बैलेंस भी आपको चाहिए अगर आप पुलिस सेवा में आना चाहते हैं, तो वो आपको समझना होगा कि आप किस रैंक पे जाना चाह रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी।
1: बिल्कुल ठीक है मैडम।
0: जी
1: एक और हम जानना चाहेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, परिवार,
0: जी
1: समाज और युवाओं की इसमें क्या भूमिका होनी चाहिए, जिसे आप मानते हैं?
0: महिला की सुरक्षा सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी तो कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि पहला तो घर ही है, हर व्यक्ति घर में सुरक्षित होना चाहिए। पुलिस तक तो बहुत कम लोग आते हैं, मैं बोलूं कि आप ही खुद याद करें या आपके आसपास के लोग याद करें, तो कई लोग पूरे जीवन में एक बार भी पुलिस के पास नहीं आते हैं। तो एक व्यक्ति जिसने 70 साल या 80 साल का जीवन जिया, उनमें से एक भी बार वो पुलिस के पास नहीं गया, पर उन 80 सालों में उसकी सुरक्षा किसने की? उसके परिवार ने, उसके आसपास के लोगों ने। तो जैसे एक पुरुष को सम्मान और सुरक्षा या अवसर मिलने चाहिए, वैसे ही महिला को होने चाहिए। तो एक महिला या एक बच्ची अपने घर में सुरक्षित हो, अपने मोहल्ले में सुरक्षित हो, अपने परिवार में हो, अपने कॉलेज स्कूल में सुरक्षित हो, अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित हो, तो ये बेसिक, ये आदत में होना चाहिए। मतलब एक बच्ची को सुरक्षा देना, सम्मान देना और उसे अवसर देना, ये हमारे समाज की आदतों में होना चाहिए।
1: जी मैडम, बस आज का एक आखिरी प्रश्न है। 12 सितंबर है और राष्ट्रीय महिला पुलिस दिवस भी है, इस पर आप समाज की हर बेटी को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: बेटी को और हर बेटे को, दोनों को संदेश है ये कि स्त्री और पुरुष ईश्वर के बनाए हुए हैं, लेकिन उनमें भेद हम करते हैं, और इस भेद को परे रखकर एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर सबको देखें, लड़कियां भी स्वयं को मजबूत बनाएं, और लड़कों को चाहिए कि वे लड़कियों का भी सम्मान

0: करें वैसे ही जैसे अपने किसी साथी का करते हैं। और आसमान खुला हुआ है, आप चाहें तो एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं, आप चाहें तो पायलट बन सकती हैं, और ये आपके ऊपर है कि आप करियर चुनती हैं या आप फैशन इंडस्ट्री चुनती हैं या आप म्यूजिक चुनती हैं, कुछ भी चुनिए, लेकिन अपने आप को कमजोर समझ के मत चुनिए, अपनी चॉइस से चुनिए, पैरों पर खड़े होइए, मजबूत बनिए तो सुरक्षित रहिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया और आज राष्ट्रीय महिला पुलिस दिवस पर आपने हमारे बालिकाओं को, हमारी महिलाओं को एक नई ताकत दी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका, नमस्कार।
0: जी, धन्यवाद।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: किसान भाइयों बेनाउन, आपने अभी सुनियो उज्जैन पुलिस प्रशिक्षण शाला की महिला पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा पाठक सोनी के। उनने बताया कि वर्दी में उनको धैर्य और साहस हमें इन्हें दूसरी बेनाउन के विश्वास दे है। महिला पुलिस की संवेदनशीलता ही समाज में सुरक्षा को पूरो ने सच्चो भरोसो है। टेम हुई रो है एक और गणपति जी के भजन को, यह मालवी में भजन सुनीला न पाछे हूँ।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: राष्ट्रीय महिला पुलिस को दन केवल एक दन नहीं है, बल्कि उन मजबूत महिलाओं के साहस, समर्पण और कर्तव्य निष्ठा को सम्मान देने को अवसर है। ये जो महिला है खाकी वर्दी पहनी के समाज की सुरक्षा को दायित्व निभाए है। महिला पुलिस हमारी नारी शक्ति, कर्तव्य शक्ति ने राष्ट्र शक्ति को सशक्त रूप में प्रस्तुत कर रही है। ये कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो निभा रही है, साथ ही बच्चों, कमजोर औरताओं के साहस भी दे रही है, ने दमखम के साथ रात्रि गश्त से लेके सगली ड्यूटी भी कर रही है। आज राष्ट्रीय महिला पुलिस के दिन सभी कर्तव्य पे समर्पित इन बहादुर ने दमखम वाली महिला पुलिस को सादर नमन करूं, ने साथ उनका साहस, सेवा, समर्पण, राष्ट्रभक्ति और समाज जागरूकता के प्रति हृदय से सम्मान भी दूं। आखिर में बोल दूं कि नारी शक्ति को नमन, महिला पुलिस को साहस को नमन। जय राम जी की।

श्रोताओं, मालवा की माटी की सुगंध और लोक संस्कृति की ये झलक आपको पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, मगर आप सुनते रहिए आकाशवाणी उज्जैन 102.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार।

0: खेती किसानी की समसामयिक जानकारियों से भरा कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुने कार्यक्रम सुर्खियों में।
2: सुर्खियों में

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन के प्रमुख घटनाक्रमों पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष वी पंत। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: भारत की अध्यक्षता में आज से नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। इस वर्ष की थीम है सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और सतत विकास, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन केंद्रित और मानवता प्रथम दृष्टिकोण को दर्शाती है। आकाशवाणी के सुर्खियों में कार्यक्रम में इस सम्मेलन के पहले दिन के घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर हर्ष पंत। अम्बेसडर सज्जनहार और डॉक्टर पंत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज के जो हम बात कर रहे थे, घटनाक्रम जो हुआ है उसमें सबसे खास बात क्या रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना, इस विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन में पहले दिन के सत्र को संबोधित किया और इसके अंत में उन्होंने नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 का प्रस्ताव रखा और इसे अडॉप्ट किए जाने की घोषणा की। तो सबसे पहले सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
2: हमारी चर्चाओं का सार, प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है, साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। यदि किसी सदस्य को कोई आपत्ति न हो तो मैं डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने का प्रस्ताव रखता हूं। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, आज की हमारी बैठक अत्यंत सार्थक और रचनात्मक रही। हमारे विचारों की विविधता के साथ साथ ब्रिक्स सहयोग के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रूप से सामने आई है। आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग, तीनों में सुधार आवश्यक है। हमने इस बात पर भी बल दिया कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और उनके नियमों के निर्माण में ग्लोबल साउथ की बराबर भागीदारी होनी चाहिए। निर्णयों और उनके परिणामों के बीच जो दूरी बनी हुई है उसे पार्टनरशिप और कलेक्टिव एक्शन से काम करना होगा। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले। ब्रिक्स चेयर के रूप में आपके बहुमूल्य योगदान, कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट और आपकी प्रतिबद्धता के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी के साथ इस सेशन के समापन की घोषणा करता हूँ।
1: और एक बार फिर स्वागत करते हैं इस चर्चा में पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार का। अशोक जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
3: जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, धन्यवाद
1: जी। अशोक जी, भी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने जो ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 यानी कि नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 जो अडॉप्ट की गई आज पहले दिन के सत्र के अंत में, उसके बारे में बताया। तो जो ये घोषणा पत्र अडॉप्ट किया गया है, इसके सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको कौन से लगते हैं?
3: जी, बहुत धन्यवाद मुझे फिर से मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं जो ये हम कंसेंसस डिक्लेरेशन, ये जो घोषणा पत्र है
1: जी,
3: इसको हम सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए, मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है। क्योंकि बहुत ये कहा जा रहा था जो ये मुद्दे इतने पेचीदे हैं और इतने डिवाइसिव हैं देशों के बीच में, तो उसमें एक सर्वसम्मति पाना बहुत ही मुश्किल होगा
1: जी।
3: क्योंकि आपको याद है जो 2023 में जब भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की, तब भी ऐसा ही मुद्दा था रूस और यूक्रेन का युद्ध का, और तब रूस चीन एक तरफ खड़े थे और सारे जो पश्चिमी देश थे एक तरफ खड़े थे।

0: परंतु एक ब्रिज बिल्डर के नाते भारत ने अपना रोल अदा किया था और एक सर्वसम्मति से वहां पर भी डिक्लेरेशन पारित किया था, और वो उस 2 दिनों के सत्र के शुरू होने के पहले दिन के शुरू होने से
1: जी
0: उसको एडॉप्ट कर लिया गया था। आज भी पहले दिन ही किया गया, और क्योंकि ये बहुत इसमें बातचीत ये कहा जा रहा था जो ईरान चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर हमला हुआ है, क्योंकि ये 3 देश जो हैं, युद्ध चल रहा है जो ईरान में और अमेरिका और इसराइल में, तो इसमें 3 देश जो इसमें भागीदार हैं, ईरान के ऊपर तो हमला हुआ है और ईरान ने हमला किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरेबिया, तो उनके ऊपर वो कह रहे थे जो किस प्रकार का ये फॉर्मुलेशन किया जाए। तो यहां पर फिर से भारत ने एक ब्रिज बिल्डर बनकर वो काम किया है। दूसरी बात मैं बताऊंगा जो यहां पर जो आतंकवाद के विरुद्ध जो प्रोविजंस है, मेरे विचार से वो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर कोई उनको पढ़ेगा और उनको देखेगा, ये पैराग्राफ 40, 41, 42 में सभी कुछ रिफ्लेक्टेड है, तो ये जो पूरा लैंग्वेज है, ये पूरा लैंग्वेज भारत जो लैंग्वेज का प्रयोग करता है आतंकवाद के बारे में बोलने का, जो ये किसी भी कारण से उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, सभी को साथ में मिलकर इसके विरुद्ध काम करना चाहिए, जो टेररिज्म फंडिंग है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, उसके विरुद्ध काम करना चाहिए, तो ये सब जो भारत कहता है, मांगता है, वो उसमें दिए हुए हैं। और पहलगाम इंसिडेंट के बारे में भी, जो पिछले साल 22 अप्रैल को हुआ था,
1: जी
0: जिसमें हमारे 26 लोग मारे गए थे, तो उसका भी इसमें पूरी तरीके से विवरण है। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो कि, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने, आपको याद होगा, कहा
1: जी
0: था जो हम ऐसा ये ब्रिक्स समिट करना चाहते हैं, ब्रिक्स की अपनी प्रेसिडेंसी करना चाहते हैं, जो कि पीपल सेंट्रिक हो,
1: बिल्कुल
0: जिसका फायदा लोगों को मिले, जिसमें ह्यूमैनिटी फर्स्ट हो, तो ये सारे जो 140 पैराग्राफ हैं इस डिक्लेरेशन के, वो सभी इसके बारे में ही बताते हैं, जो कैसे नेशनल करेंसीज में ट्रेड किया जाए, ट्रेड बढ़ाया जाए,
1: जी
0: निवेश बढ़ाया जाए, तो एनर्जी सिक्योरिटी कैसे की जाए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फूड सिक्योरिटी को कैसे आगे लेकर आया जाए, स्टार्टअप्स फंड कैसे किया जाए, विमेन और यूथ का इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा होना चाहिए ब्रिक्स के देशों में,
1: जी
0: तो ये सभी चीजें इसमें हैं। और मैं समझता हूं जो बहुत ही ये एक ठोस और बहुत ही अच्छा डिक्लेरेशन है, जो कि आगे चलते हुए सभी देशों का बहुत फायदा करेगा।
1: डॉक्टर पंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी हमने अंबेसडर सज्जन हार को सुना, उन्होंने काफी विस्तार में बताया है जो ये नई दिल्ली घोषणा पत्र 2026 आज अडॉप्ट किया गया है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्होंने कई बातें कही, पर जो सबसे अहम बात मुझे लगी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वसम्मति से अडॉप्ट कर पाए हैं हम बात, क्योंकि हमारे जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं और जो मेंबर नेशंस हैं उसमें सऊदी अरेबिया, यूएई एक तरफ है, ईरान एक तरफ है, तो इन सब बातों को देखते हुए आप इसको कितना अहम मानते हैं कि एक सर्वसम्मति से पास हुआ ये अडॉप्शन, और उसके अलावा आप क्या मानते हैं कि क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे?
2: जी धन्यवाद। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो एक कॉमन परसेप्शन था कि बड़ा भारत को मुश्किल आएगी कंसेंसस डॉक्यूमेंट अडॉप्ट करवाने में, और ब्रिक्स कहीं ऐसा ना हो कि लड़खड़ा जाए, वो मुझे लगता है कि भारत ने काफी अपनी डिप्लोमेटिक मेटल इस नेगोशिएशंस में दिखाई, और जो कंपीटिंग एजेंडास थे, चाहे वो ईरान और सऊदी अरब या यूएई के बीच में हो, डाइवर्जेंसेस थे, उनको पाटने में भारत की डिप्लोमेसी सफल रही। तो मुझे लगता है बड़ा अचीवमेंट है और एक ट्रेंड बनता जा रहा है अब G20 से लेकर ब्रिक्स तक, जहां भारत जो एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड हम वैश्विक अवस्था में जी रहे हैं, उसमें भारत एक एक तरह से देशों को साथ पिरोने में, कन्वर्जेंसेस ढूंढने में, कॉमन सॉल्यूशंस को आगे लाने में सफल होता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये भारत के जो ग्लोबल स्टेचर के लिए, ये भारत की डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल है कि भारत का रोल जो है वो दुनिया में, जब दुनिया में देश एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, उसमें भारत एक ऐसी व्यवस्था को लेकर आता है, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को लेकर आता है जहां पर एक देश जो देशों के बीच में खाई है उसको पाटने में भारत सफल हो पाता है। तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण एक मापदंड बनता जा रहा है भारत की डिप्लोमेसी के लिए। इसमें जो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि यूजुअली ब्रिक्स का जो एजेंडा होता है वो जियो इकोनॉमिक्स और जो SDG इश्यूज हैं
1: जी
2: उन पर वो काफी प्रबलता के साथ सामने आते हैं, लेकिन इस बार टेररिज्म के अलावा ये जो पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स की बात कर रहा है ब्रिक्स, और यूनिलैटरल वॉर मेजर्स ना आए इसकी बात कर रहा है, मुझे लगता है बड़े महत्वपूर्ण है कि ब्रिक्स आज अपने आप को एक जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म से जियो पोलिटिकल प्लेटफॉर्म
1: जी
2: की तरफ बनता नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, और ब्रिक्स आज ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आता है इस बात को कहने में कि जो भी दुनिया में बदलाव हो रहा है, उथल पुथल हो रही है, उसमें ब्रिक्स कहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकता है। जो पहले एक हिचक होती थी जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर बोलने की, वो हिचक अब खत्म होती नजर आ रही है।
1: आपने एक बहुत एक बहुत दिलचस्प बात कही कि ब्रिक्स जो है वो जियो इकोनॉमिक ग्रुपिंग से बढ़कर अब एक जियो पोलिटिकल ग्रुपिंग की तरफ बढ़ गया है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर इससे पहले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आज के सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कई बातें कही, और एक बात जो उन्होंने कही वो ये कि अभी समूह परिपक्व हो गया है। उन्होंने कहा कि इट हैज रीच्ड अ कमिंग ऑफ एज। पहले सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: आज ब्रिक्स भी अपने कमिंग ऑफ एज के क्षण में है। पिछले 20 वर्षों में ब्रिक्स ने वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बढ़ाई है। हम एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं और कंसेंसस से आगे बढ़ते हैं। हम किसी के विरुद्ध नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने की सोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, हम साफ तौर पर हमने जैसे भी सुना प्रधानमंत्री मोदी को, उन्होंने कहा कि ब्रिक्स जैसा एक विविध समूह जिसके भीतर इतने अंतर हैं, इतने डिफरेंसेस हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे अंदर हमारे भीतर काफी अंतर हैं, काफी डिफरेंसेस हैं, पर साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि इन डिफरेंसेस के बावजूद ब्रिक्स ने सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का रास्ता चुना है। इस टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं?
0: जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है, और इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहूंगा जो अभी उन्होंने कही और दोहराई, और वो उन्होंने कहा जो हम किसी के विरुद्ध नहीं।
1: जी
0: ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत कहा जा रहा था जो इसमें गुट में कुछ ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो कि इस गुट को एंटी वेस्टर्न बनाना चाहते हैं, पश्चिम देशों के विरुद्ध बनाना चाहते हैं। और वो पहले नाम लिए जाते थे, ईरान का तो यकीनन, क्योंकि ईरान के ऊपर इतने ये आक्रमण हुआ है, अभी भी हुआ है, पिछले साल भी हुआ है, उसके विरुद्ध कितने सैंक्शंस लगाए गए हैं, केवल अभी से नहीं परंतु दशकों से उसके ऊपर सैंक्शन लगे हैं। तो वो तो बिल्कुल एक एंटी वेस्टर्न फॉर्मुलेशन इसमें यकीनन चाहते थे, भाई इसको ग्रुप को हम एक एंटी वेस्टर्न ग्रुप के रूप में लेकर आए। और ये भी कहा जाता था क्योंकि रूस के ऊपर भी सैंक्शंस इतने लगाए गए, रूस के ऊपर ये जो यूक्रेन ने के ऊपर हमला किया रूस ने, और फिर जो सहायता दी जा रही है यूक्रेन को, तो वो भी चाहते थे जो ये इसको एंटी वेस्टर्न, और फिर चीन का भी ऐसा ही कहा माना जाता था जो रवैया है। परंतु उन्होंने कहा जो हम, और भारत का हमेशा पक्ष रहा है, जो हम एंटी वेस्टर्न नहीं है, हम नॉन वेस्टर्न है, हम पश्चिमी देशों के साथ नहीं हूं परंतु उनके विरुद्ध तो बिल्कुल नहीं है। और इसमें देखा जाए भारत के अपने बड़े अच्छे संबंध हैं, न केवल अमेरिका के साथ परंतु यूरोप के साथ और बहुत सारे पश्चिमी देशों के साथ। तो जो उन्होंने कहा है जो ये हम किसी के विरुद्ध नहीं है और हम कंसेंसस की बात करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए ये वाला जो गुट है इसमें करीब 49% से ऊपर जनसंख्या है पूरे विश्व की,
1: बिल्कुल
0: 40% है इसकी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी बहुत है, 26% है इसका वर्ल्ड ट्रेड का प्रपोर्शन, 40% है इसकी एनर्जी प्रोडक्शन, क्योंकि एनर्जी के बहुत इसमें जायंट्स आ गए हैं, रूस पहले था, अभी UAE, सऊदी अरेबिया, ईरान, इंडोनेशिया सभी मिलकर आ गए हैं, तो अगर ये इसमें इतना

0: ज्यादा आर्थिक शक्ति है, परंतु अगर ये एक आवाज से नहीं बोलेगा तो कोई इसकी आवाज को सुनेगा नहीं, कोई इसकी आवाज पर ध्यान नहीं देगा। परंतु ये हमने इस समय ये बता दिया है, प्रूफ कर दिया है, जो ये गुट, हालांकि इसमें इतनी विविधता है, परंतु फिर भी ये एक आवाज से सभी मिलकर बोल सकते हैं। और इसीलिए मेरे विचार से इस गुट का जो महत्व है और कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। अगर सभी अपनी अपनी अलग आवाज में बोलते, अगर हम कंसेंसस डिक्लेरेशन नहीं ले आ पाते जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, तो फिर इसका गुट का इतना महत्व नहीं होता जितना कि अब हो रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं जो कितने सारे देश हैं जो दरवाजे के बाहर खटखटा रहे हैं, वो भी अंदर आना चाहते
1: बिल्कुल
0: हैं, परंतु हम नहीं आने दे रहे हैं अभी, क्योंकि हम इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं अभी।
1: डॉक्टर पंत, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा से ग्लोबल साउथ के एक बड़े समर्थक रहे हैं, वोटरी रहे हैं, और इस बात पर जोर देते रहे हैं कि अब इसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आज भी अपने संबोधन में उन्होंने ग्लोबल साउथ का समर्थन किया। पहले सुनते हैं क्या कहा।
2: हमें ग्लोबल साउथ को रूल टेकर से रूल शेपर बनाने के लिए प्रयास करने होंगे। ब्रिक्स के माध्यम से हम ग्लोबल साउथ के देशों के युवा डिप्लोमेट्स और पॉलिसी मेकर्स को नेगोशिएशन स्किल्स, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और लीगल एक्सपर्टीज प्रदान कर सकते हैं। भारत इस विषय में लीड लेने के लिए तैयार है।
1: डॉक्टर पंत, अभी जैसा हमने सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्लोबल साउथ को नियम मानने वाले यानी कि रूल टेकर्स की जगह अब नियम बनाने वाले यानी कि रूल शेपर्स में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको लगता है कि, और इसमें भारत, उन्होंने कहा कि भारत इस बारे में एक अग्रणी भूमिका निभाने को तैयार है, जो भी ट्रेनिंग की जरूरत है वो हम देने के लिए तैयार है। तो क्या ब्रिक्स, ग्लोबल साउथ और जो पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके बीच का एक पुल जो है वो भारत की स्थिति कैसे और कितना मजबूत स्थिति है भारत की इसमें?
3: देखिए, दुनिया में जो इस समय उथल पुथल चल रही है और जो हमने अंतर्राष्ट्रीय जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने, वो जो पूरा स्ट्रक्चर ढांचा बना था ग्लोबल ऑर्डर का, वो चरमरा रहा है, वो शिथिल पड़ता जा रहा है। और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो ग्लोबल साउथ का हो रहा है, विकासशील देशों का हो रहा है। अगर आप दो युद्ध भी देखें जो यूरोप में रूस और यूक्रेन के बीच में है और मिडल ईस्ट में ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है, वो उसमें चाहे फूड सिक्योरिटी का इशू हो, एनर्जी सिक्योरिटी का इशू हो, सारे इश्यूज जो हैं वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट उनका सबसे गरीब देशों
1: बिल्कुल
3: पर पड़ रहा है, जो सबसे जो जो विकासशील देश है उन पर पड़ रहा है। और उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं, यूएन हो, डब्ल्यूटीओ हो, डब्ल्यूएचओ, वो काम नहीं कर रहे, ये बात बड़ी स्पष्ट है। तो भारत का पिछले कुछ सालों से ये सतत प्रयास रहा है कि कैसे इन देशों की आवाज को बुलंद किया जाए, इनकी प्रायोरिटीज को, इनके इंटरेस्ट को, इनके एस्पिरेशंस को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखा जाए, क्योंकि ग्लोबल गवर्नेंस का कोई मतलब नहीं अगर आप इनकी आवाजें नहीं सुन रहे। और बड़ी शक्तियां, ये बात बिल्कुल सही है, नहीं सुन रही हैं। तो कहां उसमें भारत ने जो लीड ली, जिस तरह से भारत अफ्रीकन यूनियन को G20 में का मेंबर बनाता है, और अब जो उसने अपनी ब्रिक्स की एजेंडा की जो रूपरेखा तैयार करी, उसमें अगर आप ध्यान से देखें, चाहे रेजिलियंस की बात वो करता है, चाहे इनोवेशन की करता है, चाहे कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी की करता है, इसके केंद्र में ग्लोबल साउथ है। तो
1: बिल्कुल
3: भारत हमेशा से न सिर्फ अपने हितों की बात कर रहा है मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स पर, बल्कि वो ग्लोबल साउथ के डेवलपिंग कंट्रीज के हितों की बात कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भारत अपने लिए कहता था कि भारत रूल टेकर से रूल शेपर की तरफ बढ़े, रूल्स बनाए बैठकर, वो बात आज प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के लिए कही कि ग्लोबल साउथ अगर रूल्स नहीं बनाता है तो उसको दूसरे के रूल्स पर ऑपरेट करना पड़ता है, और वो रूल्स ऐसे हैं जो उसको नुकसान देते हैं, उसको मार्जिनलाइज करते हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण पहल भारत की तरफ से हो रही है, और भारत उसको अपनी अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करने को तैयार है, चाहे वो DPI हो, चाहे वो लो कॉस्ट इनोवेशन हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो। और दूसरा, भारत कैपेसिटी बिल्ड करने को तैयार है ग्लोबल
1: जी।
3: साउथ के देशों में, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि डिप्लोमेसी

0: नेगोशिएशंस में हम कैसे उन देशों को ज्यादा सशक्त बना सकते हैं जो कमजोर पड़ जाते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पर, क्योंकि जो विकसित देश है उनके पास इतनी ताकत होती है डिप्लोमेसी की, या नेगोशिएटिंग पावर इतनी ज्यादा होती है कि कहीं पर ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग वर्ल्ड कमजोर पड़ जाता है। तो ये प्रयास भारत का लगातार जारी है, और मुझे लगता है आगे भी भारत के केंद्र में, भारतीय विदेश नीति के केंद्र में ग्लोबल साउथ और उनके एस्पिरेशंस रहेंगे।
1: बात अगर जब हम कर रहे हैं कि रूल टेकर्स से रूल शेपर्स बनने की बात कर रहे हैं ग्लोबल साउथ की, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि यूएनएससी है, यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, या जो विभिन्न फाइनेंशियल आर्थिक संगठन है, उनमें सुधार होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी एक मुद्दा है जो आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में उठाया।
2: यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। इस विषय पर टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए। जो देश ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देते हैं, उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को दिशा देने में भी उचित भूमिका मिलनी चाहिए।
1: जी अम्बेसडर सज्जनहार, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो प्रधानमंत्री ने बात की कि अब यूएन सुरक्षा परिषद में सुधार में और देरी नहीं की जा सकती, उन्होंने इसी तरह वित्तीय संस्थानों में भी वोटिंग पावर और लीडरशिप के पदों में प्राथमिकताओं की बात की है, ये आज की मौजूदा वर्तमान में जो वैश्विक सच्चाई है उसको दर्शाता है, और ये कितना जरूरी हो गया है।
3: जी, बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, मेरे विचार से ये वाले जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो बदलाव है, ये आज नहीं, ये कल हो जाना चाहिए था, परसों बहुत पहले हो जाना चाहिए था। और आपको याद होगा जो जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पद संभाला था और वो गए थे यूएन जनरल असेंबली में, तब उन्होंने कहा था जो एक साल में इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और कोई ना कोई निर्णय होना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए, क्योंकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल अभी वो रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है जो कि 1945 में थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब जो रियलिटीज थी उसको रिफ्लेक्ट करता है, आज के दिन की रियलिटीज रिफ्लेक्ट नहीं करता। और अगर उसको ठीक तरीके से काम करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो मल्टीलैटरलिज्म हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो, एकदम शिथिल पड़ चुका है, एकदम इतने उसका सबसे बेसिक

0: बड़ा या जिसे कहा जाए गेम चेंजिंग या मेजर अनाउंसमेंट होगा दोनों देशों के
1: जी
0: द्विपक्षीय संबंधों के बारे में, परंतु फिर भी मैं समझता हूं जो जो हमारे संबंध ठीक होते हुए चल रहे हैं तो
1: हाँ
0: उसको और ज्यादा कंसोलिडेट किया जाएगा। थोड़ा सा दोनों देशों के बीच में, दोनों नेताओं के बीच में विश्वसनीयता को और आगे लाने का प्रयास किया जाएगा, और जिससे कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, जो हमारे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जो हमारा 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है, रिकग्नाइज्ड वो नहीं है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, उसके ऊपर पीस और ट्रैंक्विलिटी रहनी चाहिए, उसके ऊपर शांति रहनी चाहिए। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में चीन ने उनके ऊपर बहुत इनकर्शंस किए हैं, 2013 में, 2014 में, 2017 में,
1: जी
0: 2020 में तो गलवान हुआ।
1: बिल्कुल
0: तो वो जो बॉर्डर है वो स्टेबल होना चाहिए, वो स्थिर होना चाहिए
1: जी,
0: और वहां पर शांति रहनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी।
1: चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन इससे पहले सीधे चलते हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद कुमार के साथ जो इस वक्त मौजूद हैं भारत मंडपम में। आनंद, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: हाँ जी अनुभा,
1: जी आनंद, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के पूरे दिन की गतिविधियां जो रही, अब उसके बाद आज जो नई दिल्ली डिक्लेरेशन भी अडॉप्ट हो गया, अब कल जो दूसरा दिन है इस शिखर सम्मेलन का, कल के लिए क्या कार्यक्रम है और कल क्या क्या होने की संभावना है?
2: अनुभा ब्रिक्स सम्मेलन के कल दूसरे और अंतिम दिन ब्रिक्स के साझेदार देश समावेशी वैश्विक विकास के भविष्य को आकार देने संबंधित विषय पर आयोजित सत्र में भाग लेंगे। इस सत्र के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान, फिलीपींस, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका और बुरुंडी के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नाइजीरिया और युगांडा के उपराष्ट्रपति से भी वार्ता करेंगे। आज ब्रिक्स के जैसे 20 वर्ष पूरे हुए हैं तो इसके उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने दो
1: जी
2: स्मारक डाक टिकट भी जारी किए।
1: जी
2: सत्र के आज समापन के बाद सदस्य देशों के नेताओं ने भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया और बाद में सभी ने बरगद के पौधे भी लगाए। जी अनुभव,
1: आनंद, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी डॉक्टर पंत, मैं आप पर वापस आना चाहूंगी। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की जो द्विपक्षीय वार्ताएं आज हुई, उनमें हमने अभी बात करी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज ब्रिक्स के जो अन्य सदस्य देश हैं, इथियोपिया और यूएई, और जो भागीदार देश हैं मलेशिया और वियतनाम, इनके नेताओं से भी मुलाकात की। दो राष्ट्रों के बीच जब इस तरह के मजबूतों का संबंध को मजबूत करने के लिए इस तरह की जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं वो कितनी महत्वपूर्ण है, खासकर व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, राजनीतिक और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए।
3: देखिए, जब भी किस तरह के मल्टीलैटरल इवेंट्स होते हैं, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है कि देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे से मिलें
1: जी
3: और जो अपने जो कॉमन इंटरेस्ट की बात है वो करें। और मुझे लगता है इसमें भारत ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए सभी देशों के साथ मुलाकात की है, और जिसका भी आनंद जी
1: जी
3: बता रहे थे कल भी वार्ताएं होंगी,
1: बिल्कुल
3: लेकिन भारत की जो रूस के साथ, चीन के साथ और वियतनाम जैसे देशों के साथ जो वार्ता हो चुकी है
1: जी
3: वो मुझे लगता है अपने आप में भारत भारत का भी एक जो बायलैटरल जो रिलेशनशिप्स हैं भारत की उनको सुदृढ़ करने में काफी योगदान देंगी। और आगे जैसे जैसे ये
1: जी
3: संबंध और गहरे होंगे हम ऐसी द्विपक्षीय वार्ताओं को और प्लेटफॉर्म्स में भी होते हुए देखेंगे।
1: अम्बेसडर अशोक सज्जनहार और डॉक्टर हर्ष पंत, आप आकाशवाणी की सुर्खियों में कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए।
4: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और मुकेश के युगल स्वर में पेश है पारसमणि फिल्म का गीत। फारूक कैसर के गीत को संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अब सुनिए एक फूल दो माली फिल्म का गीत। प्रेम धवन के गीत को सुरों में ढाला है रवि ने, आवाज आशा भोसले की।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है छोटे से अंतराल का।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: बरसात के सुहाने मौसम में जगह जगह गड्ढों में भरने लगता है गंदा पानी, कीचड़ गंदगी का फैल जाता है साम्राज्य, भिन भिन आती है मक्खियाँ, पनपने लगते हैं मच्छर, मौसमी बीमारियाँ देने लगती हैं दस्तक।
1: दिल करे हाय हाय, कोई ये बताए क्या होगा।
2: हमें कुछ नहीं होगा अगर हम सभी अपने घर और आसपास सफाई रखें, गड्ढों में पानी न जमा होने दें, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की शुद्धता का ध्यान रखें, ताज़ा हल्का भोजन करें, खुले में रखें, कटे फल और खाद्य पदार्थ न खाएं,
0: और
2: फिर लें आनंद इस मौसम का।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:45 होने को है। कुछ ही क्षणों में समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। मुख्य समाचार। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया, बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। कहा, मतभेदों का को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत वांछित अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराया और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालिंका

0: का सामना एलिना रिबाकिना से। और अब समाचार विस्तार से। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में इस घोषणा पत्र को अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। श्री मोदी ने कहा कि निर्णयों और उनके परिणामों के बीच के अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। ब्रिक्स के ग्लोबल वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सदस्य देशों के नेताओं ने 2 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र 3 पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा।
1: गवर्नेंस का वर्तमान स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा दिखाई देता है। हमें इस पिरामिड अब प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म अब पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 प्रपोजल्स तैयार करें।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपनी कार्यप्रणाली में सुधार से करनी होगी।
1: अब समय है कि हम ब्रिक्स में हमारी एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदले। अगले 20 वर्षों के लिए हमें एक नए और एम्बिशियस एजेंडा पर काम करना होगा। इसकी शुरुआत हमें अपने खुद के वर्किंग सिस्टम से करनी होगी। ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, किंतु इसकी वजह से हमारा इंस्टीट्यूशनल मोमेंटम नहीं रुकना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
1: क्या हम सी फेरर्स इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटी और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं।
1: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है।
0: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकताओं पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए।
1: रिप्रेजेंटेशन के संबंध में मैं कहना चाहूंगा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। पर टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंस

0: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशंस और पॉलिसी प्रायोरिटीज आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति भारत की विभिन्न स्तरों पर वर्षों से चले सहयोग के परिणाम स्वरूप संभव हुई है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आज विदेश मंत्रालय के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाना भारत की अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक था। उन्होंने कहा कि आज के सत्र में ब्रिक्स नेताओं ने अपने अपने राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बात की, लेकिन बहुपक्षवाद को मजबूत करने और वैश्विक शासन संस्थानों को अधिक प्रतिनिधि, समावेशी, प्रभावी और आज की वास्तविकताओं के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता पर व्यापक सहमति थी।
2: मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप नई दिल्ली घोषणा पत्र को देखें तो ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। ब्रिक्स नेताओं ने पिछले साल जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की भी कड़े शब्दों में निंदा की है।
3: जम्मू एंड कश्मीर दैट टुक प्लेस लास्ट ईयर।
1: ब्रिक्स देशों ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी का उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो।
4: ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन जारी घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई। उन्होंने सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की जिनसे स्थिति और खराब हो सकती है। ब्रिक्स नेताओं ने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति, सुरक्षा और स्थिरता का रास्ता तलाशने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों को लागू करने का भी आह्वान किया। उन्होंने सभी पक्षों से गाजा पट्टी में युद्ध विराम और मानवीय सहायता की पूर्ण तथा निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने की अपील की। ब्रिक्स नेताओं ने दोहराया कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का समाधान केवल बातचीत से ही संभव है। आतंकवाद पर ब्रिक्स देशों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि आतंकवाद का कोई भी रूप पूरी तरह अनुचित है। ब्रिक्स देशों ने पिछले साल 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया। सुपर्णा सैकिया के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज पुष्टि की कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। इससे पहले दिन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान इथियोपिया, मलेशिया और वियतनाम के प्रधानमंत्रियों तथा अबू धाबी के युवराज के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने सबसे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉ आबी अहमद अली के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से चर्चा की। इसके बाद श्री मोदी ने मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा तथा दोनों देशों के लोगों के संबंधों सहित विभिन्न क्षेत्रों पर सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग के साथ बैठक में श्री मोदी ने भागीदार देश के रूप में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वियतनाम का स्वागत किया। और प्रधानमंत्री ने अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ भी वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी के महत्व को दोहराया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेस पारिल्ला से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच दक्षिण दक्षिण सहयोग पर सार्थक बातचीत हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ कुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया है। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
0: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने गुजरात में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और कच्छ में भारी बारिश होने का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी कल बारिश हो सकती है। विभाग ने कहा कि बिहार, झारखंड और अंडमान व निकोबार में गरज के साथ बौछारें गिर सकती हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इस बीच केरलम और माहे में कल गर्म और उमस भरा मौसम रहने के आसार हैं। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल आज रात एलिना रायबाकिना और आर्यना सबालिंका के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में एलिना ने कोको गॉफ को और आर्यना ने जेसिका पेगुला को हराया था। पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वेरेव के बीच खेला जाएगा। सेमीफाइनल में बेन शेल्टन ने फ्रांसिस टियाफो को और अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने करेन खचनोव को पराजित किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ब्रिक्स देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपनाया। बहुपक्षवाद को मजबूत करने और व्यापक सहयोग के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा पत्र में सदस्य देशों के बीच गहन आर्थिक और विकासात्मक सहयोग का आह्वान। पश्चिम एशिया सहित सभी विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए संवाद और कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह। भारत ने कहा, घोषणा पत्र को अपनाया जाना भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के प्रमुख परिणामों में से एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, निर्णयों और परिणामों के बीच अंतर को साझेदारी और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से पाटना होगा। कहा, ब्रिक्स सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्विपक्षीय बैठक में रणनीतिक और दीर्घकालिक संबंधों पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की और अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में आज रात मौजूदा चैंपियन आर्यना सबालिंका का सामना एलिना रायबाकिना से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। BRICS nations adopt New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action. Emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds a series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries.

0: In other news, the Central Bureau of Investigation, CBI, today successfully secured the extradition of Red Notice subject Amritpal Singh, alias Gurpal Singh, from Moldova to India. The wanted fugitive was extradited by the CBI in coordination with the Ministry of External Affairs, the Ministry of Home Affairs and Punjab Police. A team of four members of Punjab Police was sent to Moldova to bring back the fugitive. The investigation agency said he was wanted in multiple serious criminal cases registered in Punjab. In hockey, India stormed into the final of the Women Junior Asia Cup 2026, defeating South Korea 5-1 in Mochi, China today. India will face hosts China in the final clash of the tournament. For India, Supriya scored a hat-trick, while Madhusudan and Sukhvir Kaur also found the net, while Yuri Jeong scored South Korea's only goal of the match. In US Open tennis, defending champion Aryna Sabalenka will take on Elena Rybakina in the women's singles final tonight, while Alexander Zverev will face Ben Shelton in the US Open men's singles final tomorrow. Top seed Zverev of Germany defeated Karen Khachanov of Russia in the first semi-final, while 8th seed Shelton beat 11th seed American Francis Tiafoe in the other. In the women's semi-finals, top seed Sabalenka defeated 3rd seed Jessica Pegula, while 2nd seed Rybakina beat 4th seed Coco Gauff. In women's doubles, Katerina Siniakova and Taylor Townsend won the title, defeating Americans Robin Montgomery and Ashlyn Kruger in the final. In cricket, India will begin their three-match T20I series against Afghanistan at Arun Jaitley Stadium in Delhi tomorrow. All three matches are scheduled at the same venue. The Inter Meteorological Department has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with extremely heavy rainfall over Gujarat region tomorrow. The Weather Department said Madhya Pradesh, West Madhya Pradesh, Saurashtra and Kutch are expected to face heavy to very heavy rainfall. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. BRICS nations adopt New Delhi Declaration 2026, reaffirming commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation. Declaration calls for economic and developmental cooperation among member states, urges dialogue and diplomacy to resolve disputes, particularly in West Asia. New Delhi says adoption of the declaration among defining outcomes of India's BRICS chairship. Prime Minister Narendra Modi says gap between decisions and outcomes must be bridged through partnership and collective action, emphasizes BRICS moving forward with approach of taking everyone along. Prime Minister Modi and President of China Xi Jinping stress for strategic and long-term perspective of ties in their bilateral meeting, assert differences should not become disputes. Mr. Modi holds series of bilateral meetings with his counterparts from BRICS countries. CBI secures extradition of Red Notice fugitive Amritpal Singh from Moldova, and in US Open, defending champion Aryna Sabalenka to take on Elena Rybakina in women's singles title clash tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: Aadab, ye Akashwani hai, khabron ke saath main Abdul Wahid. ब्रिक्स मुल्कों ने ज्यादा मजबूत कसीर रुखी निजाम और इश्तराक बढ़ाने के अपने अहद का इरादा करते हुए नई दिल्ली एलामिया 2026 मंजूर किया है। इसमें मेंबर मुल्कों के माबेन और ज्यादा इक्तसादी और तरक्याती इश्तराक के लिए कहा गया है। तनाज़ात खासतौर पर मगरबी एशिया के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर दिया गया है। भारत ने कहा है कि नई दिल्ली एलामिया का मंजूर होना भारत की ब्रिक्स सदारत के अहम नतायज में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फैसलों और नतीजों के दरमियान फर्क को साझेदारी और इज्तिमाई इकदामात के जरिए दूर किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि ब्रिक्स हर एक को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनफिंग ने अपनी दो तरफा बातचीत में ताल्लुकात के कलीदी और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र पर जोर दिया। जनाब मोदी ने ब्रिक्स मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म के साथ दो तरफा बातचीत की। सीबीआई रेड कॉर्नर नोटिस के तहत मफरूर मुलजिम अमृतपाल सिंह को मोल्डोवा से भारत ले आई है। और यूएस ओपन टेनिस में आज रात ख्वातीन सिंगल्स के फाइनल में पिछली बार की चैंपियन अरियाना सवलेंका और एलिना रवेकिना आमने सामने होंगी। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स मुल्कों ने ज्यादा मजबूत कसीर रुखी निजाम और इश्तराक बढ़ाने के अपने अहद का इरादा करते हुए नई दिल्ली एलामिया 2026 मंजूर किया है। इसमें मेंबर मुल्कों के माबेन और ज्यादा इकतसादी और तरक्याती इश्तराक के लिए कहा गया है। इसमें तनाजियात खासतौर पर मगरबी एशिया के तनाजे के पुरअमन हल के लिए मुजाकरात और सिफारतकारी पर जोर दिया गया है। ब्रिक्स मुल्कों ने दुनिया के कई हिस्सों में जारी महाजाराई और लड़ाई नेज़ बैनुल-अक़वामी निज़ाम में बिखराव और इख्तलाफात की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के पहले दिन मंजूर किए गए नई दिल्ली एलामिया में रहनुमाओं ने एक ऐसा कसीर रुखी रवैया अख्तियार किए जाने की हिमायत की जिसमें अहम आलमी उमूर पर मुख्तलिफ मुल्कों के अलग अलग नुक्ते नज़र और मौक़िफ का एहतराम किया जाए। इनमें पायदार तरक्की, भुखमरी और गुर्बत का खात्मा और आबो हवा की तब्दीली के ताल्लुक से आलमी सतह पर इकदामात के मामले शामिल हैं। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के तबादले ख्याल से यह बात नुमाया हो गई है कि फरसूदा इदारे बदलती हुई दुनिया का निज़ाम नहीं चला सकते, और साथ ही उन्होंने इस बात को उजागर किया कि नुमाइंदगी इकदामात करने और ज़ाबते मुरत्तब करने में इस्लाहात लाजमी हैं। जनाब मोदी ने कहा कि रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजियां तैयार करने और इनसे वाबस्ता जाबते मुरत्तब करने में ग्लोबल साउथ की मसावियाना शमूलियत होनी चाहिए। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जो नई दिल्ली एलामिया मंजूर किया गया है उसमें मेंबर मुल्कों के मुश्तरका अज़्म के लिए वाज़ह सिमत तय की गई है। जनाब मोदी ने कहा कि इन वादों और अहद को हकीकी नतीजों में बदलना अब मुल्कों की मुश्तरका जिम्मेदारी है।
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: ब्रिक्स रहनुमाओं ने जम्मू और कश्मीर में पिछले साल 22 अप्रैल के दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने के अहद को दोहराया। इससे पहले आज सपहर नई दिल्ली के भारत मंडपम में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 का आगाज हुआ। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अपने खिताब में तसलसल और अमल दरामद से मुतअल्लिक ब्रिक्स तरीक़े कार तजवीज़ किया ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर साल ब्रिक्स की सदारत किसी दूसरे मुल्क के हाथ में आने के बावजूद ग्रुप की इदाराजाती रफ्तार बरकरार रहे। वज़ीरे आज़म ने कहा कि इस तरीक़े कार की बदौलत ट्रायोका के जरिए सभी इकदामात पर आगे की कार्रवाई और नतीजों को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। वज़ीरे आज़म ने कहा कि ब्रिक्स मुल्कों को अगले 20 साल के लिए एक नए और बड़े एजेंडे पर काम करना होगा। जनाब मोदी ने मल्लाहों के लिए इमरजेंसी इमदादी नेटवर्क कायम करने की तजवीज़ भी पेश की ताकि मुश्किल की घड़ी में इमदाद में सहूलत की खातिर बहरी हुक्काम और मुतअल्लिका मुल्कों के सफारती मिशनों को बाहम मुंसलिक किया जा सके।
2: क्या हम सी फेरर इमरजेंसी सपोर्ट नेटवर्क बना सकते हैं? इसके माध्यम से संबंधित देशों की मैरिटाइम अथॉरिटीज और मिशंस को जोड़ा जाएगा। इससे डिस्ट्रेस अलर्ट्स, मेडिकल असिस्टेंस, परिवारों को सूचना तथा इवैक्यूएशन में सहयोग दिया जा सकता है।
1: वज़ीरे आज़म मोदी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि ब्रिक्स मुल्कों के माबेन इत्तेहाद और इत्तेफाक राय को आलमी मंजरनामे पर ठोस नतीजों की शक्ल दी जाए। जनाब मोदी ने कहा कि भारत की सदारत में मजबूती, इख्तिरा, तआवुन और पायदार तरक्की भारत की अवलीन तरजीहात रही हैं। इन तरजीहात से रहनुमाई हासिल करते हुए भारत ने ब्रिक्स इश्तराक को सीधे आम आदमी के साथ जोड़ने पर खास जोर दिया है। वज़ीरे आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर बुहरान के मामले में तो ग्लोबल साउथ पेश पेश है लेकिन फैसला साजी के एतबार से सबसे पीछे है। अक़वामे मुत्तहदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात के मामले पर वज़ीरे आज़म ने जोर देकर कहा कि अब इसे और मुअख्खर नहीं किया जा सकता।
2: यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म अब और टाला नहीं जा सकता। टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस को निश्चित समय सीमा और स्पष्ट परिणाम से जोड़ना होगा। उसी तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वोटिंग पावर, लीडरशिप पोजीशन और पॉलिसी प्रायोरिटी आज की इकोनॉमिक रियलिटीज के अनुसार होनी चाहिए।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने यह बात दोहराई है कि भारत और चीन को अपने ताल्लुकात के सिलसिले में एक कलीदी और तवील मुद्दती नुक्ते नज़र अपनाना चाहिए और इख्तलाफात को तनाज़े की शक्ल इख्तियार नहीं करनी चाहिए। आज नई दिल्ली में ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर अपनी दो तरफा बातचीत के दौरान दोनों रहनुमाओं ने पिछले साल अगस्त में तियानजिन की अपनी गुज़श्ता मुलाकात के बाद से भारत चीन बाहमी ताल्लुकात में लगातार पेशरफ्त होने का खैर मकदम किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया कि दोनों फरीकों को तीन बाहमी अवामिल से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए। इनमें बाहमी एहतराम, बाहमी मफाद और बाहमी एहसास शामिल हैं। जनाब मोदी ने जोर देकर कहा कि सरहदी इलाकों में अमन व इस्तेहकाम बाहमी ताल्लुकात के मुसलसल फरोग के लिए ज़रूरी बुनियाद है। इससे पहले दिन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के मौके पर इथोपिया, मलेशिया और वियतनाम के वज़राए आज़म के साथ साथ अबूज़हबी के वलीअहद शहजादे के साथ दो तरफा बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स रुकन ममालिक ने मगरबी एशिया में जारी बढ़ती कशीदगी पर तश्वीश का इजहार किया और ज्यादा से ज्यादा तहमुल बरतने के साथ साथ ऐसी कार्रवाइयों से गुरेज करने पर जोर दिया जिससे सूरत हाल में मजीद कशीदगी पैदा हो। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों के मुताबिक शहरियों और शहरी बुनियादी ढांचे के तहफ़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। ममालिक ने बातचीत और सिफारतकारी के जरिए कोशिशों में इजाफे की हौसला अफजाई की ताकि खत्ते में देरपा अमन, सलामती और इस्तेहकाम के सिलसिले में तवील मुद्दती आपसी समझबूझ पैदा हो सके। ब्रिक्स रुकन ममालिक ने बैन अल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुकम्मल तहफ़ुज़ात के तहत शहरी बुनियादी ढांचे और पुरम न्यूक्लियाई सहूलतों पर जानबूझकर किए गए हमलों पर भी गहरी तशवीश जाहिर की। उन्होंने गुज़श्ता बरस 22 अप्रैल को दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की कि जो जम्मू कश्मीर में किया गया था। ब्रिक्स रुकन ममालिक ने सरहद पार दहशतगर्दों की नकलो हरकत, दहशतगर्दी की माली एयानत और उसके लिए महफूज पनाहगाहों समेत हर तरह की दहशतगर्दी से निमटने के अज़्म का भी इआदा किया। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: वजारत खारजा ने आज कहा है कि भारत की ब्रिक्स की सदारत के दौरान मुख्तलिफ सतहों पर एक साल तवील राबतों के सबब ब्रिक्स सरबराह मीटिंग में नई दिल्ली ऐलानिया पर इत्तफाक राय हो पाया है। आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में मीडिया से बातचीत करते हुए इक्तसादी ताल्लुकात शोबे के सेक्रेटरी सुधाकर दलेला ने कहा कि नई दिल्ली ऐलानियों को इख्तियार किया जाना भारत की सदारत के अहम नतायज में से एक है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत की सदर नशीनी लोगों पर मरकूज रही है। जनाब दलेला ने भारत की सदारत के दौरान अपने तआवुन के लिए ब्रिक्स ममालिक का शुक्रिया अदा किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में मलेशिया के सरमायाकारी, तजारत और सनत के वजीर दातुक सेरी जोहारी अब्दुल गनी के साथ दो तरफा मीटिंग की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि मीटिंग के दौरान तरफैन ने भारत मलेशिया इक्तिसादी शराकत दारी का जायजा लिया और बाहमी तजारत और सरमायाकारी को फरोग देने, बाजार तक रसाई को बेहतर बनाने और सप्लाई चेन राबतों को मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि भारत बाहमी तौर पर और भारत आसियान तरीक़ेकार के तहत तजारत और इक्तिसादी ताल्लुकात के तमाम तर इम्कानात की खातिर मलेशिया के साथ करीबी तौर पर इश्तराक के लिए मुसलसल पुरअज़्म है। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज भारत आसियान बुनियादी ढांचे, सरमायाकारी, बैंक, AIIB शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया। वजीर खजाना ने नई दिल्ली में AIIB की सदर जू जीआई से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वजारत खजाना ने कहा कि भारत में बुनियादी ढांचे और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की तरजीहात में मदद फराहम करने, मकामी करेंसी में माली मदद में इजाफे, निजी शोबे की शराकत दारी को बढ़ाने और AIIB की आलमी मौजूदगी के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। मरकजी जांच ब्यूरो CBI ने रेड कॉर्नर नोटिस पर अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मलडोवा से भारत लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। वजारत खारजा, वजारत दाखिला और पंजाब पुलिस के साथ तालमेल कायम करके CBI इस मतलूबा मफरूर मुलजिम को भारत लाई है। पंजाब पुलिस की चार अहलकारों की एक टीम को मफरूर मुलजिम को वापस लाने के लिए मालडोवा भेजा गया था। तहकीकाती एजेंसी ने कहा है कि पंजाब में रजिस्टर्ड संगीन नौयत के कई फौजदारी केसों में उसकी तलाश थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यहूदियों के नए साल रोश हशनाह के मौके पर इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू, इसराइल के अवाम और दुनिया भर में यहूदी बिरादरी को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि यह नया साल हरेक के लिए अम, तंदुरुस्ती और तरक्की लेकर आएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि गैर मुल्की करेंसी से मुतल्लिक नॉन रेजिडेंट बैंक और दीगर स्कीमों के जरिए आने वाली रकूमात में काफी इजाफा हुआ है। एक प्राइवेट टेलीविजन चैनल के साथ इंटरव्यू में आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि बड़ी रकूमात की आमद से भारत के मैक्रो इक्तसादी बुनियादी अवामिल में एतमाद की अक्कासी होती है और मुख्तसर मुद्दत के अंदर गैर मुल्की सरमाया को रागिब करने की सलाहियत का इजहार भी होता है। बैंकारी निजाम में इजाफी नकद रकम की दस्तियाबी के बारे में जनाब मल्होत्रा ने कहा कि नकद रकम के बंदोबस्त के लिए रिजर्व बैंक के पास मुनासिब तरीक़ेकार हैं और वो ज़रूरत के लिहाज से इनका इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने आज जम्मू कश्मीर में 10 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। इनमें कुपवाड़ा, कुलगाम, बांदीपुरा, बारामूला और सुपोर शामिल हैं। तलाशी की यह कार्रवाई सरहद पार दहशतगर्दी की एक साजिश के सिलसिले में की गई है, जिसमें दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के पाकिस्तान से काम करने वाले आका और मकामी कारिंदों के मुबैना नेटवर्क के मुलविस होने की बात कही गई है। तलाशी की कार्रवाई के दौरान इसके से व्यवस्था काबिल एतराज मवाद जब्त किया गया, जिसकी जांच की जा रही है। यूएस ओपन टेनिस में आज रात खवातीन सिंगल्स के फाइनल में दिफाई चैंपियन अरियाना सवलेंका और एलिना रवकीना का मुकाबला होगा। मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में कल अलेक्जेंडर ज़वरेव और बेन शेल्टन आमने सामने होंगे। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। ब्रिक्स मुल्कों ने ज्यादा मजबूत कसीर रुखी निजाम और इश्तराक बढ़ाने के अपने अहद का इरादा करते हुए नई दिल्ली एलामिया 2026 मंजूर किया है। इसमें मेंबर मुल्कों के माबेन और ज्यादा इकतसादी और तरक्याती इश्तराक के लिए आ गया है। तनाज़ात खासतौर पर मगरबी एशिया के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर दिया गया है। भारत ने कहा है कि नई दिल्ली ऐलामिया का मंजूर होना भारत की ब्रिक्स सदारत के अहम नतायज में से एक है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि फैसलों और नतीजों के दरमियान फर्क को साझेदारी और इज्तमाही इकदाम के जरिए दूर किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात को उजागर किया कि ब्रिक्स हरेक को साथ लेकर चलने की हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने अपनी दो तरफा बातचीत में ताल्लुकात के कलीदी और तवील मुद्दती नुक्ते नजर पर जोर दिया। जनाब मोदी ने ब्रिक्स मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म के साथ दो तरफा बातचीत की। CBI रेड कॉर्नर नोटिस के तहत मफरूर मुलजिम अमृतपाल सिंह को मोल्डोवा से भारत ले आई है और यूएस ओपन टेनिस में आज रात खवातीन सिंगल्स के फाइनल में पिछली बार की चैंपियन अरियाना सवलेंका और एलिना रेवेंका आमने सामने होंगी। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। संस्कृति को अगर किसी एक शब्द में समझना हो तो संभवतः वो शब्द होगा जीवन। हम किन परंपराओं को सजोते हैं, किन नदियों के किनारे अपनी स्मृतियां छोड़ते हैं, किन पर्वों में सामूहिक उल्लास के रंग भरते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या गाते हैं, किस भाषा और बोली में अपनी पीड़ा दर्ज करते हैं, इन सब में हमारी संस्कृति सांस लेती है। और इसीलिए भाषा भी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, भाषा में हमारी स्मृतियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं, हमारी जीवन दृष्टि है। जरा सोचिए, हमारी दादी नानी की कही कोई पुरानी बात, गांव की कोई लोक कथा, किसी त्योहार का गीत, किसी रिश्ते को पुकारने का अपना अलग ढंग, क्या ये महज शब्द है? नहीं, इन शब्दों में एक पूरी जीवन पद्धति होती है। एक समाज, उसकी स्मृतियां, उसकी परंपराएं और उसकी संवेदनाएं। दरअसल भाषा और बोलियां संस्कृति की सबसे जीवंत आवाज हैं। हम जैसा जीते हैं वैसा ही बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हमारे देश की खूबसूरती ही इसकी विविधता है। यहाँ भाषा बदलती है तो उसके साथ लोक बदलता है, लय बदलती है, संबोधन बदल जाते हैं, लेकिन भावनाओं की धड़कन वही रहती है। हिंदी की अपनी खूबसूरती इसी में है कि उसने इस विविधता से संवाद किया। अलग अलग भारतीय भाषाओं, बोलियों और लोक परंपराओं से शब्द और भाव ग्रहण किए, यहाँ तक कि विदेशी भाषाओं से भी। इसीलिए हिंदी कोई बंद कमरा नहीं, बल्कि कई दिशाओं से आती हुई सांस्कृतिक हवाओं के लिए एक खुली खिड़की है। और जब कोई भी भाषा संस्कृति को अपने भीतर समेटती है तो वो सिर्फ बोलने का माध्यम नहीं रहती, वो हमें अपने होने का अर्थ भी बताती है। भाषा से संस्कृति की ओर और संस्कृति से प्रकृति की ओर, अब एक ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता केवल पैरों से नहीं स्मृतियों और संवेदनाओं से भी तय होता है। नर्मदा, जिसे भारत की जीवनदायिनी नदियों में से एक माना जाता है, जिसके तटों पर सभ्यताएं, लोक विश्वास और अनगिनत कथाएं आकार लेती रही हैं। विश्व नदी दिवस के उपलक्ष्य में सुनिए प्रख्यात चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़ के स्वरों में उनकी नर्मदा परिक्रमा के वृत्तांत का एक अंश, तीरे तीरे नर्मदा।
1: हम लोग नर्मदा पदयात्रा कर रहे थे और अमरकंटक जा रहे थे। छिनगांव का कुआं गांव के बाहर एक घाटी में था। मेरे साथी बड़े सवेरे वहां जाकर नहाए। मैं गया जरूर पर नहाया नहीं, ठंड के कारण हिम्मत ही न हुई। मन को समझाया, नहाऊंगा तो नर्मदा में, कुओं तालाबों पर नहीं। कह हंसा मोती चुगे, कह भूखे रही जाए। छिनगांव से बरछा, कच्ची धूल भरी सड़क से उतरने लगे तो नीचे दूर मैदान में से बहती हुई धूप नहाई नर्मदा दिखाई दी। अब प्राय अमरकंटक तक नर्मदा मैदान में से ही बहती है। पंचमनाथ पुजारी जब 48 बरस का था तभी पत्नी का देहांत हो गया था। अभी 70 का है और पूरी तरह से स्वस्थ है। कहता है, मैं बाहर भी हूं और भीतर भी हूं। अगर हम लोग भी बीच बीच में भीतर चले जाया करें और देखते रहें कि कहीं हमारी आत्मा को फफूंद तो नहीं लग गई तो कितना अच्छा हो। दूसरे दिन भी लगातार पानी बरसता रहा। हम कहीं जा नहीं सकते, लेकिन किसानों को कई दिनों से इस वर्षा की प्रतीक्षा थी। उनकी फसल सूख रही थी, उसे नया जीवन मिला। वैसे किसानों को इससे कहीं अधिक पानी की जरूरत थी। बादलों को आकाश से नीचे उतारने की विद्या केवल वनों को आती है और हम अपने अधिकांश वन काट चुके हैं। अब बादलों को आकाश की अटारी से नीचे धरती पर भला कौन उतारे। रात लुकामपुर में रहे, रात्रि के अंतिम प्रहर में ओस गिरनी शुरू हो गई थी। एक तो कड़ाके की ठंड, ऊपर से ओस की बुंदनियां, सवेरे घना कोहरा। कोहरे के छटने का काफी इंतजार किया, लेकिन छटा नहीं तो कोहरे और ओस की फुहार में ही चल दिए। चलते चलते आसपास के सौंदर्य को मन में उतारता जाता, सोचता क्या इस सौंदर्य की गूंज अपनी कृतियों में पैदा कर सकूंगा, लेकिन इसकी चिंता अभी क्यों करूं, अभी तो इसका भरपूर आनंद लूं, अपने हृदय में उतार लूं और पकने के लिए वहीं छोड़ दूं। समय आने पर वह स्वयं बाहर आएगा, इसमें समय लगता है। अगर मैं कलाकार हूं तो मुझ में धैर्य होना चाहिए। दोपहर को खाना नहीं बनाते, लेकिन रामघाट के प्रपातों को देखकर लगा कि आज खाना यही बने। देर तक मैं उन प्रपातों के पास मड़राता रहा। शाम तक दूधी संगम पहुंच गए, लेकिन एक ग्रामीण ने कहा कि आप दूधी पार करके हर्रा जाइए, वहां कहीं न कहीं रहने की व्यवस्था हो जाएगी। आधी रात को आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्र था, चंदन का घाट और पूनो का चांद। अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान मुझे कई पूर्णिमाएं देखने का अवसर मिला है, और हर बार मैंने नई नई उपमाओं से चांद और चांदनी का वर्णन किया है। सवेरे आगे बढ़े, बसंतपुर और कंचनपुर होते हुए ठाड़ पातर पहुंचे। इस बार की यात्रा में एक सुखद परिवर्तन देखने मिला। अधिकांश गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खुल गई हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। जहां भी शाला मिली हम वहां जरूर गए, और शिक्षक से अनुमति लेकर मैं बच्चों को नर्मदा के बारे में बताता। अगर बच्चे जरा बड़े होते तो अपनी पुस्तक सौंदर्य की नदी नर्मदा में से उनके गांव से संबंधित अंश पढ़कर सुनाता। नर्मदा तट के कई गांवों में मैंने बच्चों के समक्ष रचना पाठ किया, उसी निष्ठा से जिस निष्ठा से नवंबर 2001 में भोपाल के भारत भवन में साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों के समक्ष किया था। ठाड़ पाथर की पाठशाला को देखते ही मेरी बांछें खिल गई। प्यारे बच्चों, हर बच्चे को सबसे अधिक प्यार अपनी माँ से होता है, माँ के बिना वह रह नहीं सकता। इससे हुआ यह कि जो भी चीज हमें बहुत प्यारी होती है उसे हम माँ कहने लगे। जैसे हमारा देश, हम उसे भारत माता कहते हैं, इसी प्रकार यह जो नर्मदा बह रही है ना, वह हमें इतनी प्यारी लगती है कि हम उसे भी माँ कहते हैं, नर्मदा मैया। बच्चों, तुम कितने भाग्यवान हो कि नर्मदा की गोद में पल भर रहे हो। पता नहीं बड़े होकर तुम इसी गांव में रहोगे या और कहीं जाओगे। जहां भी जाओ अपनी इस नदी को कभी मत भूलना। तुम जहां भी जाओगे इस नदी का एक अंश तुम्हारे साथ जाएगा।
0: ये थे चित्रकार, लेखक और नर्मदा प्रेमी स्वर्गीय अमृतलाल वेगड़। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी जबलपुर। देश के मध्य में नदी की धारा से अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर, जहां संस्कृति केवल उत्सव नहीं समुदाय की सामूहिक स्मृति और प्रकृति के साथ उसके रिश्ते की अभिव्यक्ति है। मेघालय और अन्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसने वाला गारो समुदाय सूर्य देवता को समर्पित जिस उल्लासपूर्ण नृत्य उत्सव के साथ अपनी सामुदायिक जीवन ऊर्जा को व्यक्त करता है वो है बांग्ला। और इसी बांग्ला के लोकरंग को समेटे है हमारी अगली प्रस्तुति, ये लघु रूपक आशीर्वाद मिसी साजोंग का।
2: हरे भरे पहाड़, बादलों से घिरा आसमान, और इसके बीच गूंजती ढोल की सामूहिक थाप, ये है मेघालय का गारो समुदाय का वांगला। एक ऐसा लोक उत्सव जिसमें संगीत है, नृत्य है और प्रकृति के प्रति आभार की भावना भी।
3: भारत के पूर्वोत्तर की जनजातीय परंपराओं में गारो समुदाय की अपनी विशिष्ट पहचान है। गारो समुदाय मुख्य रूप से मेघालय में निवास करता है। हालांकि असम, त्रिपुरा और नागालैंड में भी इनकी बसावटें हैं।
2: वांगला फसल कटाई के बाद मनाया जाने वाला पारंपरिक उत्सव है। ये मूलतः गारो समुदाय के सूर्य देवता मिसिसाल्जो के प्रति कृतज्ञता और समृद्धि के उत्सव का अवसर है।
3: और इसकी सबसे खास पहचान है ढोल की सामूहिक थाप। शायद इसी वजह से वांगला को कहा जाता है 100 ढोलों का उत्सव।
2: इस जीवन परंपरा की खूबसूरत झलक इस साल दिल्ली में आयोजित नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट फेस्टिवल यानी नेस्ट फेस्ट 2026 में भी देखने को मिली।
3: लेकिन आखिर वांगला नृत्य की खासियत क्या है? इसकी प्रस्तुति में

0: पारंपरिक दामा ढोल की थाप पर जब कलाकार एक साथ कदम मिलाते हैं तो जैसे पूरी प्रस्तुति में एक लय सी दौड़ जाती है।
1: ढोल की यही धुन वांगला को गति देती है, 100 ढोलों के उत्सव की पहचान भी देती है।
0: वांगला की खूबसूरती सिर्फ इसके लय और कदमों में नहीं, इसके रंगों में भी दिखाई देती है। पारंपरिक वेशभूषा के रंग बिरंगे परिधान और आभूषण इस नृत्य को एक अलग विजुअल पहचान देते हैं।
1: आइए सुनते हैं अनालिशा को।
2: जब हम ये डांस परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली हम लोग अपना ट्रेडिशनल अटायर पहनते हैं। ट्रेडिशनल अटायर जैसे कि हम लोग सर पे बांधने का कपड़ा पहनते हैं, रैप अराउंड स्कर्ट होता है। मैं अगर गारो में बोलना चाहूँ तो एक दोमे होता है, दोमे जो होता है वो हम सर पे लगाते हैं, वो मुर्गी के पंख होते हैं, और एक खोतप होता है वो हम सर पे बांधते हैं, कपड़ा जैसा होता है। तो फिर हम इयररिंग्स भी पहनते हैं, उसको हम नासापसी बोलते हैं, और नेकलेस भी पहनते हैं, लंबे लंबे नेकलेस, उसको हम रुकतुक बोलते हैं या फिर रुकमाचू। और हम जो बेल्ट पहनते हैं उसको हम सिंखी बोलते हैं, और जो हम हाथ में जो चूड़ियाँ पहनते हैं उसको हम चकसान बोलते हैं। हाँ, और जो हम नीचे जो रैप अराउंड स्कर्ट पहनते हैं उसको हम मंदा बोलते हैं।
1: इस पूरी प्रस्तुति का नेतृत्व करने वाला एक खास कलाकार भी होता है जिसे कहा जाता है मदग्रिक। आइए सुनते हैं रियोशन से।
3: तो जो मदग्रिक का जो ड्रेस है वो सबसे अलग होता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा वॉरियर होता है जो अपने कम्युनिटी को लीड करेगा। तो उसका जो कपड़ा होता है उसका पंडरा होता है, जो वो गामसा की तरह उसको पहना जाता है उसको पंडरा कहते हैं, और इसको रुकमाचू कहते हैं, जो हम गले में पहनते हैं उसको रुकमाचू कहते हैं। और उसके बाद हम दोमे भी पहनते हैं। दोमे बेसिकली जो बर्ड है, वाइल्ड बर्ड्स से उनको बनाया जाता है।
0: तो ये है गारो समुदाय का वांगला, जहाँ ढोल की हर थाप में उत्सव की खुशी है, हर कदम में सामूहिकता की लय है, और हर रंग में अपनी संस्कृति पर गर्व।
1: समय बदला, जीवन शैली बदली, लेकिन वांगला की थाप आज भी गूंज रही है, अपनी परंपरा, अपनी पहचान और अपनी जड़ों को साथ लेकर। संस्कृति भारती के लिए मैं हूँ प्रांजल।
0: और मैं नेत्रा।
4: आशीर्वाद मिसी सालजोंग का। गारो समुदाय के वांगला नृत्य उत्सव पर केंद्रित लघु रूपक अभी आपने सुना। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। लोक से शास्त्र, परंपरा से पर्व, और अब गणपति बप्पा की भक्ति और उत्सव धर्मिता के रंग। भारत के अलग अलग हिस्सों में पर्वों की अपनी अपनी छवियां हैं, अपनी ध्वनियां हैं, अपनी परंपराएं हैं। महाराष्ट्र में गणेशोत्सव तो जैसे सार्वजनिक जीवन और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न हिस्सा ही है। आइए सुनते हैं गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति गणपति बप्पा मोरया।

पुणे का गणेशोत्सव आज जिस तरह से पूरे जोश और उत्साह से मनाया जाता है, उसकी शुरुआत के पीछे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का बड़ा योगदान है। सन 1893

0: अन्वय में लोकमान्य तिलक ने गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप दिया। उस समय गणपति की पूजा ज्यादातर घरों में ही होती थी। लोकमान्य तिलक ने गणपति उत्सव के बहाने लोगों को एक साथ लाया। गणेशोत्सव को उन्होंने अनंत चतुर्दशी तक मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। धीरे धीरे पूजा के साथ भजन, कीर्तन, भाषण और तरह तरह के कार्यक्रम भी होने लगे। उस समय देश अंग्रेजों के शासन में था, इसलिए इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों में जागरूकता और देश के लिए कुछ करने की भावना भी पैदा होने लगी। शुरुआत में सन 1893 में पुणे में 3 और मुंबई में 2 जगह सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाया गया था। धीरे धीरे यह उत्सव पुणे से निकलकर महाराष्ट्र के दूसरे शहरों तक और अब तो सारे देश में ही नहीं विदेश में भी पहुंच गया है। पुणे के गणेशोत्सव की एक खास पहचान है यहाँ के प्रतिष्ठा प्राप्त 5 गणेश, जिसे मराठी में मानाचे 5 गणपति कहते हैं। इनमें श्री कस्बा गणपति को पुणे का ग्राम दैवत माना जाता है।
1: नमस्ते, मैं नीलेश वकील कार्याध्यक्ष, मैं बात कर रहा हूँ पुणे के प्रथम नामांकित मंडल से, श्री कस्बा गणपति सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल से। 1893 में यानी 1893 में ये गणेशोत्सव मंडल की हमारे स्थापना हुई और तब से ये उत्सव चलते आ रहा है। पहला मान विसर्जन का यानी पहला नंबर हमको दिया जाता है। गणेशोत्सव क्या है तो कलावंत, विचारवंत, बुद्धिवंत इन लोगों का उत्सव यानी गणेशोत्सव, यानी सब लोग आके ये उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। गणेशोत्सव की और एक खासियत है कि सामाजिक काम यानी सोशल वर्क। इसी तरह से हम लास्ट 25 साल से ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं।
0: इसके बाद तामड़ी जोगेश्वरी, गुरुजी तालीम, तुलसीबाग और केसरीवाड़ा के गणपति आते हैं।
2: नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित तिलक, मैं अध्यक्ष हूँ केसरी गणेश उत्सव का। अलग अलग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं केसरीवाड़ा में, कोई लेक्चर्स हो, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स रखे जाते हैं, कॉम्पिटिशन रखी जाती है, ब्लड डोनेशन कैंप रखा जाता है। ऐसे पूरे 10 दिन कार्यक्रम केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से किया जाता है। अगर कोई प्रेजेंट इशू हो तो उसके ऊपर भी लेक्चर्स ये केसरी गणेश उत्सव के माध्यम से हमेशा कंडक्ट किया जाता है।
0: गणपति की स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी के विसर्जन तक पूरा शहर जैसे उत्सव में डूबा रहता है। कहीं ढोल ताशों की गूंज सुनाई देती है तो कहीं सुंदर सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रम दिखाई देते हैं।

0: श्रीमंत दगरुशेठ गणपति के बारे में हेमंत रास ने बताते हैं।
1: जय गणेश। श्रीमंत दगरुशेठ हलवाई सार्वजनिक गणेशोत्सव 135 साल यहाँ पुणे में विराजमान हो रहे हैं। अभी श्रीमंत दगरुशेठ हलवाई गणपति का परमानेंट मंदिर हो गया है। यहाँ बहुत बड़ी भीड़ रहती है। उत्सव में 10 दिन में 2 करोड़ लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस साल हमने वृंदावन का प्रेम मंदिर यहाँ मंडप में बनाया है, जो दगरुशेठ हलवाई गणपति के दान पेटी में जो भाविक अपना योगदान देते हैं, उससे हम मानव सेवा का महामंदिर बनाते हैं।
0: भाऊ रंगारी गणेशोत्सव के अध्यक्ष संजीव जावड़े,
2: ये जो उत्सव जो चालू हुआ वो 1892 में भाव रंगारी इन्होंने चालू किया उनके साथीदारों के साथ, और उन्होंने एक मूर्ति बनाई जो राक्षस को वध करती है, और ये मूर्ति इको फ्रेंडली है। और 1892 से आज तक हमारे ट्रस्ट ने किसी के पास चंदा लिया नहीं है, हम गुलाल नहीं यूज करते। और तीसरी बात यानी हमारे जो उसमें म्यूजिक या गीत जो रहते वो भक्ति गीत रहते, और वो भी मॉडरेट लेवल नॉइज पे।
0: पुणे का गणेशोत्सव सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि लोगों को साथ लेने वाला, हमारी संस्कृति से जोड़ने वाला एक खास उत्सव बन गया है।
3: गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी पर ये विशेष प्रस्तुति आपने सुनी

0: आकाशवाणी पुणे के सौजन्य से। उत्सव हमें जोड़ते हैं और शिक्षा हमें सशक्त बनाती है। साक्षरता केवल अक्षरों को पहचान लेने का नाम नहीं, ये अपने अधिकारों को समझने, अपने निर्णय स्वयं लेने और दुनिया को नए नजरिए से देखने की क्षमता भी है। शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के उपलक्ष्य में अब एक ऐसी कहानी जिसने साक्षरता की उपलब्धि को एक भौगोलिक पहचान से जोड़ दिया, मिजोरम की उस यात्रा की कहानी जिसने उसे साक्षरता के शिखर तक पहुंचाया। सुनते हैं हमारी अगली प्रस्तुति, साक्षरता का मिजो शिखर।
1: साक्षरता का अर्थ केवल वर्णमाला पहचानना या हस्ताक्षर करना नहीं है। वास्तविक साक्षरता वो है जो नागरिक को अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और समाज के प्रति उसके योगदान का एहसास भी कराए। हाँ, शुरुआत जरूर अक्षरों की पहचान से होती है।
2: सितंबर का ये समय देश भर में पठन पाठन और गुरु परंपरा के सामाजिक महत्व पर मंथन का अवसर देता है। ये समय हमें ये देखने का अवसर भी देता है कि नीतियाँ कागजों से उतरकर धरातल पर कितना प्रभाव छोड़ रही हैं।
1: इसी उजाले की मिसाल बनकर उभरा है भारत के पूर्वोत्तर का सुंदर राज्य मिजोरम। भारत सरकार के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम ने 98.2% की कार्यात्मक साक्षरता हासिल करके देश में पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा प्राप्त किया है।
2: पर जानते हैं, दुर्गम पहाड़ियों और बीहड़ रास्तों के बीच बसी आबादी में इतना बड़ा बदलाव केवल कागजी दावों से नहीं होता। जब जमीन पर जाकर एक एक घर का सर्वे किया गया तो देखा गया कि आखिरी पड़ाव पर लगभग 3000 ऐसे लोग बचे थे जो अक्षरों की दुनिया से दूर थे।
1: और यहाँ मिजोरम की सांस्कृतिक चेतना का एक सुंदर रूप देखने को मिलता है, जिसे स्थानीय भाषा में कहते हैं तलांगना। जैसे ही सर्वे के आंकड़े सामने आए तो बिना किसी आर्थिक लाभ की परवाह किए लोकल वॉलंटियर्स और युवा खुद आगे आ गए।
2: इन युवाओं ने गांव-गांव जाकर अपने से बड़ों को पढ़ाना शुरू किया और एक अनोखा कम्युनिटी बॉन्ड बना, यानी तलांगना। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और आधुनिक कम्युनिटी ड्रिवन मॉडल को समझने के लिए आइए सुनते हैं भारतीय जनसंचार संस्थान आइजोल परिसर के प्राध्यापक डॉक्टर वनलाल रोहता को।
3: मिजोरम में जीवन को करीब से देखने और समझने के बाद मैं यह कह सकता हूँ कि मिजो समुदाय का पढ़ना, पुस्तकों और शिक्षा के साथ ऐतिहासिक रूप से एक गहरा और विशिष्ट संबंध रहा है। जब ईसाई मिशनरी मिजोरम आए तो उन्होंने रोमन लिपि का प्रयोग करते हुए मिजो भाषा के लिखित रूप को विकसित और प्रचलित किया। मेरे लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात यह है कि पढ़ने की संस्कृति केवल उच्च शिक्षित लोगों तक सीमित नहीं थी। परिवारों में मनोरंजन और रुचि के लिए पढ़ने की भी एक मजबूत परंपरा रही है। सोशल मीडिया के दौर से पहले माता पिता द्वारा बच्चे को सोने से पहले कहानियाँ सुनना या सुनाना काफी आम बात थी। मेरा मानना है कि मिजोरम की उच्च साक्षरता दर की जड़ें समुदाय की मजबूत सहभागिता की संस्कृति में निहित है। मिजो दर्शन में निहित त्रावमेना अर्थात बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करना और उनकी सहायता करना, उल्लास अर्थात समाज के सभी वर्गों के लिए आजीवन सीखने की अवधारणा, या नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भी इसी सामुदायिक भावनाओं को महत्व दिया गया है। किसी राज्य को पूर्ण साक्षर घोषित करने के लिए 95% साक्षरता को मानक माना गया है। उल्लास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक मुझे इसमें स्वयंसेवी शिक्षकों की भूमिका लगती है। मिजोरम में इन स्वयंसेवी शिक्षकों में विद्यार्थी, शिक्षक, संसाधन व्यक्ति और क्लस्टर रिसोर्सेज सेंटर के समन्वयक शामिल रहे हैं। उन्होंने विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, वायम पुस्तकालय और आवश्यक पढ़ने पर शिक्षार्थियों के घरों तक जाकर भी सीखने सिखाने की गतिविधियां संचालित की।
4: कम्युनिटी हॉल्स, वायम लाइब्रेरीज एंड व्हेयर नेसेसरी इवन इन लर्नर्स होम्स एज वेल टू देयर ओन सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट।
2: मिजोरम के पहाड़ों पर जब सुबह सुबह धुंध छटती है तो किसी घर के बरामदे में बैठा बुजुर्ग या स्कूल की ओर बढ़ती कोई छोटी बच्ची

0: दोनों के हाथों में एक चीज समान मिलती है, एक खुली हुई किताब। संस्कृति भारती के लिए मैं नेत्रा
1: और मैं हूँ प्रांजल।
2: अभी आपने सुनी लघु प्रस्तुति साक्षरता का मिजो शिखर, प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। विश्व के या देश के अलग अलग हिस्सों को हम समझना चाहें, उन्हें जानना चाहें, तो करनी पड़ती है यात्राएं। और इसी महत्व को रेखांकित करने के लिए हर साल 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य पर्यटन के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व के प्रति दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। और पर्यटन की यही मानवीय भूमिका हमें एक दूसरे महत्वपूर्ण दिवस की ओर ले जाती है, विश्व शांति दिवस। हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1981 में इस दिवस की घोषणा की थी और 2001 में इसे अहिंसा और युद्ध विराम के दिवस के रूप में निर्धारित किया। 2026 में विश्व शांति दिवस की थीम है इन्वेस्ट इन पीस फॉर एवरीवन एवरीवेयर एवरीडे, यानी शांति में निवेश हर व्यक्ति के लिए हर जगह हर दिन। और अब समय है उन विभूतियों के स्मरण का जिन्होंने अपने विचार, कर्म, कला और जीवन से भारतीय समाज और संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया। महापुरुष श्रीमंत शंकर देव और श्री नारायण गुरु, स्वाधीनता और राष्ट्र चेतना के पुरोधा दादा भाई नौरोजी और अमर क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह, शिक्षाविद और समाजसेवी डॉक्टर एनी बेसेंट, महान दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और संगीत की दुनिया की दो महान स्वर साधिकाएं एम एस सुब्बुलक्ष्मी और लता मंगेशकर, जिनके सुरों ने भारतीय संगीत को देश और दुनिया तक का विस्तार दिया। इन सभी महान विभूतियों के कृतित्व और व्यक्तित्व को नमन करते हुए संपन्न होता है संस्कृति भारती का ये अंक। नवोदिता को अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक आनंद वैद्य का शास्त्रीय गायन। अजमेर राजस्थान के निवासी आनंद वैद्य जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अजमेर की श्रीमती श्यामल नवरे जी और सांगली के पंडित A.R. पटवर्धन जी से प्राप्त की। तत्पश्चात किराना घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित अजय पोहनकर जी के मार्गदर्शन में आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय ख्याल गायकी की शिक्षा ग्रहण की। पिछले 30 से अधिक वर्षों से देश के प्रतिष्ठित संगीत समारोहों में अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे आनंद वैद्य सुरमणि और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के युवा शास्त्रीय गायक पुरस्कार से सम्मानित हैं। आप आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। आनंद वैद्य जी अपने कार्यक्रम की शुरुआत राग गोरख कल्याण से कर रहे हैं। विलंबित ख्याल के बोल हैं धन धन भाग जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं जा जा रे जा पथिकवा जो तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं अकबर हुसैन और हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं राजेंद्र बनर्जी।

अभी आपने सुना राग गोरख कल्याण। आनंद वैद्य अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग जोग। विलंबित ख्याल के बोल हैं पेहरवा को बिरमायो, जो एक ताल में निबद्ध है। मध्यलय ख्याल के बोल हैं साजन मोरे घर आए, जो तीन ताल में निबद्ध है।

अभी आपने सुना आनंद वैद्य का गाया राग जोग। इसके साथ ही आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले ही दिन सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से नई दिल्ली घोषणा पत्र को अपना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के अंत में घोषणा पत्र अपनाने का प्रस्ताव रखा था। समापन भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली घोषणा पत्र सदस्य देशों के साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा प्रदान करता है।
1: हमारे समक्ष ब्रिक्स न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 का ड्राफ्ट प्रस्तुत है। इसमें हमारी चर्चाओं का सार प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय विषयों पर हमारे दृष्टिकोण शामिल है। साथ ही ब्रिक्स कोऑपरेशन को और सुदृढ़ करने की प्राथमिकताएं समाहित है। किसी सदस्य की ओर से आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2026 को सर्वसम्मति से एडॉप्ट किया जाता है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिनिधित्व, जवाबदेही और नियम निर्माण की प्रक्रिया में सुधार आवश्यक हैं। इससे पहले उद्घाटन भाषण में श्री मोदी ने ब्रिक्स निरंतरता और कार्यान्वयन तंत्र का प्रस्ताव रखते हुए कहा कि ब्रिक्स की अध्यक्षता हर वर्ष बदलती है, लेकिन इसकी संस्थागत गति बनी रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कार्यान्वयन तंत्र तीन पक्षों के समूह ट्रोइका के माध्यम से सभी पहलों और उनके परिणामों की निगरानी करेगा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों को अगले 20 वर्षों के लिए नए और महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने समुद्री अधिकारियों और संबंधित देशों के राजनयिक मिशनों को जोड़ने के लिए आपात स्थिति में नाविक सहायता नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच की एकता और सहमति को वैश्विक मंच पर ठोस परिणामों में बदलने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिक्स किसी देश के विरुद्ध नहीं है, बल्कि सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन केंद्रित और मानवता को प्राथमिकता देने के दृष्टिकोण पर आधारित है तथा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण भारत की प्रमुख प्राथमिकताएं रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इसे और नहीं टाला जा सकता। प्रधानमंत्री ने बताया कि वैश्विक आर्थिक विकास को गति देने वाले देशों को वैश्विक आर्थिक शासन में भी उचित भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स

0: ने विश्व के कई हिस्सों में संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बढ़ते ध्रुवीकरण तथा गुटबाजी पर चिंता व्यक्त की है। नई दिल्ली घोषणा पत्र में ब्रिक्स नेताओं ने वैश्विक सैन्य खर्च में लगातार वृद्धि पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। सदस्य देशों ने बहुपक्षीय दृष्टिकोण का आह्वान किया जो सतत विकास, भूख और गरीबी उन्मूलन तथा जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सभी देशों के दृष्टिकोण का सम्मान करता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुष्टि की है कि भारत और चीन को अपने संबंधों के लिए रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठक में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष अगस्त में तियानचिन में बैठक के बाद भारत चीन द्विपक्षीय संबंधों में निरंतर प्रगति का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज रेड कॉर्नर नोटिस के अंतर्गत गिरफ्तार अमृतपाल सिंह उर्फ गुरपाल सिंह को मोल्दोवा से भारत प्रत्यर्पित कराने में सफलता हासिल की। वांछित भगोड़े को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और पंजाब पुलिस के समन्वय से वापस लाया गया। सीबीआई ने बताया कि अमृतपाल पंजाब में दर्ज कई गंभीर आपराधिक मामलों में वांछित था। अमरीकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का फाइनल देर रात एलिना रिबाकिना और आर्याना सबालेंका के बीच खेला जाएगा। वहीं पुरुष सिंगल्स का फाइनल बेन शेल्टन और अलेक्जेंडर ज्वरेव के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Amrit Bhushan. The BRICS nations adopted New Delhi Declaration on the first day of their summit at Bharat Mandapam in New Delhi today. The declaration calls for commitment to stronger multilateralism and deeper cooperation, stresses on deeper economic and developmental cooperation, and advocates international order for developing countries to have greater influence in decision-making on global issues. The BRICS leaders expressed concern over ongoing conflicts in many parts of the world and the current state of polarization and fragmentation in the international order. The grouping also stressed cooperation on sustainable development. It highlighted the need to tackle hunger and poverty and strengthen the global response to climate change. Prime Minister Narendra Modi said in his closing remarks after adoption of the New Delhi Declaration that it provides a clear direction for the shared resolve of the member countries. He added that it is now their shared responsibility to translate these resolutions into tangible results.
2: आज की चर्चा से स्पष्ट है कि बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संस्थानों से नहीं किया जा सकता। रिप्रेजेंटेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और रूल मेकिंग तीनों में सुधार आवश्यक है। आज एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे साझा संकल्प को स्पष्ट दिशा देता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन संकल्पों को ठोस परिणामों में बदले।
1: The 18th BRICS summit kicked off this afternoon with Prime Minister Narendra Modi welcoming leaders of member countries at Bharat Mandapam. In his opening remarks, Prime Minister Modi proposed a BRICS continuity and implementation mechanism to ensure that the grouping's institutional momentum is maintained despite the changing chairship every year. He emphasized that the gap between decisions and their outcomes must be bridged through partnership and collective action.
2: ग्लोबल साउथ आज वैश्विक संकटों की फ्रंट रो में है, लेकिन डिसीजन मेकिंग की बैक रो में है। हमें इस पिरामिड ऑफ प्रिविलेज को प्लेटफॉर्म ऑफ पार्टनरशिप में बदलना है, जहां हर देश की आवाज हो, हर सदस्य का स्टेक हो, हर प्रयास के केंद्र में मानवता का विकास हो। इस उद्देश्य से मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम मिलकर ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म के 10 proposals तैयार करें।
1: The Prime Minister said BRICS countries will have to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. The Prime Minister also proposed to establish a seafarers emergency support network to connect the maritime authorities and diplomatic missions of relevant countries to facilitate assistance during difficult times. After the conclusion of the session,